कभी कभी सुबह अपने घर की खिड़की खोलकर देखिएगा, ठंडी हवा चेहरे को छूती है, पत्तियां धीरे धीरे हिलती हैं, दूर कहीं कोई पक्षी आवाज देता है और ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हमसे कह रही हो, कल जैसा भी था आज तुम्हारे पास एक नया दिन है। आज की सुबह को एक नई शुरुआत बनाइए, मन में ईश्वर का नाम लीजिए, आंखों में उम्मीद रखिए, चेहरे पर मुस्कान रखिए और दिल में विश्वास रखिए, क्योंकि जिस मन में उम्मीद जिंदा रहती है वहां रास्ते कभी खत्म नहीं होते।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 सितंबर 2026। इस समय सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसका अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल बिश्केक में 6ठे विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये द्विवार्षिक आयोजन घुमंतू सभ्यताओं की समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का

0: उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए तथा बिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में हरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान दिया गया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन स्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही कपड़े के थैलों और दोबारा प्रयोग वाली बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देना भी है। ये अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50,000 रूपये की सहायता राशि की घोषणा की है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल से 3 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये दौरा भारत बेल्जियम साझेदारी को और मजबूत करेगा। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम्यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण अभी किया जा रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन।

प्रत्येक सफलता मनुष्य का मनोबल बढ़ाती है, पर क्रिया के क्षेत्र में ये बात सदैव संवत नहीं। संघर्ष करते हुए सफलता के साथ असफलता भी

अदा-कदा अपना स्वरूप निर्मित करती चलती है। आशा के साथ निराशा की भी उत्पत्ति हो सकती है। मनोबल की परीक्षा का यही समय होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात यदि व्यक्ति विपरीत स्थिति के वशीभूत हो, अपना अंत कर लेने का विचार रखता है, तो उसे स्थितियां अपने में जकड़ लेती हैं। विपरीत इसके यदि वह स्थितियों का सामना पूरी शक्ति क्षमता और मनोयोग से करता है, तो उसे उच्च शिखर का स्पर्श करने में विलंब नहीं। इस संदर्भ में मुझे दो व्यक्तियों की बात स्मरण हो आती है, जिसमें पाकिस्तान से लूटे हुए दो व्यक्ति एक नगर में आए। उनकी हालत दयनीय और हाथ में एक पैसा भी नहीं था। उन्हें भटकते बहुत समय हो गया। एक कहने लगा, मेरा सर्वस्व लूट गया, बर्बाद हो गया। आलीशान महल, अटारी, कारोबार, नौकर चाकर, बाल बच्चे, प्रतिष्ठा सम्मान, मानो कुछ भी शेष ना रहा। कोई तो हो जो मेरी सहायता करे। दूसरा कहता, मित्र, मेरे पास भी सब कुछ था, पर विधि के विधान के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। खैर जाने दो, मेरे मित्र, आप चिंता ना करो। विपरीत स्थितियां सदैव नहीं रहा करती। अमावस के पश्चात पूर्णिमा अवश्य आती है, इसलिए तुम चिंता ना करो। अपने मन को शांत चित्त कर मनोबल बढ़ाने के विषय में विचार करो। दूसरे मित्र को किसी ने मुफ्त में किराए का मकान दे दिया। उसने अखबार बेचने का कार्य किया। वो पूरे दिन घूम घूम कर अखबार बेचता। उसकी तन्मयता देख उसके मालिक ने उसका दोगुना दाम देना प्रारंभ किया, जिससे उसने अखबार के साथ पुस्तकें भी किराए पर देने का कार्य प्रारंभ किया। धीरे धीरे समय ने गति ली, परिस्थितियों ने करवट बदली और उसकी दुकान चल पड़ी। वो बड़ा व्यवसायी बन गया, फिर उसकी साख बन गई, वो प्रतिष्ठित नागरिक बन गया। अर्थात हम मनोबल के कारण बड़ी बड़ी हानि, मुसीबतें, नौकरी छूटना, क्लैश होना आदि का सामना बिना हानि के सहन कर लेते हैं। जिनके पास मनोबल का अभाव है, वे दिल के धक्के से मानसिक आघात न सह सकने के कारण अकाल मृत्यु का वरण करते हैं। पहले पहल छोटे कार्य, मामूली व्यापार, साधारण नौकरी से महान का श्री गणेश करें। इनमें सफलता अर्जित करने से मनोबल बढ़ता रहता है। फिर उनसे बड़े कार्य हाथ में लेने चाहिए। सफल व्यक्तियों के विषय में यदि पढ़ा जाए तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपने मनोबल, इच्छा शक्ति, लगन, क्रमशीलता को सहज होकर ही अभिष्ट को प्राप्त किया है। एक जलती हुई मोमबत्ती से आप हजारों मोमबत्तियां जला सकते हैं और फिर भी पहली वाली ज्यों की त्यों जलती रहेगी। मन की मजबूती, स्थिरता, संतुलन और अपनी शक्तियों के प्रति पूर्ण विश्वास, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने की दृढ़ता का समुचित रूप से विकास किया जाए तो अंत में अवश्य सफलता आपके कदम चूमेगी। जीवन एक संग्राम है जिसमें विजय केवल उन्हें ही मिलती है जो दृढ़ और उन्नत मनोबल का कवच धारण किए रहते हैं और जो अपने निहित पराक्रम, पौरुष की उत्कृष्टता सिद्ध करते हैं। महात्मा बुद्ध ने ठीक ही कहा है, जो अपने को दमन नहीं कर सकता वो दूसरों को वश में नहीं कर सकता। मनुष्य को अन्य से सहायता नहीं मिल सकती, अपने ही किए से काम चलता है। मनुष्य को अपना कर्तव्य स्वयं पालना चाहिए। पवित्रता और मलिनता मन की है, कौन किसको शुद्ध कर सकता है। मानव को बिना कुछ पाए हुए भी आनंद से रहना चाहिए। राग के समान कोई आग नहीं है, द्वेष के समान कोई हराने वाला पासा नहीं है, शरीर के समान कोई दुख नहीं है, शांति के समान कोई सुख नहीं। मनोबल की आरोग्यता परम लाभ का हेतु है, परम धन है। विश्वास ही परम पुरुषार्थ रूपी बांधव है। निर्वाण ही परमानंद है। शुद्धि के इसलिए तीन मार्ग बताए गए हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। अर्थात जिसने अपने मन, वचन और कार्य में दृढ़ता स्थापित कर ली, उसकी नैया तो इस भव सागर के पार ही है। भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, मानव धर्म सफल हो, नित्य शुभ मनोबल हो।

कार्यक्रम चिंतन अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज हम आपको

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।

0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
1: मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
4: देश की सुरीली धड़कन
5: विविध भारती,
3: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
4: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
3: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
4: वीर सैनिकों की जय माला
3: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
4: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग
6: सखी सहेली,
4: बॉम्बे टॉकीज और
7: सेल्यूलॉइड के सितारे,
4: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
8: मुझे याद सब है जरा जरा,
3: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
4: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
3: मन का सुकून दिल की आरती
4: सुरीली संदली।
9: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में, जी हाँ प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
11: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
11: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
0: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
12: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है श्रोता रायगढ़ @ gmail।

com, shrotaraigarh, यानी श्रोता रायगढ़ @gmail.com।

तुलसीदास जी की रचना को अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के मधुर स्वर में। आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश में लीजिए सुनिए तुलसीदास जी की रचना को लता मंगेशकर के स्वर में। संगीत निर्देशन है उषा मंगेशकर का।

0: तुलसीदास की रचना को अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। संगीत निर्देशन था उषा मंगेशकर का। इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुने कृषि संबंधी जानकारी कार्यक्रम कृषि चर्चा में, जिसमें आज चर्चा का विषय है हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से चारा उत्पादन तकनीक। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर ललित कुमार बिस्वाल, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी लहलुंगा।
1: जय जोहार संगवारी हो, मैं डॉक्टर ललित कुमार बिस्वाल, पशु चिकित्सा सहायक शल्य पशु चिकित्सालय लहलुंगा। मैं आप मल्ला एक नया तकनीक जो कि कृषि में तो उपयोग होत रही लेकिन पशुपालन में घलो एकर उपयोग चारा उत्पादन पर हमन कर सकत हन, एकर नाम है हाइड्रोपोनिक तकनीक। हाइड्रोपोनिक तकनीक का में बिना माटी के प्रयोग के हमन केवल पानी के उपयोग करके ट्रे में अनाज ला हमन, अनाज जैसे कि हमार बाजरा है, ज्वार है, गेहूं है, मक्का है, ए मल्ला हमन 8 से 9 दिन में हर 20 से 30 सेंटीमीटर तक बढ़ जाते और इसमें प्रोटीन और जो पाचन योग्य ऊर्जा है ओकर मात्रा बहुत अधिक रहते। तो एकर विषय में आप मल्ला बताहा जेकर बहुत संभावना है संगवारी हो, ये चारा ला हमन बकरी मुर्गी हमर गाय मल्ला घलो और भैंस मल्ला सब सुअर मल्ला घलो हमन खिला सकत हन। एकर बर हमन ला का चाहिए, ए में एक प्लास्टिक के ट्रे लेबो जेकर साइज 10 फीट बाई 3 फीट और 3 इंच ओहर गहरा रही। एमे बाजरा गेहूं ज्वार मक्का एला हमन भिगा करके 12 घंटा तक भिगा करके एला हमन 24 घंटा भिगा के निकाले के बाद 24 घंटा हमन कोई पन्नी में बंद करके वाला राखबो तो उमे छोटे छोटे अंकुरण हो जाही। अंकुरण आए के पश्चात हमन जो ट्रे ऊपर

0: संगवारी हो 30 से 32 किलो चारा देते तो एक ट्रे हर दो गायला एक दिन के वर्ष पर्याप्त चारा दी काबर की 15 से 16 किलो एक दुधारू गायला चारा चाहिए। यदि हमर करा 10 ठी गाय है तो हमारा रोज 5 ठी ट्रे के जरूरत पड़ी। यदि हमर करा 40 ठी ट्रे यदि राखबो और 5 ठी ट्रेला खाली छोड़ते हुए हर दिन एक ट्रेला भरत जाबो तो हमारा 8वां दिन चारा उपलब्ध हो जाही और वही जोन ले हमन चारा उगाबो हर फिर खाली हो जाही। ओला यदि हमन सुबह चारा लेबो तो शाम के फिर ओला भरना है। तो इस प्रकार से राउंडअप विधि द्वारा क्रमिक चक्र के माध्यम से हमन पूरा महीना भर चारा ले सकत हन। ये में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन रथे विटामिन रथे और एकर जो पाचकता रथे 95% पाचकता रथे तो गर्मी के दिन भर एहर बहुत लाभदायक हो सकते है। संगवारी हो एकर का लाभ है चारा के अभाव के स्थिति में हमन अच्छा चारा के विकल्प के रूप में हमन देखत हन। कम जगह में कम समय में कम लागत में पौष्टिक चारा हमन ला मिल सकत है। चारा के लागत जो हमर मान लो कोई 10 किलो दूध देते ओकर पीछे हमला लगभग 100 से 150 रुपया तक के दाना जो लग जाते 40% अर्थात 60 से 70 रुपया तक हमन कमी ला सकत हन ओकरे सेती। और जानवर के प्रतिरोधकता में क्योंकि विटामिन ए में बहुत मात्रा में रखते ओकरे बाद चारा के कमी ले हमन एमे निजात पा सकत हन। दूध हमर संगवारी हो आधा लीटर तक खिलाए ले बढ़ सकत है और खनिज लवण की उपलब्धता ला हर पूरा करते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार संगवारी हो।
1: हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से चारा उत्पादन तकनीक इस विषय पर वार्ता अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा में। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर ललित कुमार बिस्वाल वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी लैलूंगा। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि चर्चा अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। अब आइए हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज की दोनों सभाओं से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य एवं शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम विवरण में। अब से कुछ पलों बाद यानी 6:40 पर सुनेगा रामचरितमानस का भाग 121। कार्यक्रम देशगान का प्रसारण समय होगा 6:50 का। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे 7:00। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा आप सुनिएगा सुबह 7:35 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजी मांदर का समय होगा 7:45 का। 8:00 समाचार प्रभात व 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समन्वित छत्तीसगढ़ी पत्रिका कार्यक्रम मोर भुइया का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से सुबह 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम जिसे हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकते हैं सुबह 9:00 से, सुबह 11:00 से, अपराह्न 12:00 से और रात्रि 9:00 से। विविध भारती कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से सुबह 9:55 पर, 11:55 पर और संध्या 6:45 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर की अगली कड़ी हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से सुबह 10:00 से। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का समय होगा शाम 5:00 का। कार्यक्रम हेलो संगी आपके लिए लेकर आएंगे हम आज सुबह 10:30 पर। झलकी प्रहसन का समय होगा शाम 5:10 का। युवा श्रोता अपना कार्यक्रम युववाणी सुन सकेंगे शाम 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा स्मार्ट खाओ सेहत बचाओ। राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह पर सुनेगा ये विशेष बातचीत। इसके साथ ही होगा क्रम रोजगार सूचना और चर्चा के अंतर्गत सुनेगा अंगदान में युवा आगे आए जुग जुग जियो अभियान। से जुड़े। इसके साथ ही

फिल्म संगीत सुनिएगा आज शाम 6:20 पर, शाम 7 बजे और रात्रि 8:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी का समय होगा शाम 7:30 का। इसका अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। गैर फिल्मी गीत रात्रि 8 बजे, विविध संगीत रात्रि 10 बजे और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 10:30 पर।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।

स्थानीय सूचनाएं एवं कार्यक्रम विवरण संबंधी जानकारी हम आपके लिए पुनः लेकर आएंगे सुबह 7:55 पर और सांध्यकालीन प्रसारण सभा में 5:25 पर और 6:05 पर। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है तुलसीदास कृत रामचरितमानस का भाग 121। गायक कलाकार है महेंद्र कपूर और मिताली सिंह व संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

श्रीराम और उनके तीनों अनुजों का विवाह संस्कार संपन्न हो चुका है और अब वधुओं की विदाई की वेला निकट आ चली है। प्रतिदिन अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, किंतु जनक जी के स्नेह भरे आग्रह पर उन्हें रुक जाना पड़ता है। बारातियों का आदर सत्कार पूर्ववत जारी है। कई दिन बीत जाने के बाद विदा की घड़ी आ ही पहुंची। महर्षि विश्वामित्र तथा वधुकुल के पुरोहित शतानंद ने राजा जनक को समझाया, आप स्नेहवश उन्हें विदा नहीं करना चाहते, परंतु विदा तो देनी ही है। जब रनिवास में यह समाचार पहुंचा तो सभी लोग इस प्रकार उदास हो गए जैसे संध्या होने पर कमल मुरझा जाते हैं। अनगिनत बैलों पर लादकर बारातियों के लिए मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री भेजी गई। साथ ही 1,00,000 घोड़े, 25,000 सजे सजाए रथ, 10,000 हाथी तथा गाड़ियों में भर भर कर उपहार स्वरूप वस्त्र आभूषण। उधर रनिवास में सीता समेत अन्य वधुओं की विदाई का करुण, अत्यंत मार्मिक तथा हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है।

तुलसीदास कृत रामचरितमानस का भाग 121 अभी आप सुन रहे थे। गायक कलाकार थे महेंद्र कपूर और मिताली सिंह व संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। इसके साथ ही मानस गान अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम देश गान। स्वर राजेंद्र शुक्ल का है और रचना हरीश तिवारी की।

0: हमारी आन का भारत, ये थे इस देशभक्ति गीत के बोल। अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र शुक्ल के स्वर में, रचना हरीश तिवारी की थी। इसके साथ ही कार्यक्रम देशगान अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। 6:55 पर संस्कृत में और 7 बजे हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अन्यैः शंघाई सहयोग संघटनस्य नेतृभिः सह ह्यः सायं किर्गिस्तानस्य राजधान्यां बिश्केक इत्यत्र आयोजिते षष्ठे वर्ल्ड नॉमेड गेम्स इत्यस्य आधिकारिकोद्घाटने भागं गृहीतवान्। अयं कार्यक्रमः यायावर सभ्यतानां समृद्ध क्रीडा परम्पराणां संस्कृतेः सांस्कृतिक वैभवस्य च उत्सवरूपेण आयोज्यते। इतः प्राग् प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संघटन शिखर सम्मेलनस्यावधौ रूस, ईरान, किर्गिज गणराज्य, आर्मेनिया देशानां नेतृभिः सह द्वैपाक्षिकोपवेशनं कृतवान्। प्रधानमंत्री अद्य शंघाई सहयोग संघटनस्य 26वें शिखर सम्मेलनं च संबोधयिष्यति। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी मंत्रालयस्य उच्च अधिकारिभिः सह समीक्षोपवेशनं कृतवान्। गोष्ठ्यामस्यां हरित ऊर्जा क्षेत्रे भारतस्य प्रगतिम् अग्रे नेतुं तथा पूर्वोत्तर राज्येषु नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनानां विस्तारं कर्तुं गभीरा चर्चा समजायत। मंत्रिणा संसूचितम् यत् प्रशासनं स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यानि प्राप्तुं पूर्ण प्रतिबद्धतया कार्यं विदधाति। केन्द्र राज्ययोः परस्पर सहयोगेन जल प्रबन्धनस्य लक्ष्यानि प्राप्तुमद्य जलशक्ति मन्त्रालयेन विभागीय शिखर सम्मेलनम् आहूतम्। दिनद्वयं यावत् प्रचलन्त्याम् अस्यां गोष्ठ्यां विविध राज्यानाम् अधिकारिणः सहभागितां करिष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः संकल्पानुसारं एषः मञ्चः राष्ट्रिय जलनीतेः त्वरितान्वयनाय मार्गं प्रशस्तं विदधाति। पर्यावरण संरक्षणाय स्वच्छता संस्कृतेः प्रसाराय च अद्य जगत् प्रकाश नड्डा मन्त्रिणा स्वच्छता पखवाड़ा इत्यस्य शुभारम्भो विधीयते। सितंबर मासस्य 15 दिनांकं यावत् अस्य अभियानस्य माध्यमेन देशे सिंगल यूज प्लास्टिक इति वस्तुभ्यः मुक्तिं प्राप्तुं जनजागरूकता प्रवर्धयिष्यते। उर्वरक विभागेन सर्वेभ्यः कार्यस्थलेभ्यः स्वच्छता नियम पालनाय च आह्वानं कृतम्। प्रशासनेन मणिपुरे जनगणना कार्यस्य स्थगनस्य निर्णयः कृतः। अयं निर्णयः तावत् केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन ह्यः नवदिल्ल्यां मणिपुरस्य वर्तमानस्थितेः मूल्यांकनाय आयोजितस्य उच्चस्तरीय समीक्षोपवेशनस्य अध्यक्षतानन्तरं कृतः। तदनन्तरं मणिपुरस्य उच्चन्यायालयेन निर्देशः दत्तः यत् अग्रिमादेशपर्यन्तं मणिपुरे जनगणना कार्यं स्थगितमेव तिष्ठेत्। भारतेन आर्थिक जगति पुनः

0: कीर्तिमानं रचितम्। अस्य वित्तवर्षस्य अप्रैल जून त्रैमास्यां देशस्य वास्तविक सकल गृहोत्पादः 7.8% अवर्धत। प्रधानमन्त्री मोदी प्रावोचत् यद् वैश्विक समाह्वानानां सम्मुखीकरणं विधाय अपि भारतेन एषा महती उपलब्धिः समर्जिता। चतुर्थः भारत जर्मनी पर्यावरण मञ्चः अद्य नवदेहल्यां निर्वहिष्यते। अस्य मञ्चस्य मुख्यमुद्देश्यं पर्यावरण संकटस्य जलवायु परिवर्तनस्य च समाह्वानानां सम्मुखीकरणाय द्विपक्षीय सम्बन्धान् सुदृढं कर्तुमस्ति। केन्द्रीय मन्त्री भूपेन्द्र यादवः जर्मन मन्त्रिणा कार्स्टन श्नाइडर इत्यनेन सह अस्य सम्मेलनस्य सह अध्यक्षतां विधास्यति। फुटबॉल इत्येतस्यां क्रीडायां ईषमः अंडर 20 एशिया कप इत्यस्यां चषक स्पर्धायां भारतेन ह्यः ताश्कंद नगरे सीरिया देशम् 1-0 इति अंकांतरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल बिश्केक में 6वें विश्व घुमंतु खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये द्विवार्षिक आयोजन घुमंतु सभ्यताओं की समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा तथा रक्षा क्षेत्रों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित के सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की वृद्धि हुई। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि इस समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। अमरीका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 2 दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। अमरीका की वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 लोग अभी लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के खिसकने के कारण आई बाढ़ से भुट्टीकोशी नदी के किनारे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए तथा पन बिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में हरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने

0: पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बातचीत हुई। बैठक में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्यघर, पीएम कुसुम और पीएम जनमन योजनाओं के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही कपड़े के थैलों और दोबारा उपयोग वाली बोतलों को बढ़ावा देना भी है। यह अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप 2 कोपा अमरीका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण अभी हो रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं हीरो फिल्म के इस बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। आवाज लता मंगेशकर की है, गीत लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। प्रोग्राम का नाम है चित्रपट संगीत। लीजिए सुनिए ये गाना।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: अरे गोपाल,

0: सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत, और कार्यक्रम की अगली पेशकश में लीजिए सुनिए सरगम फिल्म का ये बहुत ही प्यारा गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर में, रचना आनंद बख्शी की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम, और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है, तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। इस गीत की महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नोवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी, विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875, ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन, जो बंकिम चंद्र ने ही संपादना किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। ये भी आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है, जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया, उसके पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ, पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था, और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नोवेलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे, जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर, नॉट ओनली ए नोवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी।

0: बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस द्वीप का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था, जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र आत्माभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस द्वीप में। बंकिम, मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of स्वदेश पूजा। On 1876, वेस्ट बंगाल की हुगली जिला में गोपाल चंद्र धर नामक एक व्यक्ति वंदे मातरम गीत देश मल्लार धुन में गाया था। और मैंने बोला कि 1871 में इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में हुआ। वंदे मातरम हमारा गर्व है, स्वदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये गीत हर वक्त हमारा आदर्श होगा। रविंद्रनाथ टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला, देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में, तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए सम्मान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
1: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनवेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

खलनायक। इस फिल्म का बहुत ही प्यारा गीत अभी आप सुन रहे थे, अलका याग्निक और साथियों के स्वर में। गीत लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 7:35 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा।

नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा में। दोस्तों, पोषण मानव विकास की नींव है। जब आहार संतुलित और सुरक्षित होता है तो बच्चे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं, उनका विकास हो सकता है, वयस्क उत्पादक के रूप में काम कर सकते हैं और परिवार रोके जा सकने वाली बीमारियों पर कम खर्च करते हैं। इसके विपरीत खराब आहार, एनीमिया, बच्चों के विकास में रुकावट और मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। संतुलित आहार और पोषण संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, जिसमें इस साल की थीम है पोषण की शक्ति को जानें। ये इस बात पर जोर देता है कि खान पान संबंधी सही चुनाव समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को किस प्रकार महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ये व्यक्तियों और परिवारों को जीवन शैली से संबंधित बीमारियों की रोकथाम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने, ऊर्जा स्तर में सुधार लाने और दैनिक आहार संबंधी आदतों के माध्यम से दीर्घकालिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में संतुलित पोषण की भूमिका को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन का चुनाव करने से भविष्य में जीवन शैली संबंधी विकारों के विकसित होने का जोखिम बहुत ही कम होता है। हमारा खान पान संतुलित, पौष्टिक और प्राकृतिक होना चाहिए, जिसमें ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और पर्याप्त प्रोटीन शामिल हों। अपनी थाली में कम से कम 3 अलग-अलग रंगों की सब्जियां जरूर शामिल करें। हर मुख्य भोजन में दाल, चना, राजमा, सोयाबीन, अंडे, पनीर जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को जगह दें। बाजरा, ज्वार, रागी या अन्य मिलेट्स और साबुत अनाजों को अपनाएं। खाने में तेल, घी और चीनी का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करें। नमक और शक्कर की मात्रा कम रखें। दिन भर में भरपूर पानी पिएं। मीठे कोल्ड ड्रिंक्स की जगह नींबू पानी, छाछ या नारियल पानी पिएं। पैकेट बंद और जंक फूड से दूर रहें। हमेशा ताज़ा बना हुआ खाना और स्थानीय मौसम में मिलने वाले फलों और सब्जियों का सेवन करें। स्वस्थ और दीर्घायु रहें। और अब इस जानकारी के बाद बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ये गीत। और इस गीत के साथ ही मुझे यानी अपनी दोस्त और होस्ट रजनी को कार्यक्रम झरोखा से दीजिए इजाज़त। नमस्कार और लीजिए सुनिए ये गीत।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती।
0: भूले

0: दूसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल। बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
2: सखी सहेली।
1: बॉम्बे टॉकीज और
3: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
4: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन।
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
5: इसके साथ ही प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं ममता चंद्राकर के गाये पारंपरिक लोकगीतों को। लीजिए सुनिए ये बहुत ही प्यारा सा लोकगीत।

0: सुनील सोनी और ममता चंद्राकर के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
1: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
4: मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्शन।
5: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: ममता चंद्राकर के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम बाजी मादर अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 7:55 हुए हैं। अब आइए हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज की दोनों सभाओं से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य एवं शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में। अब से कुछ ही पलों बाद यानी 8:00 समाचार प्रभात व 8:15 हम 15 मिनट पर मॉर्निंग न्यूज हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। व इसके ठीक पश्चात यानी कि 8:30 पर समन्वित छत्तीसगढ़ी पत्रिका कार्यक्रम मोर भुइयां का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। विविध भारती कार्यक्रम जिसे हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकते हैं सुबह 9:00 से, सुबह 11:00 से, अपराह्न 12:00 से और रात्रि 9:00 से। प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से सुबह 9:55 पर, 11:55 पर और शाम 6:45 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर की अगली कड़ी हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से सुबह 10:00 से। फोन इन कार्यक्रम हेलो संगी का समय होगा सुबह 10:30 का। प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमर कोट सुनिएगा शाम 5:00। झलकी प्रहसन का समय होगा शाम 5:10 का। युवा श्रोता अपना कार्यक्रम युववाणी सुन सकेंगे शाम 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा स्मार्ट खाओ सेहत बनाओ। इसके साथ ही होगा क्रम रोजगार सूचना और चर्चा के अंतर्गत सुनेगा अंगदान में युवा आगे आए। फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे शाम 6:20 पर, शाम 7:00 और रात्रि 8:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से शाम 7:30 पर। गैर फिल्मी गीत सुनिएगा रात्रि 8:00, विविध संगीत रात्रि 10:00 और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 10:30 पर।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला
2: प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
0: इस संदेश के साथ ही कार्यक्रम विवरण अब समाप्त।

हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला, मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
1: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया और अर्जेंटीना के फुटबॉलर नियोलन मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। भारत आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अपनाए जाने के हमेशा से खिलाफ रहा है। भारत का मानना है कि क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए सदस्य देशों के बीच संपर्क बढ़ना जरूरी है। हालांकि संपर्क परियोजनाओं के साथ सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सदस्य देशों के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और स्टार्टअप व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर देता रहा है। भारत का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और उद्यमिता क्षेत्रीय विकास और सहयोग को नई गति दे सकती है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
4: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
2: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
4: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा, जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
2: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान

0: से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रही थी। इस बीच अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।
1: मुझे लगता है कि ये आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जो राष्ट्रपति और प्रशासन शुरू से ही कहते आ रहे हैं। भारत एक गतिशील, मजबूत और मुश्किलों का सामना करने में सक्षम अर्थव्यवस्था वाला देश है, और मुझे लगता है कि जो जीडीपी रिपोर्ट या आंकड़े सामने आए हैं वे फिर इस बात को पुख्ता करते हैं कि भारत यहां तेजी से उभरती हुई एक बड़ी ताकत है।
0: अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बिसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है।
2: हमने अमेरिका को पूंजी के प्रवाह और व्यवसायियों को विकसित करने के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाया है। हमने लाखों कामकाजी परिवारों को ऐतिहासिक कर राहत दी है और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त किया है। ये उपलब्धियां विकास के अगले दौर को आकार दे रही हैं और हमने तो अभी शुरुआत ही की है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: Samachar Prabhat mein aapka phir swagat hai. भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है।
2: भारत ने दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। यह बयान हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि संधि को स्थगित करने के भारत के कारण इसके निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहराते। पैनल ने भारत को 1960 के जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन जारी रखने का आह्वान किया। हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मध्यस्थता पैनल की स्थापना ही संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में संपन्न हुआ। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं।
4: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो चुकी है और 3,925 लोग अब भी लापता हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं देश भर के 11,000 से अधिक लोगों को भी बचाया गया है। भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं। बाढ़ से 11 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नेपाल ने कई देशों से फ्रीजर, डीएनए परीक्षण उपकरण, ड्रोन पुल और विशेष सुरंग बचाव उपकरण सहित सहायता मांगी है। 18 भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम डीएनए पहचान में सहायता कर रही है। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मौसम विभाग ने आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
5: उड़ीसा में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने

0: सुंदरगढ़ और केंदुझर के लिए रेड वार्निंग जारी की है। झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है, जबकि 12 जिलों येलो वार्निंग में है। ये बारिश गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उससे सटे उड़ीसा के उत्तरी तटीय इलाकों में बने वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के कारण हो रही है। IMD का अनुमान है कि कल के बाद बारिश कम हो जाएगी। काश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत 171 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई हो चुकी थी। मंत्रालय ने बताया कि धान की खेती 414 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दलहन की बुआई 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है। नागालैंड विधानसभा का 9वां सत्र आज शुरू होगा। इस सत्र में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बिल 2026, कई सरकारी विधेयक और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अभिकरण ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से इसकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में जानकारी मांगी है। ये निर्देश वर्ष 2013 में दिए निर्देश के बावजूद तेजाब की आसानी से उपलब्धता पर चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, 2 कोपा अमरीका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। AFC अंडर-20 फुटबॉल एशिया कप क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हरा दिया है। ताशकंद में कल सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मैच बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, किर्गिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी बोले, यूक्रेन युद्ध का अंत आवश्यक। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है। जनसत्ता की सुर्खी है, किर्गिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति से भी वार्ता और कूटनीति से पश्चिम एशिया के संघर्ष के समाधान की अपील की। अमर उजाला के शीर्षक है, वैश्विक बाधाओं के बाद भी रफ्तार में भारत, विकास दर 7.8% पहली तिमाही में भारत की GDP सबसे तेज, खपत और निर्यात ने संभाला मोर्चा। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अगर हिंदू जागते हैं तो दुनिया जागती है, मानवता की निस्वार्थ सेवा के जरिए भारत विश्वगुरु बना। राजस्थान पत्रिका ने समुद्र में शक्ति शीर्षक से सचित्र दिया है, INS निपुण नौसेना में शामिल, समुद्र में गहराई तक मदद पहुंचाने में सक्षम है स्वदेशी पोत।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की GDP 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का

0: search of hydropower workers as families wait anxiously. And Lionel Messi announces retirement from international football, ending legendary 21-year career with Argentina national team. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: समाचारों का अनुप्रसारण अभी हो रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से. सुबह के 8:30 हुए हैं. समन्वित छत्तीसगढ़ी पत्रिका कार्यक्रम मोर भुइयां अब हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से. कृपया प्रतीक्षा कीजिए.

0: छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां के आज के ए अंक में आप सभी श्रोता साथी मन के स्वागत है। जय जोहार महेंद्र साहू के तरफ ले। श्रोता साथी हो, आज के पत्रिका में आप मन सुनिया श्री जितेंद्र कुमार वर्मा ले वार्ता, जेखर विषय हवे छत्तीसगढ़ में अभिवादन के परंपरा। एक औ देव की ए कहानी आप मन ल सुनाही श्री छगनलाल नागवंशी, और कविता सुनबो श्री मूलचंद साहूले। श्रोता साथी हो, हमार छत्तीसगढ़ में जोहार करे के या अभिवादन करे के जुन्ना परंपरा हवे। ये हर अभी घलो गांव गांव शहर शहर में देखे जा सकत हे। अभिवादन के परंपरा ला सुरता देवात हमें श्री जितेंद्र कुमार वर्मा।
1: संगवारी हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के नाम के महिमा के बखान करत लिखते कि एक घड़ी आधो घड़ी पुनि आधो के आध, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। और संगे संग औ लिखते कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। संगवारी हो, आदि जुगले मनखे मन भगवान के महिमा के गुणानुवाद करत आवत है, नाम लेवत आवत है, चाहे भजन कीर्तन होए या फिर दुआ सलामती होए या फिर अभिवादन। भारतीय संस्कृति में अभिवादन करे के जुन्ना परंपरा है। अभिवादन में जय राम, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, सीताराम, जय भगवान, जय भोले, हरि ओम, जय माता दी आदि कस कतकोन नाम मनखे मन अभिवादन स्वरूप लेते, जेमा वो विधाता के नाम तो लेवाते है, संगे संग यही अभिवादन के बहाना मनखे के आत्मी जुड़ाव, मया ममता और सादर सम्मान के भाव घलो दिखते। वैसे तो बड़े के छोटे मन पाँव पैलगी करते, फिर गांव घर के रोज मिलैया लईका सियान जवान मन अभिवादन करके एक दूसर ला आदर देते। अभिवादन के शब्द बोले भर भर बड़े छोटे नहीं लगे, सब अपन जुड़ाव और विनम्रता दिखावत अभिवादन करते। छत्तीसगढ़ में मितान बधे के घलो रिवाज है, एक मितान दूसर मितान ला घलो बराबर अभिवादन करत बोलते, जय सीताराम, जय जोहार मितान, सीताराम मितान, सीताराम गंगा जल, गंगा बारू आदि आदि। संगवारी हो, मनखे मन के आपस में मेल मिलाप के बेरा अभिवादन स्वरूप भगवान मन के नाम लेके ये जुन्ना परंपरा आजो सरलक चलत है। आज आधुनिक काल में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय, हलो, नमस्ते आदि कस कतकोन नया नया शब्द घलो सुनेल मिलते। पंथ और समाज के अनुसार घलो अभिवादन में जय सतनाम, साहेब बंदगी, जय बूढ़ा देव, जय बड़ा देव, जय लोधेश्वर, जय बहादुरीन करारीन, जय राजिम दाई, जय सकाम्बरी दाई आदि कस औ कतकोन अपन अपन इष्ट देवता के नाम लेवत मनखे मन अभिवादन करत दिग्जत है। धर्म के अनुसार घलो अभिवादन के परंपरा है, उखर शब्द घलो प्रचलित है, जैसे वालेकुम सलाम, सलाम, खुदा हाफिज आदि आदि। हमार भारतवर्ष में भिन्न भिन्न राज के पहचान उखर अभिवादन ले घलो हो जाते, जैसे तमिलनाडु और केरल के पहचान में वड़क्कम, पंजाब में सत श्री अकाल, राजस्थान में खंभागणी, गुजरात में केम छो आदि आदि चलते। वैसने हमार राज छत्तीसगढ़ के बहु प्रचलित अभिवादन के शब्द आए जोहार, हौ जोहार। हमर छत्तीसगढ़ के पार परंपरा, संस्कृति, संस्कार और तीज तिहार में कृषि और ऋषि संस्कृति के साथ साथ आदिवासी संस्कृति के घलो बराबर योगदान है। जोहार जे आदिवासी संस्कृति के उपज आए, जेला मुख्य रूप ले आस्ट्रो एशियाई, मुंडारी या फिर संथाली भाषा के निकले एक आदिवासी शब्द माने जाते, जेखर मूल अर्थ में प्रकृति के प्रति भाव समर्पण समाहित है। जोहार हमर छत्तीसगढ़ के संगे संग उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के वनांचल क्षेत्र में घलो अभिवादन स्वरूप सुने पर मिलते। जोहार

0: जय भोले भोले है जय भोले हो गए, सतनाम है जय सतनाम हो गए। लगते यही क्रम ल देखत या एखरे देखा देखी या भाव प्रवाह के सेती जोहार है घलो जय जोहार होगी सोही। जानकार मन जोहार शब्द ल अपन आप में पूर्ण और सार्थक अभिवादन के शब्द माने है, फिर चलन में जय जोहार घलो तो है। जय जुड़े के एक कारण यहू हो सकते, जैसे खेवनहार पालनहार संघार आदि शब्द ल देखबो त यमा हार मतलब हरना है, अर्थात खेवनहार पालनहार रुंगहार वो तो विधाता अर्थात भगवान के नाम है। मतलब जो हार माने जो हरण करने वाला है, अर्थात जैन दुख हरैया है ऐसा दुख हरैया के जय हो, यही भावना मा जय जोहार घलो प्रासंगिक लगते। संगवारी हो जोहार के घलो दू भेद दिखते, एक ठन सेवा जोहार और एक ठन जय जोहार। आज सेवा जोहार वनांचल क्षेत्र मा और जय जोहार मैदानी क्षेत्र मा सरलक सुने पर मिलत है, फिर उड़ीसा झारखंड पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के वनांचल क्षेत्र मा आजो जोहार बोले जाते। फिर संगवारी हो पहली बेर जोहार कौन बोली सो ही, ये शब्द कबल प्रचलित है। ये डहार जाबो तरामचरित मानस के अयोध्या कांड में एक चौपाई है जेमा निषाद राज जी महाराज भगवान राम ले मिले के बेरा उन ल जोहार करत अपन सैन्य साज के बढ़वार के कामना करत दिखते। कि कथे कि चले निषाद जोहारी जोहारी सूर सकल रन रुचैरारी। माने निषाद राज जी द्वारा त्रेता युग में ये शब्द के प्रयोग के वर्णन मिलते। निषाद राज जी पेड़ प्रकृति के बीच रहत रहिन, ते पाए के वनांचल में ये शब्द आजो प्रचलित है। जोहार ले ही जोहारना बने है, जेखर मतलब है अपन श्रद्धा भाव ल व्यक्त करना। यादव भाई मन के दोहा मा सुने बर मिलते कि नदियक तीर तीर बैलल बैलल ले गयो बैलक तीर मा बैलक मुड़ मा माटी रे और ठाकुर घर जोहारेल गयो बुचवा हड़वा वासी रे। तो माने भाव प्रकट करना एखर मूल अर्थ है, मिलना एखर मूल अर्थ है, एखर मूल अर्थ है वादन करना स्वागत करना। पौनी पसारी के नेंग करत गांव में ठाकुर लोहार बैगा आदि मन घलो मिलेल जाते और अपन भाव भाव प्रकट करत जोहार थे और पौनी पसारी लेते। कुछ भड़के मन या चिढ़े मनखे मन घलो चिढ़त बेरा कि थे कि मैं फलाना ला बने जोहारे हूँ, फिर एखर मतलब सकारात्मक न होके अपन रिस और रोष ल व्यक्त करना है। जोहार शब्द ल लेके छत्तीसगढ़ी में कतकोन मनमोहक गीत सुने पर मिलते। कुछ गीत के मुखड़ा प्रस्तुत है, जैसे गौरा गौरी गीत में जोहार जोहार मोर ठाकुर देवता सेवर लागाऊं मैं तोर, वैसने बिहीना के जोहार ले ले मुस्का के जोहार ले ले। अब एक गीत है तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला झारा झारा जोहार तें जोहार ले बे संगी आवत जावत तें जोहार ले बे। वैसने तोला सौ सौ बार जोहार घेरी भेरी है जोहार कोरी कोरी है जोहार घेरी भेरी है जोहार। अब एक गीत जोहार जोहार देव जोहार जोहार जोहार जोहार बड़ा देव जोहार जोहार। और एक सेवा गीत घलो मिलते जोहार बूढ़ी दाई जोहार बड़ी माई जोहार बमलाई ओखरे संगे संग देवी जोहार जोहार जोहार ले सगा छेरछेरा जोहार आदि जोहार जोहार दाई कतको नकन गीत हेवे। और वैसने जय जोहार के घलो गीत है, जय जोहार में जय जोहार ले ले मोर भैया जाय के बेरा जय जोहार ले ले तले दे संगी संग गोठियावत गोठियावत मोर जाय के बेरा हो गए। तो जोहार सिर्फ अभिवादन के शब्द नो हरे, ये ला बोले भर नहीं जाए बल्कि बोलत बेरा हाथ घलो जोड़े जाते जेमा सम्मान विनम्रता और आदर के भाव झलकते। सार में कहन त जोहार मा जग कल्याण के भाव है, आदर सत्कार है, विनम्रता है, अभिवादन है, स्वागत है आदि के संगे संग सबले बड़े बात एमा एक भावनात्मक जुड़ाव है। और यही जुड़ाव ला लेके आज चाहे गाँव होए चाहे शहर होए चारों कोती जोहार और जय जोहार के शब्द प्रचलित है, जिला छोटे बड़े लयिका सियान मन एक दूसर ला अपन भावना ल व्यक्त करत अपन माया ल व्यक्त करत सुमधुर वचन मा हाथ जोड़ के बोलते। तो आप सबोला मोर जोहार है जय जोहार है और मोला विदा दुहु।
1: अभी आप मन श्री जितेंद्र कुमार वर्मा ले वार्ता सुनत रहो, विषय रहिस छत्तीसगढ़ मा अभिवादन के परंपरा। अब कार्यक्रम में आगू बढ़त हन और आप मन ल सुनवात हन एक कहानी जेकर शीर्षक हावे

0: एक औ देवकी, एक कहानी सुनात हैं श्री छगनलाल नागवंशी।
1: महानदी में गंगरेल बांध बने के कारण अपन गांव ल छोड़ के पुनीत परिवार सहित अपन ससुराल में आके बस गए रहीस। शुरू शुरू में पुनीत हर ज्ञानी के मकान ला 5 कोरी महीना में किराए में लेके रहा है। उस समय दूसर गांव ले आके रहुइया मनखे मल्ला ग्राम पंचायत डहर ले आबादी जमीन मिलना बड़ मुश्किल रहा है। पुनीत हर पुनाराम और खुरबहरा के लगामी जमीन ला उगता में लेके माटी के बड़ जनिक सुघर घर बनवाना रही से आगु पाछू उत्ती बुड़ती चारों मुड़ा परछी बड़े बड़े खोली पठौआ में बड़का बड़का धान के कोठी एक ठिन रंधनी खोली बीच में माई घर बड़ जन गाय गरु बर कोठा और बीच मंझोत में सुघर अंगना दुआरी घर के पाछू डहर बड़ जनिक बकरी कुआं और 5 हॉर्स पावर के पंप रहा है। तुलसी चावरा के तीर मां पुनीत अपन पुरखा के देवता धामी विराजमान करवाए रहा है। पुनीत के 3 बेटा टीका श्याम और रवि रहा है और 2 बेटी दुकलहीन और किरण नाव रहा है। बड़का बेटा टीका हर खेती किसानी करे, टीका हर नवा नवा तकनीक के संगे संग खेती किसानी करे, गोबर और जैविक खातु के उपयोग अपन खेत में करे, वह रोपा लाई चोपी और खर्री बावत करे, काबर की बाहरा मा माई धान और भर्री भाठा टेपरी मा कोदो कुटकी और हरुणा धान बोवय। जंगल ले निकले नरवा हर सोज पुनीत के खेत के बीचों बीच गुजरे। 4 महीना पानी बरसात के दिन मां अब्बड़ पानी पूरा आतीस डुमरही झिल्लही के बूता बना देतीस। पूरा पानी हर मोंघा पारला फोड़ डारतीस। भर्री भाठा टीकरा डोली मन बने बने नरवा के तीर तीर के बाहरा डोली मन के हालत खराब हो जातीस। पुनीत हर मेड़ पार मा किसिम किसिम के फलदार रूख राही लगावे जेकर ले नरवा के माटी के कटाव ला रोके बर बहुत सुविधा होवे। नान्हे बेटा श्याम सिंह पढ़ाई में अब्बड़ होशियार रहे, ओकर सपना रहे कि पढ़ लिख के प्रशासनिक अधिकारी बन के प्रशासन चलावे और जनता के सेवा सटका करव। नान्हे नोनी किरण के चट मंगनी पट बिहा हो गए रहा है, ओहर पठौनी चल दे रहीस। मंझला बेटा रवि हर पढ़ लिख के शहर मा वकीली काम बूता करके लोगन मल्ला न्याय देवाए के काम करे। गांव के मंगलू एक दिन पुनीत घर बैठेला आईस और ओहर कहते भाटो कन्हई के घर वाली बुधिया हर आप मन भर बहुते जलन मरथे। पुनीत कहते कान के सुनल और आँखी के देखल मा बहुतेच अंतर होते, मनखेला अपन कर्म और किस्मत मा विश्वास करना चाही। पुनीत और मंगलू गोठियात रहा है वतकीज बेर गांव के एक झिन सियानदाई फुलवासन हर घलोक आगे। पुनीत कहते आ बैठ काकी, फुलवासन कहते बैठेच बैठ तोय बाबू। फुलवासन कहते सब बने बने बाबू। पुनीत कहते सब बने बने हे काकी। फुलवासन कहते कन्हई के घरवाली बुधिया हर तोर बड़ अब्बड़ जलन मरत रिस कातुगा। बुधिया घेरी बेरी कहात रही थे फलाना के घर हा उधर जातीस। पुनीत के घरवाली गुवालिन कहते हमल्ला उधो के लेना न माधो के देना काकी छोड़ो ना। पुनीत हर चाक ला धर के मियार मा तुरते लिख दीस जलने वाला जला करे किस्मत हमर साथ है। पुनीत कहते कौआ के सरापे ले गाय नी मरे। पुनीत के गोसाइन ग्वालिन हर दिन भर अविया जविया बर गुड़ के चाय बनावत थकाए घलुक नहीं। उकर घर कोन्हो गांव के सगा सोदर मझनिया आतीस तदार भात जरूर खातीस और रथिया आए ले जीवन खाके 4 पहर रात रुकतीस। सावन भादो के महीना रहा है, बिजली बड़ चमकत रहा है, बादल अब्बड़ गरजत रहा है, घूमड़ घूमड़ के मूसलाधार बारिश होवत रहा है। घर के अमली रूख के बुढ़ती डहर के एक दीवाल भरभरा के गिर गए। पुनीत घबराइस नहीं, फिर ओहर हिम्मत ले काम लीस धीरत धरीस। घुमका वाला मनोहर हर ओकर घर ला ऊँचाए रहा है, ओला तुरते बलाए बर सोचीस। पुनीत हर तिजूला मनोहर मिस्त्री ला बलाए बर भेजीस। मनोहर अपन घर के परछी मा अंगेठा करा बैठ के जोंधरा ला भूंज के खावत रहा है। मंझोत के तीर दीवार मा बने खिड़की करा के फूला पठेरा मा रेडियो माढ़े रहा है, ओमे गाना बजत रहा है, ओला वो सुनत रहा है। तिजू हर हाँक पारीस, मनोहर के घरवाली रमशीला खेरपा ला खोलीस। रमशीला डर्रा गे, वो हर एक सुर

0: म कहिथे, अई तीजू, अतका मूसलाधार पानी बादर म कहाँ ले आवत हस गा, तय कापत हस, तोला जूड़ लागत होही, झप ले भीतरी डहर आ, मैं यहाँ तोर बर तुरते गुड़ अदरक के बढ़िया चाह बना के लानत हौं। तीजू अंगेठा करा पीढ़ा म बैठ गे। रमशीला कहिथे, तीजू गाँव घर में सब ठीक ठाक तो है ना? तीजू कहिथे, सब बने बने हैं दीदी। फिर रमशीला कहिथे, फिर का तीजू? तीजू कहिथे, मनोहर भाटोला झप ले लाबे कहिके पुनीत मामा हर भेजे हे। तीजू कहिथे, चन्नागा भाटो बहुते चलकर रहा होगे हे, मामा के एक ठिन दीवाल हर भरभरा के उदर गे हे, मनोहर ज्यादा फरिया के पूछना उचित नहीं समझीस। दोनों झीन वही पांव बिना देर करे अपन अपन साइकिल मा गांव पहुंच गए। मनोहर एक बज्जू घर के दीवाल ला गिरे देख के दंग रही गे। मनोहर पुनीत ला कही थे, भांटो आप मन झन घबरावो, भगवान में भरोसा रखाओ, मैं तुरते दीवाल ला जोड़े के बुता करता हूँ। पुनीत कही थे, काबर घबराओ मनोहर, ऊपर वाला भगवान सब बने करते। चल चाह पी, तो दीदी हर अंगाकर रोटी और बंगाला के चटनी बनाए हैं, चल खा फिर कमाबे। पुनीत अपन बेटी दुकलहीन ला कही थे, जाना वो दुकलहीन हमर कमैया बनिहार मल्ला तियार के काम मा बलाबे। अतका बात तो सुन के दुकलहीन हर गांव के तियारे बनिहार मल्ला झप ले बलाईस। दुकलहीन कही थे, चलो कोन्हो माटी के गारा बतावाओ, कोन्हो साइज बोल्डर लानाओ, सबो मन जुर मिल के ओदरे दीवार ला ऊंचाई के कारज करबो। पुनीत हर एक ही सांस मा पुरखा के डोकरी डोकरा और देवता धामी गांव के डिहारिन डोंगरला सुमर के मुड़ी नवाइस। पुनीत के बड़े बेटी दुकलहीन जिला अस्पताल में नर्स रहीस। अस्पताल में भर्ती मरीज के बड़ सुघा सेवा जतन करे, लोगन मन दुकलहीन के कारज से खुश होके ओकर बहुतेज प्रशंसा करे। दुकलहीन गांव के महिला मंडल के संग स्वास्थ्य शिविर लगाए के बूतालब बहुते सुघर ढंग ले करत रहीन। दुकलहीन गांव के जम्मो लोग लईका पिचका टूरा टानका कका बाबा माइलोगिन दाई दीदी बहिनी मल्ला हमेशा साफ सफाई रखे के बात बतावें। पशुपालन मधुमक्खी पालन रेशम कीड़ा पालन जैसन कतकुन काम बूता बर हमेशा प्रेरित करें। दुकलहीन हर दीदी बचत बैंक कल्याणी हेल्थ सेंटर खोले के पुरजोर प्रयास करीस। दुकलहीन कही थे, हमर जुन्ना गांव में हमर जैसन एके मा राहत रहें वैसनहेच रहीबो तेस बाबू। पुनीत कही थे, तय बने कहात हस दुकलहीन, आज ले जम्मो झन संयुक्त परिवार में रहिबोन, एक के चूल्हा में दार भात चूरही। पुनीत हर गांव में मड़ई और नाचा घलोक करवावे। दुकलहीन हर गांव के पढ़िया लोग लईका मल्ला बहनिया चार बज्जी कुकरा बासत पढ़े बर उठे खातिर प्रेरित करत रहीस। लोग लईका संगी जहोरिया मन माटी से जुड़े हुए खेल भौरा बाटी गिल्ली डंडा पिचरंगा चोला खेलतीन टूरी टानकी मन बिल्लस फुगड़ी खेलें। गांव के हर लईका संस्वान बन गे रहा। गांव के नौजवान नोनी बाबू मन अपन गांव के नाम रोशन करे खातिर पढ़ाई लिखाई के संग अपन गांव ला सड़क बनाए खातिर सियान मन के संग कंधा ले कंधा मिला के हर काम ला निस्वार्थ भाव से करत रहीन। गांव के लईका मन प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी करके बड़े बड़े नौकरी चाकरी में लगे लगीन और गांव के नाम रोशन करीन। दुकलहीन हर साल अपन गांव के प्रथम श्रेणी में पास होइया विद्यार्थी मन बर सम्मान कार्यक्रम के आयोजन करीस। दुकलहीन के सुझाव के अनुसार गांव के पटेल कत्थू हर अपन गांव के बैठका में संयुक्त परिवार के महत्ता बतावत दाई ददा सियान साम्रत मन के सेवा जतन के संकल्प ला पारित करीन और उनकर नियमित रूप से इलाज और सही आहार दे के बात रखीस। दुकलहीन ला गांव भर के मन भांची मानय काबर की ओहर ओकर आजी गांव रहे। दुकलहीन गांव के महिला मंडल के संग हर बच्चर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के आयोजन करके गांव के नाम रोशन करीस। जिलाधीश के अनुशंसा ले दुकलहीन ला राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय कतको पुरस्कार से सम्मानित करेगी।
1: अभी आप मान श्री छगनलाल नागवंशी ले कहानी सुनात रहो जेकर शीर्षक रहीस एक औ देवकी। कार्यक्रम के आखिर में आप मन ला सुनवात हन श्री मूलचंद साहू ले ये कविता पाठ।
2: संगवारी हो, मोर कविता के शीर्षक है सुरता आथे मोला। सुरता आथे मोला जुन्ना सियान

असुर तया थे मोला जुन्ना सियन हिंसियान की। पढ़े लिखे नहीं रहा है, अब पढ़े लिखे नहीं रहा है, रहा है फिर ज्ञान की। सुरता आते मोला जुन्ना सियन हिंसियान की। सुरता आते मोला जुन्ना सियन हिंसियान की। सुत के बिहिन आले चार बजे उठे, सुत के बिहिन आले चार बजे उठे, जाता मुसर डे की माँ धान को दो कुटे, जाता मुसर डे की माँ धान को दो कुटे। कनी हम पंछा बांधे, कनी हम पंछा बांधे, सियनहिन कछोरा बांध के। सुरता आते मोला जुन्ना सियनहिन सियान के। सुरता आते मोला जुन्ना सियनहिन सियान के। अंगरा रोटी धर के खेत खार मा जावे, अंगरा रोटी धर के खेत खार मा जावे, रुक छाँव मा बैठ के गुड़ संग मा खावे, रुक छाँव मा बैठ के गुड़ संग मा खावे। कोनो कामला नहीं का है, अब कोनो कामला नहीं का है, हा भाई ये जियान की। सुरतया थे मोला जुन्ना सियन हिन सियान की। सुरतया थे मोला जुन्ना सियन हिन सियान की। राम रूप मा पहिरे लुगरा औ धोती, राम रूप मा पहिरे लुगरा औ धोती, सियन सियन हक गोठ लागे हीरा औ मोती, सियन सियन हक गोठ लागे हीरा औ मोती। भाजी को दई मा जीवन बीते, भाजी को दई मा जीवन बीते, चले छाती तान की। सुरतया थे मोला जुन्ना सियन हिन सियान की। सुरतया थे मोला जुन्ना सियन हिन सियान की। पढ़े लिखे नहीं रहा है, अब पढ़े लिखे नहीं रहा है, रहा है फिर ज्ञान की। सुरतया थे मोला जुन्ना सियन हिन सियान की। सुरतया थे मोला जुन्ना सियन हिन सियान की। मोर नगरिहा नांगर बैला हे मोर संगवारी, मोर नगरिहा नांगर बैला हे मोर संगवारी, मोर संगवारी जी, मोर संगवारी जी, मोर संगवारी। मोर नगरिहा नांगर बैला हे मोर संगवारी, मोर नगरिहा नांगर बैला हे मोर संगवारी। बड़े बिहनिया ले खेत में जाता, खेत में जाता, गद गद हो के जी बढ़त कमाता, बढ़त कमाता। गुण तोर भारी जी, गुण तोर भारी जी, गुण तोर भारी। मोर नगरिहा नांगर बैला हे तोर संगवारी, मोर नगरिहा नांगर बैला हे तोर संगवारी। एक मुड़ा लाल बैला एक मुड़ा सादा, एक मुड़ा सादा, घर के कमैया में सबले त ज्यादा, सबले त ज्यादा। घाम औ पानी के, घाम औ पानी के नहीं करे चिन्हारी। मोर नगरिहा नांगर बैला हे तोर संगवारी, मोर नगरिहा नांगर बैला हे तोर संगवारी। धन हक जोतत ले भर्रीह आगे, भर्रीह आगे, जम्मो कचरा के साध भगागे, साध भगागे। आओ जोत डारे जी,

आउजोत डारे जी तोर भाटा भारी, मोर नगरिया नांगर बैला हे तोर संगवारी, मोर नगरिया नांगर बैला हे तोर संगवारी। संगवारियो, मैं धरती माता के आउ एक ठन कविता गावत हूँ, ओला ध्यान देहू। इही धरती के इही भुइया के, इही धरती के इही भुइया के, बन जा अटल किसान सुआ परेवा गावे ददरिया बन के दोनों मितान, सुआ परेवा गावे ददरिया बन के दोनों मितान। इही धरती के मेहनत करबो अनु

0: भर गे बोरा बोरी, दुखी भगाबो सुखी मनाबो, दुखी भगाबो सुखी मनाबो, मन हो गे अब आन, सुवा परेवा गावे ददरिया बन के दोनों मितान, सुवा परेवा गावे ददरिया बन के दोनों मितान। यही धरती के यही भुइया के, यही धरती के यही भुइया के, बन जा अटल किसान, सुवा परेवा गावे ददरिया बन के दोनों मितान, सुवा परेवा गावे ददरिया बन के दोनों मितान, सुवा परेवा गावे ददरिया बन के दोनों मितान।
1: अभी आप मन श्री मूलचंद साहूले एक कविता पाठ सुनत रहो और एकरे संग छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के ए अंकले मोला इहे विदा देवा। जय जोहार।

अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। संपादक और प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र साहू। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा आकाशवाणी का रायपुर।

अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा यह गीत आप सुन रहे थे। प्रीतम के संगीत के साथ आवाजें बेनी दयाल और शेफाली अलवारिस की, और एक गीत हमने लिया ये जवानी है दीवानी फिल्म से। तो किस तरह से करें अपने इस दिल को काबू में, बताएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

बेनी दयाल की आवाज में आप सुन रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत, टू स्टेट्स फिल्म का ये गीत आपने सुना। और हमारा दिल भी बिल्कुल टू स्टेट में रहता है कि स्वास्थ्य की ओर जाए या लालच की ओर, किसे चुने। जब भी बात आती है कि डाइट की जाए या पोषकता को अपने खाने में ध्यान दिया जाए उसका, तो कहीं ना कहीं मन

विचलित हो जाता है। एक दो दिन की डाइट तो फिर भी चल जाती है, लेकिन आगे जब अपनी सब पसंदीदा चीजों को छोड़ना होता है, आमतौर पर पता नहीं क्यों हमें वही चीजें ज्यादा पसंद आती हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन हमारा मन तो उसी ओर हमें लेकर जाता है, बार बार उसी ओर लेकर जाता है और हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। तो जब किसी तरह की मजबूरी हमारे ऊपर आ जाती है, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आ जाती है, तो कुछ दिन तो हम ये फॉलो करते हैं, कुछ दिन तक हम ये मानते हैं कि भाई ये नहीं करना खाना है या वो नहीं खाना है, लेकिन जैसे ही तबीयत थोड़ी सी ठीक होने लगती है और स्वास्थ्य के अच्छे होने की खबर हम तक पहुंचती है रिपोर्ट्स के जरिए, या हमारी अच्छी सेहत हमारे चेहरे पर नजर आने लगती है, तो हमारा मन एक बार फिर हमें उन्हीं गलियों में ले जाना चाहता है जिन गलियों से हम किसी तरह से निकल कर अच्छे स्वास्थ्य की दिशा में बढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे समय पर खुद को रोकना बहुत जरूरी होता है, थोड़ा खुद के साथ सख्त होना भी पड़ता है कभी कभी, कभी कभी मन को समझाना पड़ता है। लेकिन ये चीज आप सोचिए कि खुद से आपको प्यार करना है, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य हो तो हर दिन त्योहार ही होता है।

0: आई लव न्यू ईयर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजें, मयूर पुरी के बोल, प्रीतम का संगीत।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें

0: भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और हम बातें कर रहे हैं पौष्टिकता की या कहें राष्ट्रीय पोषकता सप्ताह के मौके पर हम बात कर रहे हैं अपने जीवन में पौष्टिकता हम कैसे ले आ सकते हैं खान पान में और किस तरह से जो चीजें हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है उन्हें अपने खान पान से दूर कर सकते हैं। तो जब भी हम डाइट करने का एक फैसला करते हैं तो एक मौके पर जाकर हमारा मन हमें वापस उस ओर ले जाना चाहता है जहां से हम किसी तरह निकल के आए, लेकिन ऐसे वक्त में हमें जमे रहना है।

अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे मोनाली ठाकुर की आवाज में, अमित त्रिवेदी का संगीत लुटेरा फिल्म के इस गीत में। और जब भी हम कदम बढ़ाते हैं स्वास्थ्य की ओर तो कुछ इसी तरह से मन गुनगुनाता है और जीवन में ऐसा लगता है कि बहुत बदलाव आ गया है। शरीर भी हमें हल्का लगता है, चेहरे पर अलग सी चमक आ जाती है, लेकिन इस ओर बढ़ने के लिए ऐसा लगता है जैसे ये लुटेरा फिल्म का गीत था, लगता है कि हमारी सारी खुशियां ही लुट गई हैं, कुछ भी हमें खाने पीने नहीं मिलता। पर आप इसके लिए क्या कर सकते हैं ये अगर हम सोचें तो एक बड़ा बड़ा जो हम कदम उठाते हैं ना, कि बड़े बड़े फैसले लेते कि आज के बाद हमें बिल्कुल नहीं खाएंगे, मिठाई को हाथ भी नहीं लगाएंगे, और इस तरह के जब बड़े बड़े हम फैसले लेते हैं तो कुछ समय के बाद वो हमें ज़्यादा लगने लगते हैं, दबाव लगने लगता है कि क्या करें। इसलिए जब हम जीवन में छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो वो लंबे समय तक चलते हैं। स्वास्थ्य की ओर भी इसी तरह से आप छोटे छोटे कदम बढ़ाना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आप इन कदमों के जरिए ही एक बड़ी मंजिल को पा भी सकते हैं। तो छोटे कदम क्या हो सकते हैं, जैसे कि सबसे छोटा कदम तो ये हो सकता है कि आप भोजन में नमक और शक्कर की मात्रा धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं। तो इससे आपका जीवन तो बदलाव आएगा ही आपके जीवन में, और साथ ही साथ आपको अपने आप ही ये बदलाव महसूस होंगे। तो चलिए कुछ ऐसा ही करते हैं, आज के लिए इतना ही प्रण काफी है।

श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे थे समीर के बोल, इलैयाराजा का संगीत चीनी कम फिल्म के इस गीत में। और आप भी सोचिए कि आज से अपनी चाय कॉफी में लेंगे चीनी कम और रखेंगे अपने स्वास्थ्य का ख्याल, साथ ही बनेंगे अपने ही स्वास्थ्य के नजरबट्टू।

तो आज से रखेंगे अपना ख्याल और अपने स्वास्थ्य का ख्याल, इसी वादे के साथ करते हैं आज के इस कार्यक्रम से इजाजत लेते हैं। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे समरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी

जन्म 1 सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे। नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मिरड़ी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं जिन्हें जगाया है सी अर्जुन ने।

पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे। इसी फिल्म की और भी संगीत रचनाएं बड़ी ही यादगार हैं।

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई, आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

दोस्तों, सी अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है सी अर्जुन।

0: लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। ओडिशा हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्रा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। पीएम आवास ग्रामीण के पात्र हितग्राहियों को निशुल्क रेत उपलब्ध कराने मुख्यमंत्री ने ई रेत संगवारी पोर्टल का शुभारंभ किया और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। अब समाचार विस्तार से। ओडिशा हाईकोर्ट के सीनियर जज जस्टिस कृष्ण राम महापात्रा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। ये नियुक्ति हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के 4 सितंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद प्रभावी होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सीनियर जज जस्टिस संजय के अग्रवाल

0: पाल को राजस्थान हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने अनुशंसा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की 7.8% की उत्साहजनक जीडीपी वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि दुनिया भर में अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की जीडीपी वृद्धि देश की मजबूत अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ भी इस राष्ट्रीय विकास की गति के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल नवा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क रेत उपलब्ध कराने के लिए ई रेत संगवारी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण में हितग्राहियों को रेत की उपलब्धता आसान बनाना और उनके पक्के घर के सपने को साकार करने में सहयोग देना है। ई रेत संगवारी पोर्टल के माध्यम से पीएम आवास योजना ग्रामीण के पात्र ग्राहियों को निशुल्क रेत उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 के मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा में सफल 608 कैंडिडेट्स का चयन अब प्रक्रिया के अगले चरण साक्षात्कार के लिए किया गया है। ये भर्ती प्रक्रिया राज्य शासन के विभिन्न विभागों में 265 पदों पर नियुक्ति के लिए चल रही है। मुख्य परीक्षा का परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के उत्तरी भाग के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बलरामपुर और सूरजपुर और इससे लगे हुए जिलों में अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि आज रायपुर सहित मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वे कल बुधवार को भारत मंडपम में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ प्रतिनिधि देश में जल सुरक्षा को मजबूत बनाने पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण और पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा करेंगे। साथ ही केंद्र और राज्यों के बेहतर समन्वय के जरिए जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन और भविष्य की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी मंथन होगा। समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर रायपुर के गुरु घासीदास ऑडिटोरियम में आज मुस्लिम समाज की बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें बुद्धिजीवियों से यूसीसी के संबंध में सुझाव लिए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ओडिशा हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्रा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। पीएम आवास ग्रामीण के पात्र हितग्राहियों को निशुल्क रेत उपलब्ध कराने मुख्यमंत्री ने ई रेत संगवारी पोर्टल का शुभारंभ किया और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। डीजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर
2: के प्रस्तुत करता है छत्तीसगढ़ संवाद।

0: देखो रे भाई आई ज्ञान की आंधी, सब भय उड़ानी भरम की टाटी, रही ना माया बांधी। संत कबीर दास के ये शब्द सार्वकालिक हैं, सार्वभौमिक हैं। केवल ज्ञान का प्रकाश ही है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करने की शक्ति रखता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु शिष्य की अवधारणा प्राचीन काल से चली आ रही है। गुरु ही बताते हैं सत्य, प्रेम और शांति का मार्ग। भारत में गुरुकुल की परंपरा का उद्देश्य भी यही था, जहां रहकर शिक्षा दान और ज्ञान प्राप्त किया जाता था। गुरुकुल में बड़े बड़े पुस्तकालय स्थापित किए जाते थे। पुस्तकों को ज्ञान प्राप्ति का आधार माना जाता था। यही कारण है हर एक सभ्यता ने पुस्तकों का सम्मान किया है और इन्हें गुरु के तुल्य माना है। किताबों ने ज्ञान को विस्तार दिया है, सीमाओं को समाप्त किया है। ज्ञान पिपासुओं के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ऐसा ही एक सर्वसुलभ पुस्तकालय है, नालंदा परिसर। रायपुर का नालंदा परिसर एक अत्याधुनिक सेंट्रल लाइब्रेरी और ऑक्सी रीडिंग जोन के रूप में विख्यात है। यहाँ आउटडोर और इंडोर दोनों प्रकार की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ यूपीएससी, पीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए अनुकूल माहौल और किताबें उपलब्ध हैं। नालंदा परिसर की बेहतरीन खूबियों के कारण ही ये पुस्तकालय सहज ही पुस्तक प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है।
1: मैं डॉक्टर मंजुला जैन, हेड और लाइब्रेरियन नालंदा परिसर लाइब्रेरी से हूँ। और जिस तरह के आप जानते हैं कि ये अपने आप में देश की पहली प्रारंभ हुई एक ऐसी लाइब्रेरी है जो 2400 घंटे और सातों दिन खुली रहती है। और इसका फायदा ये मिला है कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो दिन और रात बिल्कुल पढ़ाई करते हैं, और अब तक विगत 9 साल हो रहे हैं इसको, इसकी स्थापना के, और इन 9 सालों में 13,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ पर अध्ययन किया है, और बहुत बड़े ऊंचे जो सफलता के पायदानों को उन्होंने प्राप्त किया है। और अभी जो वर्तमान में यदि कोई सदस्य चाहता है कि इसको नालंदा परिसर की सदस्यता लेनी है, तो इसके लिए यहाँ पर यदि सीट उपलब्ध है तो उसके अनुसार उनका रजिस्ट्रेशन होता है, और वे चाहें तो अपना नाम यहाँ पर आकर और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना पंजीयन के पूर्व दर्ज करा सकते हैं, और सीट उपलब्ध होने पर उनको ऑफिस से कॉल जाता है। और सदस्यता लेने के लिए व्यक्ति को मात्र नॉमिनल चार्ज 500 रुपए का मासिक शुल्क रहता है, और 2,500 रुपए कॉशन मनी लगती है जो कि एक बार ही देनी होती है, और जब वो सदस्यता वापस लेते हैं तो वो कॉशन मनी उनको वापस हो जाती है। और डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं बात करूँ तो सभी को आधार कार्ड की कॉपी देनी पड़ती है, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होती हैं, यहाँ हमारे पास एक फॉर्म मिलता है वो भरना पड़ता है, और बैंक डिटेल्स की जिसमें बैंक की जो पासबुक होती है उसके फ्रंट पेज की कॉपी जमा करनी पड़ती है। उसके बाद आपको यहाँ की सदस्यता मिल जाती है। एक RFID कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है, उस RFID कार्ड के

माध्यम से आपकी एंट्री एक्सेस होती है, और जो इशू रिटर्न के जो प्रोसेस होती है, जो हमारी क्योस्क मशीन लगी हुई है, वो उससे के जरिए आप यहाँ पर दो बुक्स जो है 14 दिन के लिए इशू करा सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ही अपग्रेडेड हाई लेवल की जो क्योस्क मशीन लगी गई है, और हमारा एक RFID गेट भी है, जिससे यदि बिना उसके इशू रिटर्न कराए यदि कोई व्यक्ति उसके पास आम होता है किताबों को लेकर, तो वह साउंड करने लगता है, मतलब ट्रैकिंग ट्रैकिंग डिवाइस की जैसे वो कार्य करता है। और हमारे पास लगभग 50,000 किताबें हैं, और उन सभी किताबों पर RFID चिप लगी हुई है जो रीड करती है, और जो हमारा जो सिस्टम है उसको अपडेटेड रखती है। हमारे पास जो 50,000 किताबें हैं उसमें ज्यादातर किताबें सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज के हों, CGPSC के हों, नीट के हों, लॉ के हों, MBBS के हों, नेटसेट UGCG के हों, जितने भी तमाम तरह के एग्जाम्स हैं उसकी जो किताबें हैं हमारे पास हैं, और उसके जो सिलेबस में जो जो भी कोर्स के लिए जरूरत पड़ती है, पाठ्यक्रम जो होता है उसके अनुसार ही किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं। हमारे पास NCERT की और SCERT की क्लास 4 से लेकर 12 तक की किताबें हैं, और हिंदी और इंग्लिश जो लिटरेचर है, महान जो साहित्यकार रहे हैं उनका भी एक बृहद संग्रह हमारे पास है। इसके साथ ही विद्यादान का एक हमारा एक बहुत ही विशिष्ट एक सेक्शन है, जिसमें समाज के ऐसे गण्यमान व्यक्ति या कोचिंग संस्थाएं या ऐसे लोग जिनके पास कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, जो चाहते हैं कि अब उन्होंने अध्ययन कर लिया है और अब वो बाकी युवाओं को दान देना चाहते हैं, तो विद्यादान के सेक्शन में वो अपना यहाँ पर किताबों को दान दे सकते हैं। और नालंदा परसा लाइब्रेरी 24 घंटे चलती है, और इसके लिए हमारा जो पूरा यहाँ पर जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज AC लगा हुआ है, सभी छोटे RO फिल्टर हैं, CCTV कैमराज लगे हुए हैं, और वॉइस का जो माइक सिस्टम लगा हुआ है, अलार्म सिस्टम है, लिफ्ट की सुविधा है, तो ये सारी सुविधाएं इनको दी जाती हैं। साथ ही हमारा जो स्टाफ है वो पूरे 24 घंटे यहाँ पर कार्यरत रहता है, और 15 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और ये पूरा एक ऐसा ऑक्सी रीडिंग जोन, एक ऐसा इको फ्रेंडली जोन है जहाँ आप अंदर के साथ साथ बाहर के प्रमाइसेस में भी, बाहर के एरिया में भी बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं। 3 फ्लोर में ये इस तरह का बना हुआ है जहाँ एक नेचुरल लाइट जो है इन इस हाईटेक जो ग्लासेस हैं जो टेम्परेचर को रोकते हैं, और उससे ये जो आपको लाइट में एक नेचुरल लाइट के भीतर भी आप अंदर पढ़ सकते हैं। तो 24 घंटा चलने वाला एक ये एक अनूठा संस्थान है, और यहाँ पर जितना एक सुरक्षित और अनुशासित हम माहौल देते हैं वो इसी की वजह है कि यहाँ पर जो इसका सक्सेस रेशियो है ये बहुत ज्यादा है। बहुत सारे जो यहाँ से संस्थान से IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, डिप्टी कलेक्टर्स, कलेक्टर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर यहाँ पर 500 से ज्यादा रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं जो यहाँ पर इनका रिकॉर्ड हमारे पास है, वो यहाँ से सिलेक्टेड हुए हैं, संख्या इससे कहीं ज्यादा है। और यदि ये हम बात करें कि यहाँ के जितने भी छात्र हैं उनके लिए हम समय समय पर एक सफलता की पाठशाला एक हम प्रोग्राम भी चलाते हैं, जो जिसमें बड़े बड़े जो IAS ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्ट हमारे जो बच्चे हैं उनको डायरेक्ट ट्रेनिंग देते हैं, ताकि किस तरह से वो अपने अध्ययन करें, किस तरह के इंटरव्यू की तैयारी करें, किस तरह का उनको अपना सिलेबस रेडी करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, वो तैयारी वो कर सकते हैं। और समय समय पर जितने भी परीक्षार्थी यहाँ पर चयनित होते हैं हम उन सभी को सम्मानित भी करते हैं, और उनके जो दूर दराज से छत्तीसगढ़ के बहुत दूर दराज से भी लोग आके यहाँ पर आसपास के घरों में रहते रेंट पे रहते हैं और यहाँ पर दिन भर अध्ययन करते हैं, तो ऐसे सभी सदस्यों के लिए हम एक हेल्थ कैंप भी समय समय पर लगाते रहते हैं, ताकि उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी हो सके। और यहाँ की जो परीक्षाओं का और यहाँ के जो सदस्यों का जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा रहा है, इसी को देखते हुए आज जिले में बहुत सारी जगह जैसे रायगढ़ में, सुकमा में, जगदलपुर में, महासमुंद में बहुत सारी जगह लाइब्रेरी बन चुकी है, और बहुत सारे जो निर्माणाधीन है और बहुत जल्दी वो बन जाएंगे, और रायपुर में भी बहुत जल्दी हमें 2 और नई लाइब्रेरी की सौगात भी मिलने वाली है। तो शासन प्रशासन का जो युवाओं के लिए जो एक उनको दिशा देने के लिए, उनके उनके ग्रोथ के लिए, उनके करियर

के लिए, जो बहुत कम शुल्क से जो एक प्रयास शुरू हुआ, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। और युवा ही देश की असली संपत्ति है, और उनको यदि सही दिशा में लगाया जाए तो न सिर्फ वे अपने परिवार का, अपने समाज का, राज्य का और देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। और शासन ने जो बहुत अच्छा ये प्रयास शुरू किया है, इसका आज परिणाम भी बहुत अच्छा

0: रायपुर के नालंदा परिसर की उपलब्धियां प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। रायपुर में अभी 3 सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन संचालित हैं। इनमें 1000 सीटर नालंदा परिसर, 800 सीटर तक्षशिला सेंट्रल लाइब्रेरी और 500 सीटर सेंट्रल लाइब्रेरी जोन शामिल हैं। पिछले 5 सालों में यहां अध्ययन करने वाले 400 युवाओं ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित होकर उच्च पदों को सुशोभित किया है। साथ ही अनेक युवाओं को प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश भी मिला है।
1: मैं अमन सोनी रायपुर का निवासी हूं। अभी मैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सब इंजीनियर के पद पर पदस्थ हूं। मैंने अपने जॉब की तैयारी नालंदा परिसर से की है और सीजी व्यापम के PhED सब इंजीनियर एग्जाम में 14th रैंक अचीव किया है। इस पूरी तैयारी में नालंदा परिसर ने मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। नालंदा परिसर हम स्टूडेंट के लिए पढ़ाई का एक बहुत ही अच्छा और सकारात्मक वातावरण प्रदान करता है। यहाँ शांत माहौल है, अच्छी सुविधाएं हैं, पढ़ने के लिए उपयुक्त व्यवस्था है जो कि बहुत ही सराहनीय है। खासकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह जगह बहुत ही उपयोगी है। यहाँ अगर पढ़ने से एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है और दूसरे लोगों को देख के एक कॉम्पिटेटिवनेस की भावना जागती है और जिससे फोकस करने में मदद मिलती है। यहाँ पर पुस्तकालय की भी सुविधाएं उपलब्ध है, जहाँ पर हर एग्ज़ाम के सभी पुस्तक जो कि ऑथेंटिक होते हैं वो सभी उपलब्ध हैं। यहाँ पर गार्डन एरिया में बहुत सारे जगह पर डिस्कशन है, जिससे कि जो हमको हेल्प करते हैं कि हम वहाँ अपने डिस्कशन कर सके, जिससे कि हमको कोई भी एग्ज़ाम में GD होता है उसमें हेल्प मिलता है। मेरे लिए नालंदा परिसर सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं बल्कि अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का एक प्रेरणादायक जगह है। नालंदा परिसर की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं।

0: छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के सपनों को उड़ान देने का काम कर रही है। यहाँ हर क्षेत्र के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी का अवसर मिले, इसलिए प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में नालंदा परिसरों का निर्माण किया जा रहा है। सुकमा से लेकर सूरजपुर और रायगढ़ से लेकर कवर्धा तक हर कोने में अत्याधुनिक सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन खोले जा रहे हैं। ये नालंदा परिसर सिर्फ इमारतें नहीं, युवाओं के उज्जवल भविष्य की बुनियादें हैं।
1: मेरा नाम बागेश्वरी ठाकुर है और मैं रायपुर शहर से हूँ। मैं नालंदा में वर्तमान में मैं एडीओ के पद पर सेलेक्टेड हूँ और साथ ही साथ मेरा महिला एवं बाल विकास में

बाल अधीक्षक के पद में भी सिलेक्शन हुआ है। और नालंदा का एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करना चाहूँ तो नालंदा की मैं बहुत पुरानी स्टूडेंट रही हूँ, और वहीं से ही देखा जाए तो मेरा ये सिलेक्शन का बहुत बड़ा योगदान नालंदा को जाता है। वहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट, मुझे वहाँ का एनवायरमेंट ही इतना अच्छा लगता था कि पढ़ाई के लिए सुटेबल तो था ही। साथ ही साथ हम लोग वहाँ पे ग्रुप स्टडी भी करते थे, तो ग्रुप स्टडी के लिए भी बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। मेरी अधिकतर पढ़ाई तो ग्रुप स्टडी में ही होती थी। नालंदा में बेसिक सुविधाएं तो बहुत अच्छी ही है। 24/7 लाइब्रेरी ओपन होता है, वाईफाई की सुविधा हमको प्राप्त होती है, बुक्स हम लोग को अवेलेबल है। जिस भी कंपटीशन एग्जाम की हम तैयारी करना चाहते हैं या स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं, आपको बुक्स अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ स्टाफ का भी आपको सपोर्ट मिलता है। बेसिकली मैं सीजीपीएससी की तैयारी करती हूँ, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे पॉलिटी की बुक हो गई, की ज्योग्राफी की बुक हो गई, हमारे छत्तीसगढ़ की बुक हो गई। और उसके अगर और ग्रुप स्टडी की बात करें तो ग्रुप स्टडी के लिए वहाँ पे एक इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। हम बाहर में बैठ के भी ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, ऊपर छत में भी स्टडी कर सकते हैं। और जो ग्रीन बोला जाता है ना, ग्रीन इन्वायरमेंट, या जो मेंटल पीस के लिए एक आपको पीस, पढ़ाई के लिए आपको मेंटल पीस की जरूरत होती है, तो नालंदा का एनवायरमेंट आपको एक मेंटल पीस भी प्रोवाइड करता है। जब भी आप पढ़ाई से डिस्टर्ब हो गए तो आप बाहर वॉक कर सकते हैं। वॉक करने से आपको और ज्यादा एनर्जी मिलती है, आप बहुत आपको इनर पीस मिलता है, इससे आप और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। मैं छत्तीसगढ़ सरकार की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया। इसी तरह और अभी गवर्नमेंट की योजना भी है कि हर जिले में ये नालंदा लाइब्रेरी ओपन हो रहा है, तो हमारे रायपुर शहर के साथ साथ इस राज्य के सभी शहरों को के स्टूडेंट्स को भी इसका फायदा मिलेगा, जिसके लिए मैं सरकार के

0: नालंदा परिसर केवल एक पुस्तकालय नहीं, ये आशा और सकारात्मकता का केंद्र है। यहाँ के हर एक कोने में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की खामोश लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति गूंजती है। नालंदा परिसर की सफलता केवल किताबों तक सीमित नहीं है। यहाँ से पढ़कर निकलने वाले हजारों युवा आज प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर अपने परिवार और शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। सफल होने वाले युवा बड़े गर्व के साथ इसका श्रेय नालंदा परिसर को देते हैं।
1: मेरा नाम आशुतोष रंजन देव है, मैं रायपुर का ही रहने वाला हूँ। मैं सन 2022 में नालंदा परिसर में अध्ययन करने के लिए आया था और तब से मैं अभी तक यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था। रिसेंटली अभी जो मंडी उप निरीक्षक का रिजल्ट आया है उसमें मेरा 18वां रैंक आया है। नालंदा से पढ़ने में मुझे बहुत सहायता मिली। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, सारे एस्पिरेंट्स एक साथ बैठकर यहाँ पे पढ़ते हैं, तो देखकर एक तो मन में कॉम्पिटिशन की भावना आती है कि हाँ मुझे इनसे आगे निकलना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, सभी पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ जो किताबें मिलती है लाइब्रेरी में, मोस्टली जो किताबें हैं वो हमको यहाँ पे मिल जाती है तैयारी के लिए। कुछ किताबें पहले मिसिंग थी वो भी इन्होंने अपने मतलब लाइब्रेरी में ले आए हैं। उसके अलावा यहाँ पर कभी मतलब गर्मी के लिए एसी बहुत अच्छे से है, पीने के पानी का व्यवस्था है, वॉशरूम क्लीन रहते हैं। अभी रिसेंटली कल ही यहाँ पे नए चेयर्स आए हुए हैं फिलहाल हमारी सुविधा के लिए। तो नालंदा काफी अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का कि उन्होंने हमारे पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स के लिए सोचा और मैं नालंदा परिसर को अपने सबके लिए एक धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं यहाँ फिर भी मतलब अच्छे से पढ़ पाया और यहाँ रहकर मैंने सफलता प्राप्त की। धन्यवाद। जैसे अगर साथ में पढ़ने की बात हो तो जो गार्डन एरिया है नालंदा में वहां पर हम बैठ कर डिस्कस किया करते थे। दिन भर हम अपना पढ़ते थे, शाम को हमें टारगेट बनाया करते थे कि क्या हमको डिस्कस करना है, तो हम उसको डिस्कस करते थे, उसका फायदा होता था। उसके अलावा

जैसे अदर और भी कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी पोस्ट में सिलेक्टेड हैं, उनके भी गाइडेंस का हमको फायदा मिला कि अगर उन्होंने अपना नॉलेज शेयर किया कि कैसे मतलब स्टडी करना चाहिए, कैसे हमें प्रोडक्टिव होना चाहिए, कम कम पढ़ के कैसे ज्यादा आउटपुट निकालना चाहिए, ये सारी चीजें भी हमको यहाँ से मिली।

0: छत्तीसगढ़ शासन युवाओं को पढ़ाई की हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार चाहती है कि आने वाले दिनों में नालंदा परिसर का और भी विस्तार करके पूरे राज्य में सर्व सुविधा युक्त नालंदा परिसरों में उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री और शांत माहौल युवाओं को प्रदान किया जाए, जिससे वे पूरे फोकस और लगन से अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। नए नालंदा परिसरों के निर्माण से न केवल शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, बल्कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं को भी बड़े शहरों के बराबर अवसर मिलेंगे। ये पहल छत्तीसगढ़ के शिक्षा ढांचे को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी।
1: मेरा नाम ओजस्वी कुमार है। मैं सीबीपीएससी 2024 में सहकारी निरीक्षक सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद पर चयनित हुआ हूँ। मैंने अपनी तैयारी के दौरान नालंदा परिसर, नालंदा लाइब्रेरी, वहाँ पे रहकर वहाँ पढ़ाई करके अपनी पढ़ाई पूरी की थी। और वहाँ से मैंने अपनी तैयारी के दौरान नालंदा परिसर में जाकर तैयारी चालू की थी। नालंदा लाइब्रेरी रायपुर में स्थित एक सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक विद्यार्थी को जो पढ़ने के लिए माहौल चाहिए वो हर वो चीज अवेलेबल है, भी अफोर्डेबल कॉस्ट में, या फिर एक सही जगह में, सही रास्ते में, जहाँ जाने में भी कोई परेशानी नहीं है, गाड़ी मोटर सबकी सुविधा है और वहाँ फीस भी काफ़ी कम है। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ 24 घंटे अवेलेबल है। वहाँ हम लोग शाम को भी जाके नाइट तक भी, रात को भी पढ़ लेते थे। साथ ही में मैंने अपनी तैयारी के दौरान काफ़ी सारी जो पुस्तकें लगी थी, जैसे कि जीएस की, मैथ रीजनिंग की, तो सारे अफोर्ड नहीं कर पाता था, तो वहाँ की लाइब्रेरी से उन पुस्तकों को मैंने यूज़ किया। साथ ही में कभी कभी जब पढ़ाई के दौरान हेक्टिक लगता था, मन नहीं करता था पढ़ने का, तो फिर और किसी भी प्रकार की किताबें, नॉवेल वगैरह, कहानी पुस्तक वगैरह भी अवेलेबल थी, उन पुस्तकों को भी पढ़ के अपना मन बहलाया करता था। और वहाँ काफ़ी अच्छे फ्रेंड सर्कल्स मिले, जिन लोग काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट में सेलेक्ट हुए उनसे भी कंटिन्यू गाइडेंस वगैरह मिलता था। साथ में वहाँ पानी, बिजली सभी की 24 घंटा व्यवस्था अच्छे से रहती थी, तो इसलिए पढ़ाई में जो होने वाली फिजिकल प्रॉब्लम्स है उन चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ा। तो इसलिए मैं नालंदा परिसर और जिला प्रशासन को धन्यवाद करता हूँ। नालंदा परिसर में सभी प्रकार की किताबें भी अवेलेबल है। वहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा और नालंदा परिसर प्रबंधन द्वारा लगभग सीजीपीएससी, यूपीएससी और अन्य कॉलेजेस के एग्जाम्स हैं, नीट हैं, जेईई, अन्य सभी प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम के बुक भी काफ़ी वाइड मात्रा में अवेलेबल हैं। तो अगर किसी भी प्रकार का तैयारी करना है, नीट, पीएटी और या फिर कॉलेजेस की भी, इंजीनियरिंग की भी, तो उन सब की भी किताबें अवेलेबल हैं। तो हम कॉलेजेस की तैयारी के दौरान भी वहाँ की किताबें यूज़ करते थे, और साथ में सीजीपीएससी, यूपीएससी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तो किताबों की कमी ही नहीं है, तो वहाँ से हमको और अन्य बाहर से अपना बुक्स वुक्स खरीदने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ा था। वहाँ से सारी नीड्स पूरी हो गई थी किताबों की।

आज छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए नालंदा परिसर प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। इससे ये सिद्ध होता है कि यदि प्रशासन और आम नागरिक एक साथ मिलकर कोई सपना देखें, तो वो निश्चित रूप से साकार होता है। नालंदा परिसर सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं, रायपुर के युवाओं की सफलता की प्रतीक है। इससे हर उस ज्ञान पिपासु की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जो देश और समाज की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। पढ़ने की रुचि को आदर्श जीवन के साथ जोड़कर महान साहित्यकार और दार्शनिक मार्क ट्वेन ने कहा है, अच्छे दोस्त, अच्छी किताबें और एक शांत अंतरात्मा, यही आदर्श जीवन है। ज्ञान के लिए आतुर अपनी प्राचीन विरासत को लेकर रायपुर का नालंदा परिसर लगातार बढ़ रहा है उजाले की ओर।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
2: प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
4: RBI कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
2: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो संगी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं रेणुका प्रधान। प्रस्तुति सहयोग है रामविलास पटेल का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं रवि आनंद।

संगी हो, हमर छत्तीसगढ़ में तीज तिहार तो आतेच रथे अउ तीज तिहार के संगे संग हमन सुघर सुघर गीत सुनथन त हमर मन हर आनंद हो जाथे, प्रफुल्लित हो जाथे अउ गीत सुनत सुनत हमन कतको बूता काम ला कर लेथन। तो हेलो संगी के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत हवे अउ

0: एवथन पहली फोन ला।
1: हेलो संगी।
2: हेलो संगी।
1: हाँ, राम राम, जय जोहार। और हमारे कार्यक्रम में आप मन के स्वागत हवे। तो नाम बता भैया आप मन के।
2: रेणुका बोला सिक्का जी।
1: जी जी भैया,
2: रोशन ने अपन बोला था मिलेगा ले।
1: अच्छा भैया, कार्यक्रम में आप मन के स्वागत हवे। आओ, कौन सा गीतला पसंद करा था भैया?
2: मोर छत्तीसगढ़ के तिहार।
1: हाँ,
2: बारह मासी गीत। हाँ,
1: तो तिहार के किसे बढ़िया आनंद ले था। और संगे संग बरसात के बारिश झमाझम चला थे कहा।
2: हाँ, बारिश झमाझम चला थे। अब जब तिहार है, रक्षाबंधन अवैया है। अब हम के श्रोता मंदिर तिहार हुई थे 20 अगस्त के रायपुर दुर्ग जिले में रही थे सम्मेलन है वहाँ गे रहे।
1: अच्छा,
2: वहाँ तो हम श्रोता तिहार मना के आए हैं।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भैया आप उनके पसंद करे सुघर गीतला सुना और आनंद लेवा, फोन करा। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद है।
2: धन्यवाद धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ संगी।
0: नवागढ़ का कटहरी नारायण प्रसाद वर्मा बोला था वो संगी।
1: हाँ
0: देखो संगी, ये अभी बढ़िया सावन महीने चला था, तिहार बार के पारी है और खेती किसान के घलो संगी।
1: अच्छा
0: हमें भी
1: अच्छा
0: मन बढ़िया खेती किसान में लगे लगे। हमारे संगी मन के गोठला बने सुनत रही थन, गुनत रही थन, मन में धरे रही थन, काम बुतम लगे रही थन संगी।
1: हमारे कार्यक्रम में बढ़िया से जुड़त रहता कहा। और देखा तो सावन में हमारे चारों कोती हरियर हरियर दिखते, मन हर ऐसने ही गदगद हो जाते। तो ए बखत बेरा में अगर हमन गीत सुनथन तो और बढ़िया लगते। तो कौन सा गीत पसंद करत अभी आप मन?
0: भोजली गीत सुनवा दो संगवारी, कोनो भी गाय के लिए।
1: गीत के बोल बोलब।
0: देवी गंगा लहर तिरंगा, ऐसे चलते ना दीदी भोजली गीत, वही ला सुना दो दीदी।
1: ठीक है भैया, तो सुना आप मन के फरमाइशी ए सुघर गीत ला और आनंद लेवा। अब फोन कराए कर बार बहुत बहुत धन्यवाद है।
0: धन्यवाद दीदी, राम राम।

0: हेलो संगी,
1: जयराम दीदी
0: जयराम भैया, जयराम। और आप मन के नाम बताहा।
1: बलदान साहू बोला था, दुबा से, जिला कबीर धाम से।
0: औ सुनावा भैया, का हाल चाल है?
1: सब बढ़िया है। पानी पानी हो गए खेत खार में, एक हफ्ता हो गया जिया थोड़े बढ़िया। एक ठकाने है दीदी, बैताराम साहू के।
0: हाँ बतावा, कर बोल।
1: बहुत देखा तो हो ही, लुटिया में पानी भर के यही गाना हवा है।
0: तो बहुत सुघर गीतला पसंद करे है भैया, तो सुना आप मन के पसंद करे ए सुघर गीतला और फोन करे एक बार, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो संगी।
2: हेलो संगी।
0: राम राम, जय जोहार भैया।
2: राम राम, जय जोहार दीदी।
0: और नाम बता आप मन के, और कहाँ ले बोला था?
2: मैं मोहल्ला पाले विष्णु राम यादव बोला था।
0: का हाल चाल है आप मन को ती? और तीज तिहार के कैसे तैयारी करा था?
2: पानी अभी अच्छा गिरे थे मैडम, और धान नहीं चला थी।
0: अच्छा अच्छा, तो बढ़िया से आप मन तैयारी करा था कहा। और ऐसे सावन के बेरा में कौन सा गीतला पसंद करा था आप मन?
2: तीजा वाला, बेटा राम साहू के।
0: अच्छा।
2: बहनी लेवत हो ही, बहनी आवत हो ही, लुटिया मा पानी धरे के, बहनी देखत हो ही, ये वाला गाना।
0: बहुत सुघर गीत है भैया, आप मन के पसंद करे है तो सुना आप मन के फरमाइशी एक गीत ला, आओ फोन करा एकर बार, बहुत बहुत धन्यवाद है।
2: धन्यवाद।
3: बहिन

0: हेलो संजी,
1: नमस्कार दीदी।
0: स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। भैया नमस्कार, जय जोहार। और आप मन के नाम बता।
1: संतोष कुमार वर्मा केसदार इमली शिमला से। जी
0: हाँ भैया, बहुत बढ़िया है आप मन के फोन लगी से। और काका हाल
1: जी
0: चाल है भैया आप मन को थी।
1: पानी गिरा दीदी थोड़ा थोड़ा अभी।
0: हाँ अभी तो लगातार पानी गिरा थे भैया।
1: हाँ
0: और
1: हम लोगों को अभी पानी गिरा थे। पानी गिरा थे आप तो लगाए खेत में। हाँ
0: अच्छा, खेत ले हमला फोन लगाए। हाँ बहुत बढ़िया बात है।
1: जी।
0: हाँ तो देखा तो खेत में बूता भी चला थे और सुघर सुघर गीत भी चली।
1: दीदी
0: तो कौन सा गीत सा पसंद करा था भैया?
1: सुना
0: हाँ गीत के बोल बोला ना भैया, आप मन के जो गीत पसंद करे होकर।
1: कर।
0: बहुत बढ़िया बात है भैया, फोन करा एकर बार बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे कार्यक्रम में ऐसे ही जुड़त रहा।
1: हाँ दीदी हाँ दीदी हाँ दीदी।

0: हेलो संगी,
1: जय सिया राम। राम राम बहन जी।
0: जय सिया राम भैया, जय सिया राम। और स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। रेणुका बहनी बोला था इसे लागी से।
0: हाँ भैया, रेणुका बहनी ही बोला था। तो आप मन के भी नाम बताओ, आप मन के भी परिचय दे देवा।
1: मैं पंडरिया पवन कुमार सेन बोला था। और
0: आओ हमारे कार्यक्रम में आप मन के फोन लगी से फोन लगाए हैं। एकर बार आप मनला बहुत बहुत एक बार और धन्यवाद। तो कौन सा गीत सुना दन भैया आप मनला?
1: शेख हुसैन के सुनवा दू ना।
0: हाँ
1: शेख हुसैन के कोई भी गीत सुनवा दू। ठीक
0: ठीक है भैया, गीत पसंद करा और सुना ए दे आप मन के फरमाइश करे सुघर गीत ला और फोन करा। एकर बार आप मनला बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसने ही हमारे कार्यक्रम में आप मन जुड़त रही।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रेणुका बहनी। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: राम राम, जय जोहार भैया।
1: जय जोहार बहनी। जय जोहार। जय जोहार।

0: देखे।
1: तो ए तो रहीस हेलो संगी के कार्यक्रम सिरावत है संगवारी हो। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहीस के एस पैकरा के, प्रस्तुति सहयोग रहीस रामविलास पटेल के, कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही रवि आनंद आओ मैं हवा आप मन के संगवारी रेणुका प्रधान। फिर भेंट पर वो संगवारी हो, तब तक ले देवा विदा। राम राम, जय जोहार।

0: फोन इन कार्यक्रम हेलो संगी अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी रेणुका प्रधान। प्रस्तुति सहयोग रहा रामविलास पटेल का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रवि आनंद। इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 11 बजे हैं विविध भारती कार्यक्रम। अब हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: रंग तरंग
2: विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

पहली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे हेमलता और चंद्राणी मुखर्जी की आवाजें थी। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: राजेश रोशन की तर्ज इब्राहिम अश के बोल अनुराधा पौडवाल पंकज उदास और साथियों की आवाजें फिल्म थी बाहर आने तक।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती का ये कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: शहरयार की लिखी गमन फिल्म की ये गजल आपने सुनी सुरेश वाडकर की आवाज में, जयदेव का संगीत था।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया।

0: मेरी चुनर उड़ उड़ जाए, इस एल्बम का गीत आप सुन रहे थे फाल्गुनी पाठक की आवाज में। गीत और संगीत था ललित सेन का।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने क्यों लोग करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: कुमार की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म 16 साल का नगमा। गीत मजरू सुल्तानपुरी का था और संगीत था सचिन देव बर्मन का। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सदाबहार नगमे, यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने को हैं, थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। प्रादेशिक समाचार,
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने भारत की 7.8% जीडीपी वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया। ओडिशा हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश कृष्णराम महापात्रा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की 7.8% आर्थिक वृद्धि 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के बाद से जारी युद्ध और वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास की इस गति को बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने और भारत में बने उत्पादों का समर्थन करने का आग्रह किया। श्री मोदी ने नागरिकों से अनावश्यक विदेशी यात्राओं से बचने, विदेशों में शादी आयोजित करने की योजना न बनाने और जरूरत न होने पर सोना नहीं खरीदने की भी अपील की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वे कल बुधवार को भारत मंडपम में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ प्रतिनिधि देश में जल सुरक्षा को मजबूत बनाने पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण और पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा करेंगे। साथ ही केंद्र और राज्यों के बेहतर समन्वय के जरिए जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन और भविष्य की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी मंथन होगा। ओडिशा हाईकोर्ट के सीनियर जज जस्टिस कृष्ण राम महापात्रा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। ये नियुक्ति हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के 4 सितंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद प्रभावी होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सीनियर जज जस्टिस संजय के अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने अनुशंसा की है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा 2025

0: की मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा में सफल 608 कैंडिडेट्स का चयन अब प्रक्रिया के अगले चरण साक्षात्कार के लिए किया गया है। ये भर्ती प्रक्रिया राज्य शासन के विभिन्न विभागों में 265 पदों पर नियुक्ति के लिए चल रही है। मुख्य परीक्षा का परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ में 7 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार इन परिसरों में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निजी सहायक के चंद्राकर का आवास भी शामिल है। ईडी की टीम आवास के अंदर संबंधित दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों की जांच कर रही है। कार्रवाई के दौरान घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कवर्धा पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4.5 क्विंटल गांजा जब्त किया है। इसके साथ ही एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। जब्त गांजे की कीमत 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रदेश की लोक संस्कृति, पारंपरिक संगीत और आधुनिक सुरों के अनूठे संगम को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आज से रायपुर में रंग तरंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 7 बजे से महंत घासीदास संग्रहालय परिसर सिविल लाइन्स में होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने भारत की 7.8% जीडीपी वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया। ओडिशा हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्रा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया सहित विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। इससे पहले सम्मेलन स्थल पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने हाथ मिलाया और बातचीत की। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है, इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरी। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। भारत कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के विश्व के बड़े आयातकों में से एक है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का आर्थिक प्रदर्शन विदेशी घटनाक्रमों के प्रति प्रतिक्रिया देने और अपनी विकास गति को बनाए रखने की उसकी क्षमता को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में GDP वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
1: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
0: भारत ने सिंधु जल संधि पर विश्व बैंक द्वारा गठित मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह से ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के इस निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने मध्यस्थता पैनल को कभी मान्यता नहीं दी, न ही उसकी कार्रवाई में भाग लिया और न ही उसके निर्णयों से बाध्य होगा। भारत ने यह भी दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जलविद्युत परियोजना स्थल पर कीचड़ से भरी सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं। बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं। इस बीच बाढ़ और भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 939 हो गई है। 3,925 लोग अब भी लापता हैं। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के शवों की पहचान और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी साझा की है। दूतावास ने कहा कि यदि रिश्तेदार और परिवार के सदस्य नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध तस्वीरों और विवरणों के माध्यम से शवों की पहचान कर पाते हैं तो दूतावास शवों को सौंपने और स्वदेश वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने में सहायता करेगा। केंद्रीय गोबरधन योजना आज से प्रभावी हो गई है। ये योजना 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की है। भारत में कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली गिरावट के बाद वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 198 अंक बढ़कर 77,155 पर, जबकि निफ्टी 36 अंक की वृद्धि के साथ 24,116 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे बस थोड़ी देर में।

0: चित्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: आनंद बख्शी का लिखा गीत मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: अरे मेरे यार, अपने रंग हजार।

0: कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी राजेंद्र कृष्ण की रचना, आपने सुनी किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म थी बनारसी बाबू।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

आशा भोसले की आवाज में आपने सुना दिल दिया दर्द लिया। इस फिल्म का गीत शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: सोनिक ओमी की बनाई तर्ज पर इसे गाया मोहम्मद रफी ने। आप सुन रहे थे आबरू, फिल्म का गीत जीएल रावल का लिखा।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: गीत और संगीत था रविंद्र जैन का, महेंद्र कपूर की आवाज में फकीरा फिल्म का गीत आपने सुना।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
4: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
5: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
4: सखी सहेली?
5: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
4: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
6: सखी सहेली।

0: वर्मा मलिक का लिखा गीत आपने सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज से ये दो गाना था लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया फिल्म नागिन से यादों की महफिल। ये प्रोग्राम श्रोताओं यहीं संपन्न हुआ।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओ, हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे साइकिल चलाने का मन न हुआ होगा कभी न कभी। भले ही ये पेट्रोल की गाड़ियों से तेज न चलती हो, लेकिन हर युवा हर बच्चों के लिए इसकी रफ्तार हवाओं से कम नहीं होती। जिंदगी में सबके पसंद की जितनी भी चीजें होती हैं, यकीन मानिए उसमें साइकिल तो एक होती ही होती है। तो अपनी प्यारी प्यारी सी साइकिल की बातें आज हमारे श्रोता ताजा कर रहे हैं, और इसके लिए जो हमारे नए श्रोता हैं उन्हें हमारे फेसबुक से जुड़ना होगा। लॉग ऑन कीजिए www.facebook.com/vbsmumbai और आप भी भेज सकते हैं अपनी प्यारी प्यारी साइकिल के बारे में कमेंट्स हमारे आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में। तो सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है, और अब आज की इबारत आपकी नजर करते हैं। आज जो हमने फेसबुक पर इबारत पोस्ट की है श्रोताओं, वो कुछ इस तरह से है, जीवन के सफर का फलसफा सीखने के लिए, चलकर गिरना और गिरकर उठने के लिए, संतुलन की परिभाषा समझने के लिए, जोश और जुनून दिखाने के लिए, अपनी मंजिल पर जाने के लिए, कभी रास्तों पर मित्रों से रेस लगाने के लिए, हर वक्त हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, पापा मुझे कुछ सिखाने के लिए मेरी पहली साइकिल मुझको दिला लाए, वो वाहनों का पीछे से हॉर्न बजाना, साइकिल चलाते हुए मेरा फूलों की गलियों में गुनगुनाना, सस्ती सी अच्छी सी और टिकाऊ सवारी, सच में साइकिल जैसी नहीं कोई लारी, फिर आया मोपेड का जमाना, खैर साइकिल मेरी न्यारी सी दिखती बड़ी कमाल, पहिए इसके काले काले नीली है कुछ लाल, धोकर इसको मैं चमकाता रखूं सदा संभाल। तो हम सब ने अपनी

अपनी साइकिलें जरूर धोकर चमका कर कम से कम श्रोताओं आज तो देखी होगी। और किन श्रोताओं का मन आज कर गया कि चलो आज साइकिल की सैर पर चलते हैं, तो आपको यादें अपनी ताजा करनी है साइकिल की, चलते हैं आज सुरीला सफर कार्यक्रम के इस सफर पर साइकिल के साथ। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

का ये गीत आप सुन रहे थे। आपको ये बताना है कि ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुर जिस साइकिल में जा रहे हैं, ये कौन से रंग की साइकिल है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज गद्यांश साइकिल की बातें हैं इसमें, और बचपन और साइकिल का रिश्ता सिर्फ एक सवारी का नहीं बल्कि आजादी, रोमांच और पहली बार खुद पर भरोसा करने का एहसास था। संतुलन की पहली सीख थी। साइकिल सिर्फ लोहे का एक ढांचा नहीं थी, वो हमारी पहली सवारी और सपनों का पंख थी। आज भले ही कई चार पहिया गाड़ियां आ गई हों, लेकिन जो सुकून और बेफिक्री उस दो पहिए की सवारी में थी, वो फिर कभी नहीं लौटी। एक और श्रोता ने लिखा है, बचपन की स्मृतियों के गलियारों में साइकिल केवल लोहे, रबर और पैडल से बनी एक ढांचा नहीं बल्कि आजादी का पहला पंख और जीवन का पहला दर्शन होती है। जब पिता की उंगली थामे एक बच्चा पहली बार साइकिल की गद्दी पर बैठता है, तो वो केवल यात्रा की शुरुआत नहीं करता बल्कि संतुलन, आत्मविश्वास और दुनिया को अपने नजरिए से देखने की कला सीखता है। तो यहाँ आपको बताना है श्रोताओं कि क्या आप साइकिल जब चलाते थे तो कभी आपने कैंची साइकिल चलाई है? ये कैंची साइकिल क्या होती है, ये भी आपको बताना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि एक मजेदार बात है, पिताजी ने पहली साइकिल ली थी, वो सेकंड हैंड थी, जो मैं और मेरे पापा यूज करते थे। बाद में नौकरी मिली तो ट्रेन से उतरने के बाद कंपनी जाने के लिए साइकिल लेनी पड़ी। वो एक मित्र के साथ इन्होंने कुछ 45 रुपीज लिखा है कि उसमें ली थी, जो सेकंड हैंड थी, और मित्र का कहना था कि उसे मैं रोज डबल सीट खींचू। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे श्रोताओं जो उस वक्त जिनके पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, लेकिन लोग किराए की साइकिल पर हम बच्चे खूब साइकिल चलाते थे। ऐसे भी कुछ यादें अगर आपकी हैं तो जरूर हमें लिख भेजिए। साइकिल की सवारी करते हमारे ये कौन अदाकार हैं?

0: लहरा के जल, मौसम भी है वादा भी है उसकी गली।
1: साइकिल अगर मौसम बहुत अच्छा हो श्रोता, यानी धूप कड़ी न हो, तो चलाने का मजा कुछ और ही होता है। आजकल कुछ ऐसा ही मौसम है। आजकल क्या आप साइकिल चला रहे हैं तो हमें जरूर बताइए। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर कार्यक्रम के समस्त प्रिय श्रोतागण, आप सभी को शुभ दिवस तथा स्नेह वंदन। और शब्द इन्होंने लिखे हैं, जीवन सफर मंजिल हो सकते हैं, साइकिल भी तो है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज मुझे याद आ रहा है कि ये सारे शब्द हो सकते हैं, साइकिल, पापा और सफ़र, ये लगते हैं मेरे लिए। तो ये इबारत बिल्कुल मेरी ही कहानी है। मैं खुद मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ और रोज़ अपनी दुकान पर साइकिल से ही जाता हूँ। जब भी रास्ते में गुनगुनाता हूँ, बचपन की यादें और पापा का सिखाया हौसला याद आ जाता है। और सच में साइकिल जैसी प्यारी और टिकाऊ सवारी कोई और नहीं। एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन और साइकिल का रिश्ता ही कुछ अलग सा था। आज भी याद आता है वो कभी कभी साइकिल से स्कूल जाना, वो मस्ती, वो लड़ाई, वो भाई बहनों का प्यार। साइकिल के साथ सिर्फ पहिए नहीं घूमते, हमारा बचपन, हमारी शरारतें और छोटी छोटी खुशियां भी दौड़ा करती हैं। गिर कर फिर उठना और आगे बढ़ते जाना, शायद साइकिल नहीं जिंदगी का पहला सबक सिखाया। अब इन कलाकारों को आपको पहचानना है श्रोता, और फिल्म पहचाननी है।

हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि प्रेम रोग फिल्म में ऋषि कपूर की साइकिल जो थी वो काले रंग की थी। जी हाँ, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि इसके पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया इशारा फिल्म का, उसमें जॉय मुखर्जी बहुत ही खूबसूरती से और बड़े मजे से साइकिल चलाते हुए चले जा रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि कैंची साइकिल वो साइकिल होती है जिसमें आधा पैडल मारना पड़ता है। बचपन में जब साइकिल तक पूरे पैर नहीं पहुंच पाते थे तो आधा पैडल ही मारा करते थे। जी हाँ, क्योंकि बड़े लोगों की जो साइकिल थी वो आसानी से मिल जाती थी श्रोताओं। और तब क्या होता था कि हम लोग छोटे होते थे, बड़े लोगों की साइकिल जब उठाकर चलाते थे तो पहुंच नहीं पाते थे, फिर कैंची साइकिल चलानी पड़ती थी। एक और श्रोता ने लिखा है, जी श्रोता मित्रों को नमस्कार, और साइकिल का बचपन में हर किसी को चाम रहता है। हमने भी किराए की साइकिल लेकर बहुत चलाई है और कांची डंडा फिर सीट से आज भी साइकिल ही चलाता हूँ। जी हाँ, और साइकिल में श्रोता अलग अलग तरह के जो जो लाइट्स होती थी वो पहले होती थी, उनकी कुछ अगर याद है तो आप ज़रूर बताएं। वैसे मेरे पास तो कुछ याद है कि साइकिल में किस तरह की लाइट्स हुआ करती थी, यानी कहें कि लाइट हुआ करती थी, किसी किसी साइकिल में होती थी पर ज्यादातर साइकिल में नहीं हुआ करती थी। एक और श्रोता ने लिखा है कि मैं विद्यार्थी दशक में 25 पैसे देकर पिताजी ने साइकिल सिखाई मुझे, बाद में हम 8x9 किलोमीटर साइकिल पर धूप में साइकिल पर जाते थे। उस वक्त सहेलियों के साथ जाते थे। सबसे बढ़िया साइकिल तो वो सर्कस में देखी जहां कई लड़कियां साइकिल पर सवार हो जाती हैं। जी हाँ, ये तो बड़ा कमाल का होता था। और एक घर के पास भी तो कभी कभी ऐसा खेल दिखाने लोग आते थे कि जिसमें कई कई दिन लगातार साइकिल चलाते रहते थे। ऐसा खेल आपने कभी अपने मोहल्ले में, कभी आपने शहर में देखा हो तो आप ये यादें हमसे ताज़ा कर सकते हैं। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज दिलचस्प गीत होंगे साइकिल पर। एक और श्रोता लिखते हैं कि साइकिल का दौर वो था मित्रों के साथ क्रिकेट खेलने या स्कूल जाना साइकिल से हुआ करता था। मैं आज भी सब्जी मंडी या दूरी कोई खरीदारी होती है तो साइकिल पर ही करता हूँ, यानी कि पास की जो दूरी होती है उसके बारे में शायद ये बात कर रहे हैं। वैसे मेरे पास 2-व्हीलर है लेकिन पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाना बहुत जरूरी है, इसलिए रोज नियमित साइकिल चलाता हूँ। ये डाकिया कौन है?

0: किया बा वो
1: क्या रे?
0: छह महीना हुई गवा खतो नहीं लिखेंगे।
1: खतो नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से आवी का लिख।

डाकिया डाक लाता था और जब उसके साइकिल की घंटी बजती थी श्रोताओं, तो क्या एक जुनून होता था कि लोग उसके पीछे जाते थे, घर के बच्चे हों या बूढ़े, कि शायद उनकी कोई चिट्ठी आई हो। तो इस तरह की भी कोई यादें अगर आपकी हो तो आप साझा कर सकते हैं। आप सुन रहे थे पलकों की छाव, फिल्म का गीत हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि राजेश खन्ना डाकिया के रूप में है। किशोर कुमार की खूबसूरत आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की तरफ से गुलजार का लिखा ये प्यारा सा गीत था। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि पहले साइकिल सिर्फ एक सवारी नहीं थी, बचपन की आज़ादी, पापा का प्यार और जीवन का पहला सबक थी। और एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन जब पहली बार कैंची साइकिल जब हमने चलाई, थोड़ा बहुत गिरा, फिर संभला, फिर धीरे धीरे साइकिल चलाने लगा। कैंची साइकिल का मतलब साइकिल के फ्रेश के अंदर एक पैर, धीरे एक पैर इधर एक पैर उधर करके कैंची साइकिल चलाई जाती थी और बचपन की यादें अभी भी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि साइकिल में लाइट के लिए पिछले व्हील से चलने वाला डायनमो लगा होता था। लाइट जब जलती थी तो डायनमो व्हील के साथ चलता था और फिर उसको कुछ घर्षण से जो करंट मिलता था उससे ये डायनमो जलता था। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि साइकिल मेरे पापा की थी और हीरो डंडे वाली, मैंने वो सीखी थी। कई बार गिर के, कई बार किसी के ऊपर सीधे, बस तब से बंद हुई, एक बार तो खड़े ट्रक में घुस गई, बहुत पिटा था बाबा मेरे बाबा ने, मतलब इनके बाबा ने शायद इनकी पिटाई की। तो भाई ये तो बहुत ही ख़तरनाक है। जी हाँ, साइकिल चलाते समय बहुत ही ज़्यादा सतर्कता की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें कई बार हम लोगों ने ऐसा भी देखा होता है श्रोताओं कि जो बच्चे होते हैं वो साइकिल की दौड़ जो है वो अन्य गाड़ियों के साथ लगाते हैं, तो ऐसा ज़रूर संभव हो सकता है। साइकिल जितनी हमें प्रिय होती है तो लगता है कि इसकी रफ्तार उसी हिसाब से होनी चाहिए, और होती भी वैसे तो वास्तविकता नहीं है, तो इसलिए बहुत संभल कर चलाना चाहिए साइकिल। और एक और श्रोता लिखते हैं कि साइकिल पर पहले हम बैठ जाते थे, उतर नहीं पाते थे और बस गोल गोल चक्कर काटते रहते थे। जी गोल गोल चक्कर काटने में ही तो हम गिरते थे और फिर सीखते थे, और गिरना, फिर उठना, फिर चलना, और इसी तरह से जो जीवन का एक फलसफा है कह सकते हैं साइकिल, वो भी हमें सिखाती है। वैसे साइकिल आप क्या समझते हैं कि आज भी प्रासंगिकता इसकी बनी हुई है, तो आप हमें ज़रूर लिखें। और साइकिल क्या आज भी आप चलाते हैं, आपने सहेज रखी है? कितनी साइकिलें हैं श्रोताओं इस गीत में।

मेरे सितम फिल्म का ये गीत था विश्वजीत और आशा पारेख पर फिल्माया गया। हमारे कुछ श्रोताओं ने 7 साइकिलें लिखी हैं, कुछ ने 8 लिखी हैं, तो कितनी साइकिलें हैं ये हम आप पर छोड़ते हैं, आप हमें बता सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि 26 साल पहले मैं और मेरे बड़े भैया ने बैनर छपाई का काम शुरू किया था, तो पहली साइकिल ली थी, फिर वो चोरी हो गई, लेकिन साइकिल की चाबी अभी भी संभाल रखी है। देखिए कितना प्यार होता है श्रोताओं साइकिल से। आपकी कौन से रंग की साइकिल थी आप अगर बताना चाहें तो आप जरूर बता सकते हैं। वैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें 3 पहिए की एक लकड़ी की साइकिल आती है भी, और पहले भी आया करती थी, आजकल तो वॉकर आ गए हैं, लेकिन 3 पहिए की लकड़ी की साइकिल से बच्चे चलना भी सीखते थे, न सिर्फ साइकिल चलाना बल्कि वो चलना भी सीखते थे। ऐसी कुछ यादें हैं। वैसे आजकल आप किस तरह की साइकिल का इस्तेमाल करते हैं? एक और श्रोता लिखते हैं कि साइकिल बचपन की आंगनवाड़ी होती है, साइकिल सीखना चलाना बहुत अच्छा लगता है। मेरा बचपन में ट्राई साइकिल इनके पास थी, उस वक्त वो कांच पर गिर गए थे, अंगूठा कट गया था, 3 टाके आए थे, आज भी निशान है। तो भाई ऐसी भी बातें हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारा नमस्कार, साइकिल बचपन में हमारे लिए केवल एक खेलने का जरिया थी, वही साइकिल आज रोजी रोटी और अपने परिवार चलाने का जरिया बन गई है। जी हाँ, साइकिल से चलना तो बहुत ही अच्छी बात है। श्रोताओं क्या आप भी साइकिल से आजकल चलते हैं या फिर चलाना आपको अच्छा लगता है? एक और श्रोता ने लिखा है कि साइकिल आज भी अनगिनत यादों का प्रतीक है, जहां गति से ज्यादा दिशा, दिखावे से ज्यादा सादगी और गिरने के डर से ज्यादा उठकर दौड़ने का जुनून मायने रखता है। पिता के हाथों से मिली वो पहली साइकिल दरअसल जीवन की हर चुनौती से मुस्कुराकर पार पाने का पहला पाठ थी। एक और श्रोता ने लिखा है, जब स्कूल में थी तो किराए की साइकिल लेकर खूब चलाई, लेकिन अपनी साइकिल नहीं ले पाई, इस बात का मलाल मुझे है। अब इस उम्र में थोड़ा डर लगता है कि कहीं हाथ पैर न टूट जाए, लेकिन सुबह योगा में साइकिल जरूर चलाती हूँ और एकदम फिट रहती हूँ। जी हाँ, हम भी फिट रहते हैं और पर्यावरण भी इससे बहुत प्रभावित होता है। श्रोताओ ये कौन जनाब है साइकिल पर?

हुए कौन से अभिनेता या अभिनेत्री आपको बड़े स्टाइलिश लगते हैं। ये अजब सी स्टाइल है धर्मेंद्र जी की। ऐसी साइकिल आपने चलाई है क्या?

ये गजब तरीके से धर्मेंद्र जी ने साइकिल चलाई है श्रोताओं, और ऐसी साइकिल यानी उल्टी साइकिल बहुत सारे लोग चलाया करते थे, तो क्या आपने भी कभी चलाई है तो आप जरूर लिखें। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म औरत का जो गीत हमने आपको सुनवाया नाजिमा और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक आपने लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हाँ, मैंने भी कैची साइकिल चलाई है। और एक और श्रोता लिखती हैं, साइकिल भी क्या चीज़ थी बचपन, क्या आज भी साइकिल को लेकर उतनी ही पॉजिटिव हूँ जितना अपने बचपन में थी। जब पहली बार साइकिल पर बैठे थे तो लगता था कि साइकिल नहीं हवाई जहाज है, और इस पर बैठकर चाहे जहां तक उड़ सकते हैं। वो चैन के दिन जब साइकिल से सारा शहर नाप लेते थे, आज भी मेरे पास एक गुलाबी साइकिल है। साइकिल हमारी दोस्त ही नहीं, ये तो पर्यावरण की भी सच्ची साथी है। और साइकिल चलाइए और अपनी और प्रकृति की सेहत बनाइए। एक और श्रोता लिखती हैं कि कुछ चीजें उम्र के साथ पुरानी नहीं होती, बस यादों की अलमारी में और तहजीब से रख दी जाती हैं। मेरी पहली साइकिल भी कुछ ऐसी ही थी, उसने मुझे रास्तों से ज्यादा जिंदगी का संतुलन सिखाया था। गिरना भी उसी ने सिखाया और उठकर फिर चलना पड़ना।

पढ़ना भी। और पापा के हाथ पीछे, पापा का हाथ था सामने खुली हुई गली। और कुछ इन्होंने अपनी बात भी लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरे पापा ताऊ दादा यदि सब ने नौकरी अधिकतर साइकिल के द्वारा की है और सेवा उपरांत भी उपयोग किया है। हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज तक साइकिल से जाके पढ़ाई हम लोगों ने की और बाइक भी थी। साइकिल से घूमना जाना आज भी जारी है और अब पापा नहीं चला रहे, फिर भी हम लोग उन्हें बताते हैं साइकिल जा रहे हैं, वो ऐसे सेफ समझते हैं। यानी कि इन्होंने कहा होगा कि शायद हम साइकिल से जा रहे हैं तो वो सेफ समझते हैं, और अच्छी बात है ये।

0: हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि साइकिल की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है शहरों में भी और गांवों में भी। भले बाइक से फराटा लोग आज दिखाते हैं, लेकिन पेट्रोल की महंगाई ने तमाम लोगों को सिखा दिया कि 4-5 किलोमीटर तक जाना है तो साइकिल ही ठीक है। हम आज भी इस उम्र में साइकिल चलाते हैं जो एक तरह का व्यायाम कराती है और पैसे भी बचाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि हमारे जमाने में लकड़ी की गुड़गुड़ी चलाई जाती थी, नाना जी ने दी थी, फिर भाई हुआ तो बाबा ने 3 चक्के वाली साइकिल खरीदी। अब नवासे के जमाने में चलना क्या सीखेंगे, तो साइकिल खरीदी, अब तो स्कूटर की मांग है।
1: सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल,

मनोज कुमार शोर फिल्म में 7 दिन तक साइकिल चलाते हैं, श्रोताओ ऐसा नजर आता है, ऐसा दिखाया गया है। आप सुन रहे थे ये गीत मन्नडे, महेंद्र कपूर और श्यामा चित्तर की आवाज में। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि लकड़ी वाली 3 पहिए की साइकिल पर हम तो 2 बहनों ने चलाना सीखा, पर अब वो नहीं दिखती। मेरी पहली साइकिल काले रंग की थी, स्कूल जाते थे भीगते पानी में और धूप में कोहरे में। एक और श्रोता लिखते हैं कि बच्चे के लिए लकड़ी की 3 पहिया साइकिल को हिंदी में गडूला और मराठी में पांगुल गाड़ी कहते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि जॉनी वॉकर जो गीत हमने आपको सुनवाया था, इन्होंने ही लिखा है कि जॉनी वॉकर साइकिल पर नजर आते हैं और ये मुकाबला करते हैं कलकत्ता की ट्राम से। एक और श्रोता ने लिखा है कि मैंने साइकिल चलाना सीखने की बहुत कोशिश की पर सीख नहीं पाई, पार्क में जिम में है और वहां मैं जाती हूँ और चलाती हूँ साइकिल। आपको ये अदाकार और फिल्म बतानी है और संगीतकार बताने हैं श्रोताओं।

श्रोताओ, ऐसा शायद ही कोई हो जो साइकिल चलाते चलाते कुछ गुनगुनाता ना हो, और ये आदत शायद वहीं से पड़ती है। आज भी जब कभी हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो गुनगुनाते हैं। आप कौन सा गीत गुनगुनाते थे जब साइकिल चलाते थे?

तेरे मेरे सपने इस फिल्म का गीत था। देवानंद और मुमताज पर फिल्माया गया। नीरज के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूँ और साइकिल से जो है सुबह निकलता हूँ, मॉर्निंग एक्सरसाइज भी हो जाती है, ऐसा इनका लिखना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज भी सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान 4 किलोमीटर साइकिल चलाकर यूको पार्क जाता हूँ, फिर वहाँ मॉर्निंग वॉक कर साइकिल से ही वापस लौटता हूँ। ये मेरी डेली रूटीन में शामिल है जिससे अपने तरोताज़ा अपने आप को महसूस करते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि स्कूल से लौटते वक्त साइकिल पर तीन तीन दोस्त बैठ कर आते थे, अन्य दोस्तों के साथ रेसिंग भी करते थे। एक और श्रोता ने लिखा है कि फिल्म लीडर में दिलीप कुमार ने जो उल्टी साइकिल दौड़ाई है उसकी बात इन्होंने लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम कॉलेज टूर पर इंदौर गए, 1989 की यादें ताजा हुई।

रोशन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं, सहरा बानो नजर आती हैं। श्रोताओ, आपके तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके तमाम कमेंट्स के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रही देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती के संग सुरीला सफर कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

श्रोताओं नमस्कार। त्रिवेणी में आज बातें सिर दर्द की। सिर दर्द कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वो दर्द जो कि हमारे सिर के अलग अलग हिस्सों में कई अलग अलग कारणों से होता है। आमतौर पर सर्दी, जुकाम, ठंड, एसिडिटी, मौसम के बदलने का असर सिर दर्द के रूप में सामने आता है। इसके कारण कई बार हमें बिल्कुल बेचैनी का सामना करना पड़ता है। सिर दर्द के कई कारण भी हो सकते हैं और उसी के अनुसार उनका इलाज भी होता है, पर आम तौर पर सिर दर्द के दौरान सीधा सा उपाय पेय पदार्थों का सेवन और स्क्रीन से दूरी ही है। बस आंखें बंद करके लेट जाइए और हो सके तो किसी से सिर पर हल्के हाथों से तेल की मालिश भी करवा सकते हैं, जो कि आपके सिर दर्द से आपको राहत दिलाने में कारगर होगा।

0: कारण।
1: सिरदर्द के स्वास्थ्य संबंधी कारणों की बात तो हमने की, लेकिन कुछ सिरदर्द अलग तरह के होते हैं, जैसे कि कुछ आदतें और कुछ लोग भी कई बार सिरदर्द की श्रेणी में आते हैं। सिरदर्द कहलाने वाली आदतों में शुमार हैं चुगली, बेवजह के सवाल जवाब या नकारात्मकता का पिटारा, जो कई बार हमें सामान्य नहीं रहने देता। वैसे ही कुछ लोगों की फितरत भी इस तरह की होती है जो हमें कई बार सिरदर्द की हद तक ही परेशान कर देती है। इस तरह के सिरदर्द की खासियत या कहें मुसीबत ये होती है कि इनसे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है। ना तो कोई चंपी काम आती है और ना ही कोई दवा। इनसे बचने का सीधा सा उपाय है कि ऐसे व्यक्ति को देखते ही हो जाइए 9-2-11, वरना आप भी यही कहेंगे।

जैसे कुछ आदतें और लोग सिरदर्द होते हैं, उसी तरह से कई काम भी हमें सिरदर्द ही लगते हैं। जैसे बैंक, ऑफिस या स्कूल में तरह तरह के कामों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना, किसी के बड़े से खत का जवाब देना, किसी के इत्मीनान से कहे जा रहे वॉइस मैसेज को सुनना, और भी न जाने क्या क्या। सबके अपने अपने

अलग सिर दर्द होते हैं। हो भी क्यों ना, सबके सिर अलग अलग हैं और उनके दर्द झेलने की क्षमता भी। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि सिर दर्द चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो या हो किसी आदत, काम या व्यक्ति संबंधी, उससे जितनी जल्दी छुटकारा पा लिया जाए जीवन उतना ही आनंदपूर्ण हो जाता है। जीवन में आनंद बढ़ाने और हर प्रकार के सिर दर्द को कम करने का एक कारगर उपाय है संगीत। अच्छा संगीत आपको स्वस्थ और आनंदमय रखता है। जब

हमारी यही है कामना कि आपको जीवन भर न करना पड़े किसी भी तरह के सिर दर्द का सामना। और इसी के साथ आज की त्रिवेणी संपन्न होती है। अब दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के लिए मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति और दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: आज किर्गिस्तान में हुए शिखर सम्मेलन के बाद शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं ने बिश्केक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संगठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी बिश्केक घोषणा पत्र के साथ साथ सदस्य देशों ने संस्थागत ढांचों को बेहतर बनाने और नए सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से व्यापक प्रस्तावों पर भी हस्ताक्षर किए। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है। इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
2: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में

0: काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
1: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 987 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों ने देश के 8 जिलों से और शव बरामद किए हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 583 विदेशियों और कई सुरक्षा कर्मियों समेत करीब 4000 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि लगभग 12000 लोगों को बचा लिया गया है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के शवों की पहचान और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी साझा की है। दूतावास ने बताया कि नेपाल सरकार के अनुसार विदेशी नागरिकों के शवों को सौंपने के लिए कई चरणों की आवश्यकता होती है। इनमें शवों का दस्तावेजीकरण, तस्वीरें और विवरण रिकॉर्ड करना, पोस्टमार्टम, मृत्यु के कारण का सत्यापन, औपचारिक पहचान, उंगलियों के निशान, डीएनए और अन्य फोरेंसिक नमूनों का संग्रह, मृतक के पासपोर्ट या पहचान पत्र का सत्यापन और दूतावास या वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय शामिल है। दूतावास ने कहा कि यदि रिश्तेदार और परिवार के सदस्य नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध तस्वीरों और विवरणों के माध्यम से शवों की पहचान कर पाते हैं तो दूतावास शवों को सौंपने और स्वदेश वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने में मदद करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नेपाल त्रासदी के दौरान मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। बल के शपथ ग्रहण समारोह पर अपने लिखित संदेश में श्री शाह ने कहा कि संकट के समय एसएसबी की त्वरित, समन्वित और संवेदनशील कार्रवाई उसके आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का जीवंत प्रमाण है। समारोह में गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा गृह मंत्रालय और सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। एसएसबी के 18 जवानों को वीरता पदक और 5 जवानों को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए। गृह सचिव ने एसएसबी की आवासीय परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच स्वदेशी रूप से निर्मित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को भी सुगम बनाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक 3,00,000 करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान अहमदाबाद से रवाना होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी।
3: अहमदाबाद में इस फैसिलिटी की शुरुआत के साथ गुजरात का यह प्रमुख शहर भारत के बढ़ते हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में वाराणसी और अमृतसर के बाद तीसरा क्षेत्रीय केंद्र बन जाएगा। यह पहल सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा है जिसका मकसद छोटे और गैर मेट्रो शहरों से विदेश जाने वाले यात्रियों के हवाई सफर को आसान और सुविधाजनक बनाना है। इजी कनेक्ट सुविधा के तहत यात्री अब अपने आखिरी विदेशी गंतव्य के लिए चेक इन, सामान जमा करने से लेकर कस्टम और इमिग्रेशन जैसी सभी जरूरी औपचारिकताएं सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही पूरी कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली जैसे प्रमुख हब एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्रियों को अपना सामान दोबारा लेने, फिर से सुरक्षा जांच कराने या इमिग्रेशन की लाइन में लगने की जरूरत

0: जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे अपने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के प्रस्थान गेट तक जा सकेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हर गुजरते साल के साथ एआई समाज में तेजी से शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब कम उम्र के विद्यार्थी भी पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री जोशी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के 66वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है। ये चैनल वर्ष 2001 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। ये एआईआर एफएम गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। एफएम गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। एक रिपोर्ट।
2: श्रोताओं, इस धुन को सुनते ही आपके मन में आकाशवाणी की अमर विरासत से जुड़ा एक अद्भुत उत्साह उमड़ने लगा होगा। जी हाँ, ये वही धुन है जिसने पीढ़ियों को ज्ञान और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी से जोड़ा। पिछले कुछ वर्षों में एफएम गोल्ड आकाशवाणी की प्रमुख रेडियो सेवाओं में से एक बनकर उभरा है। इस चैनल पर नियमित समाचार बुलेटिन और सुर्खियाँ प्रसारित होती हैं। साथ ही इस चैनल पर समसामयिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। एफएम गोल्ड के कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों में स्पॉटलाइट, मार्केट मंत्रा, स्पोर्ट्स स्कैन और कंट्री वाइड शामिल हैं। वहीं आज सवेरे और परिक्रमा जैसे कार्यक्रम भी श्रोताओं को खासे पसंद आते हैं। ये तो बात हुई एफएम गोल्ड के प्रमुख कार्यक्रमों की, लेकिन इसके अलावा भी इस चैनल ने पिछले 2 दशकों में श्रोताओं को मनमोहक संगीत से मनोरंजित किया है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के वाक्य के साथ आकाशवाणी लगातार जनता के बीच विश्वसनीय और सटीक जानकारी का माध्यम बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
4: मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जलभराव के कारण आमजन को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध हैं। उधर अल्मोड़ा में भारी बारिश के चलते सोमेश्वर के बड्यूडा में देर रात एक मकान के भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोग की मृत्यु हो गई। वहीं देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में तेज बहाव में आने से एक वाहन में सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: झारखंड में तेज बारिश जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
5: मौसम केंद्र के अनुसार आज झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में अगले 24 घंटे के लिए कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड का खतरा जताया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अचानक तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है, जिसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं रांची, खूंटी, चतरा और सरायकेला खरसावा में येलो अलर्ट जारी करते हुए कहीं कहीं भारी बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: घरेलू शेयर बाजारों में आज दोपहर कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 44 अंक की गिरावट से 76,915, जबकि निफ्टी 51 अंक की गिरावट के साथ 24,030 पर कारोबार कर रहा था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में विश्व वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो को पराजित कर दिया है। सबालेंका का अगला मुकाबला रूस की पोलिना यात्सेन्को से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया।

0: भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सचिन देव बर्मन की तर्ज थी शैलेंद्र की रचना, आपने सुनी मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म थी मेरी सूरत तेरी आंखें।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आम्रपाली फिल्म का गीत था हसरत जयपुरी के बोल, संगीत था शंकर जयकिशन का।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: उड़ जा काले कावा
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती एसिड लेने।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला।

0: महेंद्र कपूर और आशा भोसले का गाया ये दुगाना आपने सुना गुमराह फिल्म से। साहिल ध्यानवी के बोलों को सुरों में ढाला रवि ने।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।

0: कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे संगीता श्रीवास्तव के साथ।

हसरत जयपुरी के बोलों को सुनो में ढाला शंकर जयकिशन ने मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे। फिल्म थी प्यार ही प्यार। फिल्म पेइंग गेस्ट, किशोर कुमार की आवाज़।

आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज ये तो गाना मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर का गाया फिल्म अनजाना से, और यही है सदाबहार नगमे प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। श्रोताओं, इस कार्यक्रम से संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आरती, आज तुम हमारे साथ हो तो तुम्हें भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
2: मंजरी, आपको और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: और बताओ, कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक हूँ।
1: बहुत दिनों बाद सखी सहेली के मंच पर मिलना हो रहा है।
2: ऐसे तो हम लोग बात करते रहते हैं, लेकिन मिलना जो होता है ना, वो यहाँ पे ही होता है।
1: और साथ में जब बात करना होता है, विषय बताने होते हैं, तो भी बड़ा मजा आता है। जैसे कि भाई देखो, आज का जो विषय है मुहावरों की दुनिया, तो मुंह में पानी आना, तो इस पर भाई आप लोग अपनी अपनी छोटी छोटी सी बातें लिखिए कि
2: कब को क्या देख के मुंह में पानी आ जाता है।
1: तो मेरे मुंह की बात छीन ली है ना। और देखो, हल्की फुल्की बातें में हम करेंगे मुफ्त का लालच,
2: यानी कि एक के साथ अगर हमें एक फ्री मिल रहा है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको ले लेते हैं।
1: ये सब चीजें देखो, कपड़े पहनने, वस्तुओं से लेकर के कुछ
2: खाने पीने
1: पर
2: भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना। तो बस अपनी अपनी यादें ताजा कीजिए। और सखी विशेष में क्या लेकर के आई हो आरती?
2: आज हम सखी विशेष में हम बात करेंगे छाया नंजप्पा जी के बारे में, जो कि संस्थापक हैं नेक्टर फ्रेश की, उनके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही आज हम बात करेंगे दैनिक आहार और पोषण, हमारी थाली में पोषण कितना होता है और जो चीजें हमारे नुकसान करने वाली हैं वो कितनी होती हैं। हाँ। इसके बारे में हम बात करेंगे।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि हमारे हम जो खाना खा रहे हैं दैनिक रूप से, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कैसा खाना चाहिए, है ना।
2: बिल्कुल।
1: तो ताजा, बासी, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले तो हम भाई चलेंगे गीत की ओर।
2: संगीत के बिना तो सब बातें अधूरी हैं।

0: तो भाई आरती, तेरे कारण ये जो भाई ये चीजें होती है ना, ये घरों में बहुत होती है कि तुम्हारे कारण
1: तुम्हारी वजह से हुआ जो भी हुआ,
0: तुम्हारी वजह से जो भी हुआ, किचन में अब ये बनाए वो बनाए, ये सब चलता रहता है। और देखो जब हमारी जिंदगी में रोज ही ये सब चीजें होती रहती है कि भाई क्या बनाएं क्या खाएं, तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी थाली में कैसा खाना हो जो विटामिन्स प्रोटीन्स मिनरल से भरा हुआ हो, यानी कि दैनिक आहार और जो पोषण है उसमें हमें एक समय में नाश्ते में अच्छा खासा मिल जाए, फिर लंच में मिल जाए, जो हम दोपहर का भोजन जिसे कहते हैं उसमें अच्छा खाना हो, और रात का खाना। तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, खासकर हम गृहिणियों को, और तुमको भी याद रखना पड़ता है ना कि चटपटा कितना खाना है, सादा कितना खाना है।
1: अच्छा अच्छा, चटपटा मुझे ध्यान रखना है।
0: चटपटा तुम्हें बहुत पसंद है इसलिए तुम याद रखो, है ना। और अक्सर हम खाना तो पेट भरने के लिए खाते हैं ना, लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि हमारा भोजन हमारे शरीर को सही पोषण भी दे रहा है कि नहीं, है ना। आप पेट भरने के लिए ना खाएं, जीने के लिए भी खाकर सोचें, है ना।
1: बिल्कुल।
0: और क्या कहते
1: और है? कहते भी हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचारों का निवास होता है, और स्वस्थ शरीर की शुरुआत होती है एक संतुलित और पौष्टिक आहार से। और पोषण का अर्थ ही होता है कि भोजन के माध्यम से शरीर को आवश्यक तत्व मिलने जितने भी हो सके, और जिससे कि हमें ऊर्जा मिल सके और शरीर का विकास हो, और हम तभी तो स्वस्थ रह पाएंगे।
0: बिल्कुल स्वस्थ रह पाएंगे, और क्योंकि हमारा जो रोज का भोजन होता है उसमें अलग अलग तरह के पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी, जैसे हमने अभी कहा ही था कि प्रोटीन विटामिन तो कार्बोहाइड्रेट भी शरीर को ऊर्जा देता है, तो वो भी होना चाहिए। और प्रोटीन डाइट जिसे कहते हैं, प्रोटीन जो शरीर की वृद्धि और ऊतकों की देखभाल करने में मदद करता है, और वसा जो ऊर्जा का एक स्रोत है और शरीर के लिए वो बहुत आवश्यक भी है, तो विटामिन और खनिज जो शरीर के सामान्य कार्यों और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, तो अपने खाने में उन चीजों को देखें। और जो हमारी सब्जियां वगैरह होती हैं, जो भी अनाज है, तो आप चाहे तो एक चार्ट बना करके किचन में चिपका लीजिए कि भाई इसमें ये चीज पाया जाता है, तो हम बदल बदल की चीज बनाएंगे।
1: बिल्कुल, जितनी रंग बिरंगी आपकी थाली होगी ना हमारी, उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो क्योंकि वो सिर्फ स्वादिष्ट खाना ही नहीं बल्कि पौष्टिक और विविध भोजन भी जरूरी होता है, कि एक ही तरीके का खाना खाकर हम वैसे भी ऊब जाते हैं, तो हमारी थाली जितनी

0: ज्यादा रंग बिरंगी होगी उतना ही हमें खाने में अच्छा लगेगा। और जिसमें कि होनी चाहिए क्या क्या चीजें, हरी सब्जियां, मौसमी फल होने चाहिए, दालें होनी चाहिए, अनाज और बहुत से पौष्टिक जो खाद्य पदार्थ है उनको अपनी दिनचर्या का हमें हिस्सा बनाना चाहिए। खासकर दालें तो बहुत जरूर होनी चाहिए,
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: चाहे बच्चों चाहे बड़े हो, सबको दाल तो खानी ही चाहिए।
1: बिल्कुल। और सुबह का नाश्ता भी बहुत जरूरी होता है, वो भी समय से करने के लिए, क्योंकि रात भर हम जो रात में खाकर सोते हैं सुबह तक तो वो हजम हो जाता है, लेकिन नाश्ता ही देर करेंगे तो आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। तो उस समय आप नाश्ता एक पौष्टिक लीजिए, पोहा, उपमा, ये सब चीजें ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, है ना, चीला वगैरह में मूंग का चीला ले सकते हैं। और दोपहर के भोजन में अनाज, दाल जैसा तुमने कहा है, और दही के साथ साथ प्रोटीन और अन्य सब्जियां भी शामिल करें। और शाम को जरूरत से ज्यादा तले भुने या अत्यधिक मीठे खाद्य पदार्थों के बजाय पौष्टिक विकल्प चुनना चाहिए, क्योंकि हम काम करके थक जाते हैं तो हमें खाना खा के रात को सोना भी है, तो जब हम तेल वाला मिर्च मसाले का खाएंगे तो हमें तकलीफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी।
0: और वैसे भी शाम के समय थोड़ा सा हमारी जो पाचन क्रिया होती है थोड़ी धीमी हो जाती है, तो उस हिसाब से हमें बहुत ही हल्का और सुपाच्य खाना खाना चाहिए। और जैसे सैलेड हम खा सकते, सलाद खा सकते हैं, है ना, या कोई हरी या सब्जी कोई अपने हमने हरी बनाई, हरी सब्जी बना रखी तो उसको खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, तो इस तरीके की चीजें हमें खानी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और इसके अलावा हमारे शरीर के लिए पानी भी बहुत जरूरी, तो दिन भर पर्याप्त पानी पीना भी बहुत जरूरी होता है।
1: ये तुमने बिल्कुल सही कहा कि कम से कम 7-8 गिलास पानी आप जरूर पिए, कि जिससे आपके अंदर के शरीर की जो गंदगी है वो
0: घूट
1: बाहर
0: घूट कर पानी पीजिए। और जरूरी नहीं कि आप एकदम से बहुत सारा पानी पी लें, क्योंकि फिर हमारे शरीर को उसको भी करने में बहुत टाइम लगेगा, परेशानी होगी, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी करके पीजिए।
1: और पानी जब भी पिए ना तो बैठ कर पिए, धीरे धीरे पिए। तो फिलहाल तो हम लोग एक गीत सुन लेते हैं।

क्यों है, हवाएं क्यों झूमती है, लहरें बार बार किनारे को क्यों चूमती है।

0: तो अंतराल के बाद फिर सभी का स्वागत है और कार्यक्रम चल रहा है आरती सखी सहेली। तो हमारे साथी जो लगे उन्होंने क्या क्या संदेश लिखकर भेजे हैं?
1: बहुत कुछ लिखा है एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि दैनिक आहार बहुत हल्का और पौष्टिक होना चाहिए, वही शरीर को स्वस्थ बनाता है। कभी कभार एक आध बार चल जाता है। मैं भी सुबह की शुरुआत अपनी जो वैसी चाय होती है उससे करती हूँ और दिन में दाल चावल हरी सब्जी रोटी और रात में सब्जी डालकर ज्वार की दलिया खाती हूँ और कभी कभार तीज त्योहार पर पूरी सब्जी खा लेती हूँ।
0: क्या बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि दैनिक आहार और पोषण, रोजमर्रा के जो हम खाना खाते हैं उसमें पोषण होना बहुत जरूरी है क्योंकि वही हमारे सेहत को एक अच्छी गति प्रदान करता है। उसमें पोषण हम किस तरीके से ला सकते हैं? दैनिक आहार में पोषण लाने के लिए हर तरीके की चीज खाएं, चावल रोटी, लेकिन कहते हैं चावल और रोटी को कभी भी एक साथ नहीं खाना चाहिए, इसीलिए चावल और रोटी को कभी भी एक साथ नहीं खाना है। और अपने आहार में अनाज, हर प्रकार की दालें, राजमा, चना, मूंग, इस तरह की चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। दूध, दही ले, और जो मतलब जिस तरह के निरामिष या शामिष भोजन वैसे करते हैं तो वो करें आप। और जंक फूड और तली चीज़ों से दूर रहें और घर में ही पोषक तत्वों से भरा स्वादिष्ट खाना जो बनता है वो आप खा सकते हैं। मूंग का दाल का चीला है और इससे सिस्टम भी आपका सही रहता है, सेहत सही रहती है। और बहुत से खाने भी आप खोज सकते हैं कि क्या क्या हमारे लिए, सूजी का उपमा वगैरह, चीला, ये सब खा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल, हमारे एक साथी जो कहते हैं कि दैनिक आहार और पोषण में भोजन में रंग बिरंगी सब्जियां और फल आप खा सकते हैं, 8 से 10 गिलास पानी पीजिए और बहुत ज़्यादा चीनी और मैदे वाली चीज़ों से दूरी बना कर रखिए और खाने को स्वाद के लिए नहीं बल्कि ज़रूरत के अनुसार खाइए।
0: बिल्कुल। और जैसे कि दैनिक आहार और पोषण हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, ऊर्जा स्तर और मानसिक विकास का मुख्य आधार है, आहार है, और ये वो भोजन है और पेय है जिसे हम नियमित रूप से सेवन करते हैं। पोषण जो है ये शरीर द्वारा भोजन और पोषक तत्वों को ग्रहण करने और उनका उपयोग करने की प्रक्रिया है जो हमें ऊर्जा देती है और स्वास्थ्य को बनाए रखती है। और भाई इस की जानकारी हम एक दूसरे से ले सकते हैं, घर में जो परिवार के अन्य सदस्य भी होते हैं ना आरती, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो भी बताते हैं कि देखो ये चीज़ खाओ, गर्मी में ऐसी चीज़ें खाओ कि आपका तन में शीतलता बनी रहे। और जैसे कि बारिश के समय है तो इस तरह की कहा जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें खाओ कि आपको थोड़ी सी गर्मी भी रहे, और सर्दी में तो कहा ही जाता है कि गर्म पदार्थ खाने। तो उन सब चीज़ों का आप बड़े बूढ़ों से भी आप सीख सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी किताबें भी आ गई हैं, आप सोशल मीडिया या आप उससे भी जानकारी नेट से भी, इंटरनेट से भी ले सकते हैं। तो
1: बिल्कुल, और वैसे भी अगर हम बाहर की चीजें खाते हैं या जैसे कि अपने घर का खाना छोड़कर हम बाहर का खाना खाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा प्रयोग किया हुआ जब तेल भी उसमें उपयोग किया जाता है क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें बन चुकी होती हैं और लगातार वो तेल खोल रहा होता है, गर्म हो रहा होता है, तो वो तो आपको नुकसान पहुंचाने ही वाला है वैसे भी। और हम जो भी चीजें बाहर की खाते हैं उसमें कितना तेल, कितना नमक तेज है या कितना तेल बहुत ज्यादा है या कितना मिर्ची तेज है, मतलब वो जो चीजें हैं, मसाले हैं, वो कौन से हिसाब से डाले गए हैं, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना कि हम बाहर का खाना जितना हो सके उतना कम खाएं, अपने घर पे ही आप अच्छा ताजा भोजन खाएं और सुपाच्य हो, अच्छा हो, जो हल्का हो, जो पचने में आसान हो, ऐसा भोजन खाना चाहिए।
0: बिल्कुल। और खुला जब भी खाना किचन में बने आप बना के रखती हैं तो उसको ढक कर रखें, कभी भी खुला मत रखें, और हो सके तो आप बिल्कुल बासी खाने

0: मतलब ना ही खाएं तो अच्छा है, ताजा ही भोजन का जैसा तुमने कहा ही है, और बच्चों को भी यही सिखाएं कि भाई आप भी ताजा खाना खाइए, हम बना रही है नहीं कि अभी नहीं खाएंगे तभी नहीं खाएंगे। बच्चे करते ना अक्सर ऐसा कि
1: बिल्कुल
0: नहीं अभी मन नहीं कर रहा है, अभी पेट भरा हुआ है, या कोई भी बहाने कर देंगे कि अब मोबाइल छोड़ के उन्हें खाना खाने के लिए बोल
1: हाँ
0: दिया गया है ना। तो इस तरह की चीजें ध्यान रखे, और साथ में जब खाना खाने के लिए आप लोग बैठते हैं, खाना खाने सब लोग, हम सभी लोग बैठते हैं, तो उस समय इन सब चीजों से को अपने आप से दूर कर दें, मोबाइल
1: बिल्कुल
0: वगैरह, कि सिर्फ खाने पर आप ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं।
1: वो हमारे स्वास्थ्य का के लिए जो हम खा रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तो जब हम अपने हाथों से खाना अपने मुंह तक पहुंचाते हैं, वो जो खाना होता है ना, वो एक अलग सा रिश्ता बनाता है हमारे हाथों से हमारे
0: बिल्कुल
1: मुंह तक आता है खाना। तो उसकी वजह से ना हमारे शरीर पे बहुत बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
0: अच्छा, जो बनाता भी है ना 1 घंटे 2 घंटे करके मेहनत करके, जो हमारी सखियां बहनें सब बनाते हैं हम लोग, तो उनकी तारीफ करने के लिए भी आप सोचिए ना कि अब जब स्वाद से
1: बिल्कुल
0: खाएंगे तभी तो आप तारीफ कर पाएंगे।
1: बिल्कुल
0: अगर आपका ध्यान मोबाइल में लगा है या
1: हाँ
0: टीवी में लगा है तो आप तो खाने का स्वाद
1: पता
0: ही
1: ही
0: नहीं
1: नहीं
0: चल रहा
1: चलेगा
0: है,
1: हम
0: पता
1: क्या
0: ही नहीं
1: खा
0: चल
1: रहे
0: रहा
1: हैं।
0: है ना। तो वो चीज भी बहुत ध्यान रखना है। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि दैनिक आहार बहुत हल्का और पौष्टिक होना चाहिए, वो शरीर को स्वस्थ बनाता है, कभी कभार एक आध बार चल जाता है, मैं भी सुबह की शुरुआत मतलब हर्बल चाय से करती हूँ। तो ये देखो ये चीज बहुत अच्छी बात है, और तुमने भी इस को बताया ही था आगे इसी संदेश को, तो बहुत अच्छी सी बात है कि इस तरह से ध्यान रखना चाहिए अपना। और हम ध्यान रख लेते हैं बातों के बीच में।
1: एक गीत का

0: तो भाई देखो आरती, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। तो भाई आज कौन सी सखी विशेष की तुम बात करने वाली हो?
1: मैं हम बात करने वाले हैं आज छाया नंजप्पा जी की।
0: जी
1: तो छाया नंजप्पा राजप्पा की, जो कि भारत की जानी मानी महिला उद्यमी में से शामिल हैं, और इनका जन्म हुआ था दक्षिण कूर्ग नलकरी में। उनका बचपन अपेक्षाकृत पारंपरिक और सुरक्षित वातावरण में बीता था। उन्होंने मैसूर में अपनी शिक्षा पूरी की। हालांकि उनकी जो औपचारिक शिक्षा थी वो आगे बहुत समय तक जारी नहीं रह सकी, लेकिन उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा और पत्राचार के माध्यम से उन्होंने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया।
0: छाया के जीवन में एक कठिन दौर तब आया जब उनके पिता का निधन हुआ और बाद में उनका विवाह भी असफल रहा, और इन कठिन परिस्थितियों ने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। और उनका उद्देश्य केवल अपना व्यवसाय शुरू करना नहीं था, बल्कि अपने गृह क्षेत्र के लोगों, विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के लिए रोजगार और आय के अवसर पैदा करना भी था।
1: बिल्कुल, छाया ने जब अपनी शुरुआत करी थी अपने उद्यम की, तो उनके पास ना तो पारिवारिक व्यवसाय की पृष्ठभूमि थी और ना ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का कोई लंबा अनुभव। उन्होंने शहद के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि CBRTI पुणे में प्रशिक्षण लिया। इसी दौरान उन्हें मधुमक्खी पालन और शहद प्रसंस्करण की तकनीकी जानकारी भी मिली,
0: और उन्होंने छोटे स्तर से शुरुआत की और धीरे धीरे शहद की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग का व्यवसाय विकसित किया। उनके व्यवसाय की शुरुआत विशेष रूप से शहद और कृषि आधारित खाद्य उत्पादों से हुई, और कंपनी की शुरुआत में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड KVIC समर्थित ग्रामीण उद्यम के रूप में विकसित किया गया।
1: उनकी कंपनी का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ बनाना है, खाद्य उत्पाद बनाना है। बाद में कंपनी ने अपने उत्पादों का विस्तार किया, जिसमें शहद, जैम, सॉस, चिया सीड्स, प्राकृतिक सिरका, सेब का सिरका, कॉफी और मसालों जैसे उत्पाद हैं। छाया के उद्यम में का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है ग्रामीण रोजगार और छोटे किसानों और सभी समुदायों को उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण की प्रक्रिया में प्रशिक्षित करके आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना।
0: बिल्कुल, और उनकी कंपनी ने वन समुदायों से प्राप्त शहद की खरीद और उसे बाजार तक पहुंचाने में भूमिका निभाई। उनका मॉडल किसानों, शहद संग्रह करने वाले समुदायों, खाद्य उपयोग और उपभोक्ताओं को एक दूसरे से जोड़ने पर केंद्रित रहा है, और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के कम शिक्षित और कम प्रशिक्षित लोगों को काम के दौरान प्रशिक्षण देकर उन्हें खाद्य प्रसंस्करण और उत्पादन की प्रक्रिया से जोड़ा।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि उनकी जो उद्यमिता है उसको सामाजिक उद्यमिता का उदाहरण भी माना जाता है। उनकी कंपनी को वी कनेक्ट इंटरनेशनल के उनको के विमेन ओन्ड लोगों का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला ब्रांड बताया गया है। ये पहचान महिला उद्यमिता और महिला स्वामित्व वाले व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जोड़ने का के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल, और उनकी कंपनी ने धीरे धीरे बड़े होटल समूहों, खुदरा संस्थानों और आयुर्वेद और फार्मा क्षेत्र के ग्राहकों तक अपनी पहुंच बनाई। और उनकी कंपनी ने केवल कच्चे शहद की बिक्री तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि गुणवत्ता, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान दिया। और छाया ने भारतीय बाजार में उच्च गुणवत्ता वाले पैक किए गए शहद और अन्य खाद्य उत्पादों को स्थापित करने पर भी उन्होंने जोर दिया।
1: बिल्कुल, और छाया नंजप्पा नेशनल बी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ी रही हैं और KVIC के हनी मिशन की नेशनल लेवल एडवाइजरी कमेटी की सदस्य भी रही हैं। वो एसोसिएशन ऑफ बिजनेस वीमेन इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारत की कंट्री प्रेसिडेंट और कर्नाटक की स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में भी सूचीबद्ध हैं।
0: और देखो, इनके बहुत सारे काम हैं, इन्होंने मतलब इस तरह से जो किया है वो सबके लिए एक मिसाल है, और हम लोग इनके बारे में और भी बातें करेंगे आरती, लेकिन अभी एक समय हो रहा है, धीरे धीरे एक अंतराल का समय हो रहा है, तो हम लोग एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, फिर हम इनके बारे में आगे बातें करेंगे।

0: अंतराल के बाद फिर सभी का स्वागत करते हैं और हम लोग बात कर रहे थे छाया जी के बारे में, तो क्या बातें चल रही थी आरती?
1: बिल्कुल, छाया नंजप्पा विभिन्न संस्थाओं और मंचों से भी जुड़ी रही हैं। वो नेशनल बी बोर्ड से जुड़ी हैं और हनी मिशन की राष्ट्रीय स्तर के सलाहकार भी हैं, और जैसे कि हमने बताया था अभी, और उन्होंने बहुत ही अलग अलग जगहों पे पूरा उन्होंने उसका वक्ता के रूप में भी भाग लिया है, और साथ ही ग्रामीण और आदिवासी समुदाय के विकास के साथ छाया ने पारंपरिक कला और कारीगरों को बाजार से जोड़ने की दिशा में भी पहल की है। और नमन नामक पहल का उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी कारीगरों की कला और सांस्कृतिक विरासत को बाजार और उपभोक्ताओं तक पहुंचाया है। छाया नंजप्पा को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मान प्राप्त हुए हैं, जैसे कि प्रियदर्शनी अवार्ड, सार्थक नारी अवार्ड के सम्मान से भी उनको सम्मानित किया गया था।
0: क्या बात है। और हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजा है कि छाया नंजप्पा ने मैसूर कर्नाटक में शहद प्रसंस्करण इकाई की शुरुआत की। वो देश में इस प्रकार का प्लांट स्थापित करने वाली पहली महिला उद्यमी बनी। कंपनी ने केवल शुद्ध शहद से शुरुआत की, लेकिन बाद में किसानों की सहायता के लिए जैम, सॉस, कॉफी, चिया सीड्स जैसे 35 से अधिक प्राकृतिक खाद्य उत्पादों का विस्तार किया। नेक्टर फ्रेश देश की पहली ऐसी कंपनी है जिसने बिना कृत्रिम रंगों और प्रिजर्वेटिव के जैम का निर्माण किया। बहुत सुंदर सी बात है ये।
1: बिल्कुल, और साथ ही छाया नंजप्पा जी ने पहली बार शहद और जैम के लिए पॉलीप्रोपलाइन ब्लिस्टर चिपलेट्स और तकनीक का उपयोग अन्य ब्रांड्स के रूप में किया था अपने। इनके ब्रांड ने भारत में कई विदेशी और 20 साल पुराने स्थापित ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया था। आज इनके उत्पाद भारत के प्रमुख प्रीमियम होटल में भी सप्लाई किए जाते हैं। ये हमारा एक संदेश मिला है हमें
0: श्रोता ने। और आरती हमारे साथी और लिखते हैं कि हर बार जगह बदलने पर लाखों का नुकसान होता था। इसके अलावा उपकरणों की टूट फूट के कारण कुशल कर्मचारी कम हो जाते थे और नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना पड़ता था। इसलिए हमेशा आशावादी रहने वाली छाया कहती हैं, हर बार जब हम नए लोगों को प्रशिक्षण देते हैं तो उनके साथ मेरे संबंध और भी मजबूत होते जाते हैं। बहुत सही बात है, जब हम इस तरह से किसी को भी सिखाना चाहते हैं ना, तो वो एक टीम बन जाती है और टीम के अंदर एक आपसी जो सद्भाव होता है, एकता होती है, अनुशासन होता है और आप सबका सहयोग होता है, तो उससे ही वो काम अच्छा निखर के आता है।
1: बिल्कुल, और इस समय हमें अपने सखियों को अपनी सखाओं के साथ थोड़ा सहयोग करना चाहिए, उन्हें गीत सुनाना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: उड़ जा काले कावा
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती कैसेट लेने।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: तो भी आरती, अब हम लोग किस विषय की ओर आगे बढ़ने वाले हैं?
5: अब हम आगे बढ़ने वाले हैं मुफ्त की ओर।
4: अच्छा, सबसे प्यारा विषय लगता है तुम्हारा
5: मुफ्त की ओर। कई बार होता है ना कि हम लोग कभी कभी लालच में भी जाते हैं। अच्छा, सेल लगी है, अच्छा मुफ्त मिल रहा है सामान, चलो चलो ले लेते हैं, कुछ चीजें अच्छी मिल जाएंगी। तो ये जो लालच होता है ना हमारा, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है।
4: ओवर बजट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं और हम लेते चले जाते हैं सामान, ये नहीं सोचते कि हमारे घर में स्टोर जमा हो जाएगा, अलमारी भर जाएगी, है ना।
5: इससे बस घर भी तो घर में भी सब सामान इतना ज्यादा जमा हो जाता है ना, जिसको इसका प्रयोग नहीं, हमारे पास जब उसका हमें उपयोग नहीं करना है तो हम जबरदस्ती में उसको भरते ही तो हैं।
4: बिल्कुल।
5: और दूसरी चीज है, कभी कभी खाने में जब हम ये काम करते हैं ना कि इसके साथ में ये मुफ्त है या ये हम इतना खा सकते हैं, ये थाली मुफ्त है या बड़ी थाली लेंगे तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे।
4: और कई बार क्या होता है कि हम उसके चक्कर में ज्यादा ऑर्डर दे देते हैं, फिर अंत में होता है कि भाई इसको पैक कर दीजिए, हम घर ले जाएंगे, तो ये सारी चीजें भी होती है। तो मुफ्त का लालच जो है वो हर जगह अप्लाई नहीं करना चाहिए। और ऐसा ही होता है ना कि मुफ्त मिले तो बुरा क्या है, यही सोचकर कई बार हम ऐसी चीजों के पीछे दौड़ने लग जाते हैं जिनकी वास्तव में हमें आवश्यकता भी नहीं होती है। और मुफ्त शब्द सुनते ही मन में बड़ा उत्साह सा जाग उठता है और हम बिना सोचे समझे उस वस्तु या अवसर को पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही मुफ्त का लालच कई बार नुकसान का कारण बन जाता है।
5: बिल्कुल। बाजार में जो आकर्षक ऑफर रहते हैं, फ्री गिफ्ट्स रहते हैं, एक के साथ एक मुफ्त जैसी योजनाएं रहती हैं, वो बहुत ज्यादा लुभावनी लगती हैं और कई बार हम जरूरत से ज्यादा खरीदारी कर लेते हैं, और क्योंकि कुछ मुफ्त मिल रहा होता है साथ में हमें, और बाद में पता चलता है कि जिस चीज को पाने के लिए इतना खर्च किया उसकी हमें आवश्यकता ही नहीं थी। और आजकल तो इंटरनेट की दुनिया में भी मुफ्त के लालच से सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि इस समय नकली इनाम, आकर्षक ऑफर और संदिग्ध संदेश लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए किसी भी मुफ्त चीज के पीछे भागने से पहले उसकी सच्चाई और अपनी आवश्यकता को समझना चाहिए।
4: बिल्कुल। और कई बार हम कहीं दुकान पर लेने जाते हैं आरती, तो वहां पर एक दिखाएंगे कि आप स्क्रैच कार्ड है, आप इसको स्कैन कर लीजिए, स्क्रैच कर दीजिए तो आपको ये चीजें मिलेंगी। तो भाई वो चीज कभी ना करें, लालच में ना पड़े। और कहा भी गया है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती।
5: बिल्कुल।
4: और हर मुफ्त मिलने वाली वस्तु वास्तव में लाभदायक नहीं होती। समझदारी इसी में है कि हम लालच के बजाय विवेक से निर्णय लें, क्योंकि कई बार मुफ्त का लालच हमें इतना महंगा पड़ जाता है आरती कि बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। और जो चीज बिना सोचे समझे मुफ्त में मिल रही हो उसके पीछे छिपी कीमत को पहचान

0: किसी भी फालतू चीज को बेचा जा सकता है। ग्राहक को लगता है कि उसने पैसे बचा लिए हैं, जबकि असल में वो अपनी जेब और जेब को वो ढीला कर चुका होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि घर में बहुत सारे मान लो तवे रखे हैं, लेकिन फिर भी हम गए नहीं, हमें तो कुछ दूसरी ब्रांड का चाहिए, वो ले आए, तो बेचारे दो तवे जो ऑलरेडी आपके उसमें रैक में रखे थे, वो अफसोस मना रहे हैं कि कब मुझे चढ़ाओगे, कब मुझे गर्म करोगे।
1: उनका तो मौका ही नहीं पाता,
0: मौका ही नहीं मिलता। इसलिए कहा जाता है कि घर में जितनी चीजें हैं, अगर एक है तो उसकी बड़ी कद्र होगी, बहुत ज्यादा चीजें होती तो किसी ना किसी की तो बेकदरी हो ही जाती है।
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: और हमारे एक साथी हैं जो कहते हैं कि मुफ्त का लालच इंसानी फितरत का एक ऐसा कमजोर पहलू है जिस पर दुनिया का पूरा बाजार टिका हुआ है। ये विषय आज के उपभोक्तावादी समाज का कड़वा सच दिखाता है, जिसे बेहद हल्के फुल्के और हास्यास्पद शैली में आप कह सकते हैं कि जैसे कि एक के साथ एक, मुफ्त या मुफ्त डिलीवरी जैसे शब्द इंसानी दिमाग पर किसी जादू की तरह काम करते हैं। और इसीलिए कहा गया कि मुफ्त का शब्द सुनते ही इंसान की तार्किक बुद्धि काम करना बंद कर देती, क्योंकि जहां हमने सुना मुफ्त है बस फिर कुछ सोचते नहीं है।
0: हम जो महिलाएं ना, माफ कीजिएगा, हमने अपने को भी शामिल किया, हम लोग मुफ्त के चक्कर में चले जाते हैं कि भाई वो साड़ी वहां पे एक के साथ एक मिल रही है, ले लेते हैं। या कुछ भी कान की चीज हुई, झुमका शुमका चूड़ी कंगन, ऐसी चीजें पे हम लोग बिल्कुल आकर्षित हो जाते हैं, यानी चमक दमक में बस
1: खो जाते हैं।
0: फिलहाल तो हम खोते नहीं है, हम सुनते हैं एक गीत।

0: तो भाई आरती देखो, मुंह में पानी आना, अब सोचो अगर हमने कोई नाम ले लिए तो तुम्हारे मुंह में क्या पानी आएगा क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेरे तो तुरंत आ जाता है जहाँ समोसे की बात चलती है।
0: समोसा तो छोड़ो, इमली कैथा बेर कमरक
1: बस करो
0: चूरन पानी के बताशे, तुम्हारे तो पानी आ गया, मुझे तो सामने दिख रहा है, लेकिन हमारे जो साथी हैं सखियां हैं तो वो बताएं कि ये सब चीज जो मैंने नाम लिया है, सबने आसपास देखी भी है तो खाई भी है ना अपने स्कूल टाइम पे कॉलेज टाइम पे, तो किसके किसके मुंह में पानी आया ये बताएं, है ना? और हमारे साथी लिखते हैं, मुंह में पानी आना हिंदी साहित्य में मुहावरों का एक विशेष स्थान है, ये हमारी भाषा को सुंदर सजीव और असरदार बनाते हैं। ऐसा ही एक बेहद लोकप्रिय और मजेदार मुहावरा है मुंह में पानी आना, और इस मुहावरे का सीधा संबंध हमारी जीभ स्वाद और मन की इच्छा से है। और किसी भी पार्टी समारोह में शादी ब्याह में जाते हैं या फिर वो जमाना याद आता है पत्तल पे जो खाना परोसा जाता था पंगत में हम बैठते थे, तो वहां पर सब चीजें देख के तो मुंह में पानी आता था, रायता आ गया या रसगुल्ला आ गया तो फिर पूछो मत, है ना? तो चलो आगे हमारे साथी क्या लिखते हैं।
1: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि इस मुहावरे का अर्थ है किसी स्वादिष्ट चीज को देखकर या उसके बारे में सोचकर मन ललचा जाना। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हम अपनी मनपसंद खाने की चीज को देखते हैं तो हमारे दिमाग को संदेश मिलता है और मुंह में लार बनने लगती है। इसी स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया को भाषा में एक खूबसूरत मुहावरे का रूप दिया गया है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इस मुहावरे का प्रयोग अक्सर करते हैं।
0: बिल्कुल, देखते हैं
1: आपके समाज चीज को देखिए, इतना अच्छा आपने रेसिपी बनाई है कि एकदम मुंह में पानी आ गया नहीं?
0: या बगल वाला कुछ बना रहा हो, उसकी महक दूसरे के उसमें घुस जाए घर में, उसकी नाक में वो सुगंध लेके, भाभी जी आपने बहुत अच्छा बनाया था, मुझे तो लग रहा था कि बस खाने को मिल जाए, मेरे तो मुंह में पानी आ गया था, ऐसी बातें भी होती है। और हमारे साथ ही लिखते हैं, मुंह में पानी आना मुहावरा हमारी सहज मानवीय प्रवृत्तियों को दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, अच्छी चीजों को देखकर उसका मन मचल ही जाता है, और ये मुहावरा हमारी आम बोलचाल को सरल रोचक और जीवंत भी बनाता है।
1: बिल्कुल। और एक और साथी है जो लिखते हैं कि ये हिंदी भाषा का बहुत ही अच्छा मुहावरा है और इसका संबंध हमारे खाने पीने की इच्छाओं से है, और साथ ही इसके अभी इन्होंने पूरी लिखा हुआ चीजें लिखी हुई है कि किसी भी चीज के बारे में हम देखते हैं या सोचते हैं, जैसे कि गोलगप्पे हो गए, मिठाई या अचार, इनको देख के हमारा जो दिमाग है वो प्रतिक्रिया करता है और तुरंत हमारे मुंह में पानी आ जाता है।
0: भाई देखो, ये चाट पकौड़े ये सब जब जाते हैं ना मेले ठेले में जिसे कहते हैं बाजार में, तो ये सब चीजें देख के तो बिल्कुल पानी आना स्वाभाविक ही होता है। और मुंह में पानी आना ये मुहावरा लालच या इच्छा जैसी अमूर्त भावनाओं को एक शारीरिक क्रिया के माध्यम से बेहद सरलता से व्यक्त करता है। इसका प्रयोग केवल भोजन तक सीमित नहीं है, किसी भी आकर्षक वस्तु धन या अवसर को देकर पैदा होने वाले लालच के लिए इसका खुलकर प्रयोग होता है। सरल शब्दों के कारण ये आम बोलचाल से लेकर साहित्यिक रचनाओं तक में समान रूप से बिल्कुल फिट बैठता है। और हम सोचते हैं यहाँ पर हम लोग एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे घर में बस हमारे बड़े भाई हैं जिनके मुंह में गोल गप्पे देखकर पानी आ जाता है. गोल गप्पे देखकर फिर वो नहीं रखेंगे, मतलब नहीं रखेंगे, अब 80 साल के हो गए हैं फिर भी नहीं मानते, मतलब रुकते नहीं होंगे,
1: हाँ.
0: उनको ऐसा लगता है ना.
1: एक और साथी जो कहते हैं कि मुंह में पानी आना इस मुहावरे का अर्थ है जीभ ललचाना या किसी चीज को खाने की तीव्र इच्छा होना. अक्सर हम सबके मुंह में कुछ ना कुछ देखकर तो पानी आ ही जाता है. और मेरे लिए वो क्या है वो मैं बताती हूँ. मेरे लिए वो है घर का चावल दाल और चोखा, जिसको देखकर मुंह में पानी आ जाता है. बहुत सिंपल खाना है पर मुझे बहुत पसंद है. कह सकते हैं कि ये मुहावरा हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग होता है जब हम अपने किसी मनपसंद खाने की चीज को देखते हैं और हमारे मुंह में पानी आ जाता है. वाक्य प्रयोग मतलब अगर जब भी हम बारिश का मौसम हो तो क्या होता है चाय और पकौड़े की एकदम से लगता है ना याद आ जाती है, तो पकौड़ों की जब याद आती है या खुशबू आ रही होती है हमारे एकदम तो एकदम मुंह में पानी आ जाता है ना.
0: हाँ बिल्कुल. और एक साथी लिखते हैं कि भाई मुझे तो खाने पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है पर मिठाई देखकर मुंह में पानी जरूर आ जाता है. अच्छा कह भी रहे हैं खाने पीने में इंटरेस्ट है लेकिन मिठाई देख के हो जाता है पानी, ये तो भाई आपने कमाल की बात करी. और इसी तरह लिखते हैं कि बचपन में मैं कच्ची इमली और कच्ची बेरी जब भी देखता था मेरे मुंह में पानी आ जाता था, खूब चटकारे लेकर खाता था. मैं अभी सखी सहेली प्रोग्राम में ये कमेंट लिख रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, अभी भी मेरे मुंह में पानी आ गया और कच्ची इमली और कच्ची कैरी खाना कम हो गया, नहीं तो ज्यादा खाने से दांत खट्टे हो जाते हैं. क्या बात है.
1: और एक हमारे और श्रोता जो लिखते हैं कि मेरे पापा जब भी अपने हाथों से घेवर बनाते थे तो मेरे मुंह में पानी आ जाता था.
0: तो चलो भाई इसी के साथ साथ हम लोग एक गीत की ओर बढ़ चलते हैं.

0: हूँ। तो आरती देखो, बातें करते करते प्रोग्राम का समय कैसे बीत चला पता ही नहीं चला। तो लेते हैं सबसे विदा सभी को मंजरी वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में आज के सितारे हैं जाने माने अभिनेता जमील खान। इनकी वेब सीरीज गुल्लक तो आपने देखी होगी, और भी बहुत सारी फिल्में हैं।

0: आइए सुनते हैं अभिनेता जमील खान से अनुराधा उपाध्याय की ये बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक ऐसे कलाकार को जिन्होंने रंगमंच की सादगी से अपना सफर शुरू किया, सिनेमा और स्क्रीन पर अपने किरदारों से जाने गए और एक बहुत ही खूबसूरत शो गुल्लक के जरिए लाखों दिलों का हिस्सा बने हैं। हम बात कर रहे हैं गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान जी की। जमील खान जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, मुझे आमंत्रित करने का। ये मेरे लिए बाइसे फख्र चीज है कि मैं विविध भारती के लिए आज यहाँ मौजूद हूँ और दिल खोल के बातें करूँगा।
1: बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं, दिल खोल के बातें कीजिए, प्यार भरी बातें कीजिए। तो शुरुआत हम चाहेंगे, जैसे हम विविध भारती के परिसर में आए, बहुत सारी चीजें आपने देखी, कुछ रेडियो
2: मेरी यादें हैं उसकी बात है। तो देखिए, मैं बोर्डिंग स्कूल निकल गया था तीसरी क्लास से ही
1: जी,
2: तो उतना ज्यादा रेडियो से नाता नहीं रहा, लेकिन जब मैं छुट्टियों में आता था तो मुझे याद है हमारे घर में, मैं सबसे छोटा हूँ भाइयों में, लेकिन जो म्यूजिक बजता था वो रेडियो पर बजता था आमतौर पे, या कैसेट प्लेयर्स होते थे उस जमाने में, तो वो भाई बहन वो चलाते थे। और रेडियो मुझे याद आता है कि अम्मी हमारी जो है ना वो गुनगुनाती थी हल्के हल्के,
1: कुछ भी काम करते हुए, वो यादें हमेशा बरकरार रहती हैं।
2: तो वो एक बड़ी मीठी याद है कि अम्मी काम कर रही हैं और कुछ गुनगुना रही हैं, पीछे कहीं रेडियो बज रहा है और साथ साथ वो भी गुनगुना रही हैं। तो वो अम्मी से बहुत ज्यादा रिश्ता जुड़ा है रेडियो और गानों का, तो वो मेरी बहुत मीठी याद है बचपन की। और अब जो है वो गाड़ी में खास तौर से मैं रेडियो बहुत सुनता हूँ, और उसके अलावा घर पे कभी कदार चलता है। आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं जिस पर आप गाने सुनते हैं
1: जी।
2: लेकिन जो एक
1: सफर का साथी,
2: हाँ सफर का साथी जो है, और एक क्लासिकल जो गाने जो हैं जिनसे कि बहुत गहरा मरासिम है, वो विविध भारती जैसे चैनलों पर मिलता है। और पुराने गाने हों चाहे नए गाने हों, खासतौर से पुराने गाने जो नॉस्टैल्जिया क्रिएट करते हैं, वो ऐसे चैनलों पर ही सुनने को मिलता है, और मैं सदा शुक्रगुजार रहूंगा।
1: नॉस्टैल्जिया की बात की तो आपके बचपन से शुरुआत करते हैं, आपने कहा ही बहुत कम उम्र में आप हॉस्टल चले गए थे, घर का परिवेश कैसा था, और स्कूल के दौरान या उस वक्त हॉस्टल की यादें तो खैर खूबसूरत रहती है, हमेशा याद रहती है, बट एक्टिंग का क्या तभी से आपने सोच लिया था अभिनय में जाना है, या तब तक किस तरह से आपका झुकाव इस तरफ हुआ, या घर से कैसा योगदान मिला?
2: मेरे पूरे खानदान में किसी का किसी भी आर्ट फॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं रहा है।
1: अच्छा,
2: दूर दूर तक बिजनेस व्यवसाय जो है वो रहा है। हालांकि मेरे नाना और दादा दोनों इंडियन पुलिस सर्विस में रहे हैं, और अगर सर्विस क्लास जो रहे हैं वो पुलिस सर्विस से ताल्लुक रहा है। मेरे दादा का इंतकाल हो गया काफी जल्दी, वो जब स्कूल में थे तो उन्होंने पढ़ाई भी कर रहे थे और नौकरी शुरू कर दी
1: जी।
2: नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने ये कालीनों का बिजनेस शुरू किया, पहले ट्रेडिंग से शुरू की
1: जी,
2: और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट करने लगे। और एक्सपोर्ट करते करते ऊपर वाले का बड़ा करम रहा कि भदोही के टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर्स में उनका शुमार होने लगा।
1: क्या बात है।
2: अब मैं सुनता हूँ, ये सब मेरे बचपन की बात है, जो ये किस्से कहानियां फिर बाद में सुनता हूँ कि क्या जलवे थे मेरे फादर के
1: जी,
2: कि मुझे एक मेरे फादर भी 2009 में गुजरे, लेकिन उनकी मैयत में कब्रिस्तान हमारा अपना है, तो घर से कब्रिस्तान तक जो मैयत है ऐसे ही कांधे कांधे ही गई, चल नहीं पाई।
1: ये वो इज्जत है जो कमाई जाती है, वो प्यार है जो कमाया जाता है।
2: तो वहां से शुरुआत स्कूल से हुई मेरी, ड्रामे वगैरह करता था स्कूल में, और इस तरफ जाने का कोई इरादा एज सच नहीं था, प्रोफेशन बनाने का इरादा तो बिल्कुल ही नहीं था। ये था कि भाई शौकिया तौर पे कभी थिएटर वेटर कर लिया करेंगे, और ऐसे ही मेरे घर वाले भी समझते थे कि भाई चलो शौक है, कर रहा है, अच्छी बात है, किसी ने कभी रोका टोका नहीं, खासतौर से मेरे घर वालों ने तो कभी कोई तंज भी नहीं कसा
1: जी।
2: तो वहां से शुरुआत हुई, और वहां से करते करते कॉलेज में आए, कॉलेज में भी किया, और मुंबई यूनिवर्सिटी में जब आया तो यहां भी किया। तो शुरुआत में तो मुझे लगता है कि इस लाइन में आने का बिल्कुल इरादा नहीं था। वो जब मैंने IIT का एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो JEE का होता है, उसमें जब नहीं हुआ मेरा, तब मैंने पलटी मारी। मैंने कहा अब हो गई पढ़ाई साइंसेस वगैरह की, अब जो मजा आता है जिसमें वो करते हैं। तब इस तरफ झुकाव हुआ और इसी मकसद से ही मैं बॉम्बे आया। बीए कंप्लीट करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया, शेरवुड कॉलेज नैनीताल से मैंने स्कूलिंग की 3 से 12 तक
1: जी,
2: और फिर यह एएमयू से ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन बॉम्बे से किया मैंने
1: जी।
2: तो बॉम्बे आने का मकसद थिएटर करना था।
1: थिएटर था, और थिएटर जैसे कहते हैं ना कि जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो वो ज़रूर मिलती है, तो मुझे लगता है आपने जैसे जिक्र किया कि आप नसीरुद्दीन साहब जो है उनके बारे में पढ़ते थे, उनसे कभी मिलने की तमन्ना थी, और यहाँ पर शायद वही ख्वाब खींच कर लेकर आया।
2: बिल्कुल बिल्कुल, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि उनका साथ मिला मुझे और शुरुआती दौर में ही मिल गया मुझे, वरना उन तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैंने भी शुरुआत उनके साथ वहीं से की कि छोटे मोटे रोल क्राउड व्राउड में ऐसे वैसे करते करते फिर उसके बाद बड़े रोल मिलना शुरू हुए
1: जी।
2: और मेरा सबसे अहम काम जो उनके साथ रहा है वो 2 प्रोडक्शन जो मुझे खास तौर पे बहुत अच्छे लगते हैं वो है मंटो इस्मत हाजिर हैं, और उसके बाद एक था कथा कोलाज।
1: कथा कोलाज के बारे में काफी सुना है
2: जी। तो नसीर भाई तो एक लिहाज से मेरे उस्ताद रहे हैं और काफ़ी कुछ सीखा है उनसे और अभी भी सीख रहे हैं। ज़्यादा उसके अंदर न जाते हुए मैं कहूँगा कि इंसान के तौर पे और नज़रिए के तौर पे उनके साथ अभी थिएटर तो नहीं करता मैं, 2009 के बाद छोड़ दिया था मैंने, लेकिन काफ़ी कुछ मुतासर करने वाली शख्सियत है वो।
1: बिल्कुल
2: जी।
1: यहाँ पर हम अपने सुनने वालों को आपकी पसंद का कोई गीत सुनवाना चाहते हैं, तो आप बताइए आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनवाएं।
2: अगर बहुत पुराने दौर में जाएं तो मेरे ख्याल में मुगले आजम का वो गीत प्यार किया तो डरना
1: क्या, प्यार किया तो डरना क्या, आइकॉनिक गीत
2: जी।
1: बिल्कुल, सुनवाते हैं वो गीत।

0: बात करते लेट 90s की, जब आप मुंबई में आ चुके थे, तो उसी दौरान आप हम दिल दे चुके सनम, वो आपकी पहली फिल्म थी मेरे ख्याल से, और एड की दुनिया, ये दोनों कैसे चली? पहले क्या शुरुआत हुई और फिल्म में कैसे जाना हुआ?
1: देखिए, जब थिएटर कर रहा था तो इस बात का एहसास हो गया कि सिर्फ थिएटर से गुजारा तो नहीं हो पाएगा.
0: बिल्कुल.
1: और ये रियलिटी चेक मुझे यहाँ आने के बाद हुआ कि भाई ये गुजारा नहीं हो पाएगा, इससे तो कुछ और भी सोचना पड़ेगा. तो जो भी चीज़ें इससे जुड़ी हुई थी उसकी तरफ नज़र किया मैंने. जैसे कि मैं डबिंग्स करता था अंग्रेजी फिल्में या जो फॉरेन लैंग्वेज फिल्में हों या अदर लैंग्वेजेस टू हिंदी
0: जी.
1: और मेरी पकड़ हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों पर खासी पकड़ है, तो वो आसानी मुझे हो गई डबिंग करने में. और डबिंग के साथ साथ एड्स में भी वॉइस देने की, वॉइस ओवर्स जो होते हैं, तो वो शुरू किया मैंने कमाई के नज़रिए से. और वो यही आता था तो मैंने कहा कि इसी में ही जुड़े हुई चीज़ें जो हैं उसमें से ही कुछ आमदनी का जरिया देखा जाए. और उसके अलावा फिर थिएटर करता था मैं, और लोगों से काम मांगना आता नहीं था. वो शायद अपब्रिंगिंग कह लीजिए, तरबियत जो है अपनी, या आई डोंट, मैं ईगो तो नहीं कहूँगा उसको, लेकिन एक हिचक आज तक है मुझे.
0: आज भी नहीं है?
1: आज भी वो हिचक है मेरे अंदर की.
0: अच्छा.
1: लोगों से काम मांगने का
0: जी.
1: इशारतन बोल देता हूँ लोगों से कि भाई आपके साथ काम जरूर करना चाहूंगा मैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, कि आपका काम पसंद करता हूँ और आपके साथ जरूर काम करना चाहूंगा मैं. बुला लिया लोगों ने तो अच्छी बात है, भूल गए तो भूल गए. खैर, तो थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हों, चाहे वो एड्स हों, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो, तो वो सब थिएटर में शोज करते वक्त लोगों ने मुझे वहां देखा, समझा, बुलाया और काम से काम मिलने लगा. तो मैं कहूंगा कि थिएटर ही वो बुनियादी चीज है जिससे मेरे लिए और रास्ते खुले.
0: बिल्कुल.
1: तो मैं तकरीबन पूरा जो श्रेय है वो थिएटर को दूंगा अपने करियर.
0: वो एक नींव है
1: जी,
0: जहां से सब चीजें शुरुआत होती
1: जी,
0: है
1: जी,
0: और मजबूत पकड़ लिए हुए हैं
1: जी. तो हाँ, वही एक शुरुआत और बहुत सारे ब्रांच आउट जो हुए, जो आमदनी के जरिए बने, वो सब थिएटर के जरिए बने. लोगों ने खुद ही मुझसे, इनफैक्ट मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एड्स में वॉइसेस दे पाऊंगा, तो लोगों ने कहा कि भाई आप करिए, आपकी जबान अच्छी है, आप उच्चारण जो है आपका अच्छा है, क्लियर डायलॉग्स हैं आपके
0: जी,
1: तो करना चाहिए थिएटर में. उन्होंने देखा सुना मुझे, तो एज एन एक्टर बुलाया, एज ए वॉइस बुलाया, तो वैसे ही शुरू. और फिल्मों में भी उसी से ही रास्ते खुले.
0: हाँ. अभी आपकी पसंद का दूसरा गाना जो आप सुनवाना चाहते हैं श्रोताओं को?
1: इजाजत नाम की एक फिल्म है जिसमें मेरे ख्याल में सारे ही गाने बहुत प्यारे हैं, लेकिन जो मेरा सबसे पसंदीदा है वो है मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है.
0: क्या बात है, क्या पसंद है. सुनवाते हैं गीत
1: जी.

0: अभी हम बात करते हैं फिल्मों की एक लंबी फहरिस्त है
1: जी,
0: बेबी, टाइगर जिंदा है और चलते चलते, इसके अलावा गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात तो होनी जरूरी है
1: जी।
0: तो ये जो एक लंबी फहरिस्त है, अब हर एक फिल्म का तो हम अभी बात नहीं कर पाएंगे
1: जी।
0: लेकिन दो अलग अलग छोर लेती हूँ मैं
1: जी।
0: एक तो जहां से शुरुआत हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म से
1: जी।
0: हम दिल दे चुके
1: रामलीला भी उनके साथ,
0: रामलीला भी उनके साथ हुई और दूसरा गैंग्स ऑफ वासेपुर
1: जी,
0: बिल्कुल अलग किरदार और एक कलाकार के लिए अलग अलग किरदार करना आसान है और वो एक अच्छी बात है, वो तो है ही, लेकिन दो अलग अलग तरह के डायरेक्टर्स, दोनों का काम करने का तरीका एकदम अलग, तो क्या डिफरेंस है और कुछ दिलचस्प किस्से दोनों के सेट से, कुछ ऐसा जो याद रह जाए, कुछ ऐसा आप साझा करना चाहेंगे?
1: देखिए, संजय भंसाली जो है वो बहुत ही बारीकी में घुसने वाले डायरेक्टर हैं और उनका विजन बहुत बड़ा और बहुत रिच होता है, बहुत ग्लॉसी, बहुत ही ग्लैमरस। गुर्बत भी जो है ना, गरीबी जो है वो भी उनके फिल्मों में बड़ी स्टाइलिश दिखेगी।
0: बिल्कुल जी, तो लार्जर देन लाइफ,
1: लार्जर देन लाइफ
0: जी।
1: तो वो आदमी पिक्चर फ्रेम्स बनाता है, खूबसूरती तो भर भर के होती है उनकी फिल्मों में
0: भी।
1: और उनका तरीका जो है वो वही उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, जिस तरीका का कैनवस वो पेंट करते हैं वो हर चीज में उनका दखल होता है। उनके साथ काम किया हुआ आदमी उनके साथ जब काम करता है तो वो अलग दिखता है और किसी और के साथ काम करता है तो वो अलग दिखता है। उसकी वजह यह है कि वो डायरेक्टर का कंट्रीब्यूशन उनका हर चीज में होता है और उनका दखल इस हद तक होता है कि भाई वो कोई चीज बिगड़ने देना नहीं चाहते। वो म्यूजिक कंपोज भी करते हैं अब तो,
0: बिल्कुल,
1: और बाकी तमाम चीजें तो हैं ही, तो उनका जो अंदाज है वो काफी नपातुला है और उनको जो चाहिए वो ढूंढते हैं और वो पा लेते हैं। उसको पाने में चाहे वो दो टेक लगें चाहे 200 टेक लगें,
0: अच्छा,
1: जब तक वो पाते नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ते
0: जी।
1: और इसलिए वो अच्छे एक्टर भी ढूंढते हैं
0: जी।
1: कि जो उनको वो चीज दे सके और जो वो सोच रहे हैं या देख रहे हैं या विजुलाइज कर रहे हैं उसको वो एक्टर उसी तरीके से दे सके। और अपने एक्टरों से बेनतहा मोहब्बत करते हैं वो। वो बात अलग है कि अगर आप एक्टर अच्छे नहीं है तो जाहिर है फिर डांट भी पड़ेगी आपको, जायज भी है।
0: बिल्कुल।
1: और अनुराग का जहां तक ताल्लुक है, अनुराग बहुत ही फ्री फ्लोइंग डायरेक्टर है। अनुराग कोई चीज डिसाइड नहीं करता है, वो एक्टर को खुली छूट देता है और वो रियलिज्म में ज्यादा घुसता है। तो अनुराग उस लिहाज से अच्छा है कि वहां पर भी आपको अच्छे एक्टर की जरूरत पड़ेगी।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि एक्टर अगर इम्प्रोवाइज नहीं कर पा रहा है तो फिर अनुराग के लिए वो बेमानी है।
0: स्पॉन्टेनियस,
1: हाँ,
0: स्पॉन्टेनियस
1: बिल्कुल। और किरदार बगैर छोड़े हुए या बगैर उलझे हुए कुछ

0: अच्छी अच्छी मैजिकल चीजें भी मिल जाती हैं उसमें। कभी कभी अच्छी चीजें नहीं भी होती तो अगला टेक कर लेता, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन तो फर्क बेसिक यही है कि वो बहुत ही रियल रस्टिक अनुराग का फील होता है और बहुत ही इम्प्रोवाइजेशनल तरीका है उसका काम करने का।
1: कोई चैलेंजिंग रोल ऐसा जिसके लिए तैयारी तो खैर हर रोल हर कैरेक्टर के लिए चाहिए, पर कोई ऐसा चैलेंजिंग रोल कैरेक्टर जिसके बारे में आप बात करना चाहें जिसको बहुत तैयारी की जरूरत पड़ी और इस तरह का कुछ अनुभव?
0: फिल्मों में मुझे इतनी दुश्वारी पेश नहीं आई कभी भी।
1: श्रीकांत में आपने काम किया?
0: श्रीकांत, हाँ श्रीकांत में कह सकता हूँ कि थोड़ा सा टफ था
1: जी,
0: क्योंकि एक तो उम्र ज्यादा और क्या कहते हैं ऐसी शख्सियत
1: जी
0: जो बहुत ही अजीम बहुत ही महान शख्सियत और अब भी सबने देखा है, सुना है देखा है,
1: बिल्कुल,
0: तो उसको उतारना थोड़ा चैलेंजिंग था और मुश्किल आई पेश। लेकिन उसमें जो डायरेक्टर थे तुषार, उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए उस बात की।
1: अच्छा,
0: उन्होंने मुझे कंफर्टेबल कर, मैंने कहा यार भाई ये बड़ा मुश्किल काम है, एक तो साउथ इंडियन और अच्छी बात ये हुई कि वो मुझे उसमें अंग्रेजी भी, क्योंकि वो हिंदी इतनी अच्छी तरह जानते नहीं थे
1: बिल्कुल,
0: तो अंग्रेजी का इस्तेमाल भी था, तो उस तरीके से थोड़ा सा बच गया। और बहुत ज्यादा लंबा रोल नहीं था, मैंने कहा कि भाई ठीक है चलो ये मैनेज हो जाएगा
1: जी।
0: लेकिन हाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि वो थोड़ा चैलेंजिंग था और थोड़ा मुझे डराया भी उसने।
1: अच्छा, ज्यादा तैयारी के साथ उतरे आप।
0: हाँ।
1: आपकी पसंद का कौन सा गाना अब हम सुनवाना चाहेंगे?
0: चिंगारी कोई भड़के।
1: क्या बात है, आपकी पसंद। बिल्कुल सुनवाते हैं गाना।

0: आज अब बातचीत के दौरान जब बात गुल्लक की ना हो तो भाई इनकम्प्लीट है, बिल्कुल अधूरी है। गुल्लक जिससे बहुत ज्यादा प्यार मिला, संतोष मिश्रा का किरदार, अब मैं पूछना चाहूंगी कि कितना संतोष मिला आपको वो किरदार करके या वो सीरीज करके, कैसा लगता है, कैसा अनुभव है?
1: बहुत ज्यादा संतोष मिलता है मुझे संतोष मिश्रा का किरदार अदा करके।
0: कितना रिलेट कर पाते हैं, कितना उसके नजदीक हैं, तैयारी कैसी है, सेट का माहौल कैसा, क्योंकि हमने तो बहुत मजे से देखी है और आगे भी जो आएंगे उसके लिए भी हम इंतजार कर रहे हैं, उसकी जो एपिसोड्स आएंगे।
1: जी, दो चीजें देखिए उसमें, शुरू में मेहनत ज्यादा करने की जरूरत पड़ी, अब तो वो हिस्सा हो गया है किरदार का,
0: घर घर का हिस्सा हो गया,
1: घर घर का हिस्सा हो गया, और मेरे लिए भी एज ए कैरेक्टर अब वो आसान हो गया क्योंकि 5 सीजन कर लिए हम लोगों ने। लेकिन शुरुआती दौर पे जो दुश्वारी पेश आई या जो चैलेंजिंग लगा मुझे उसमें, वो एक तो थी उसकी जबान, ये मेरी नॉर्मल जबान है,
0: बिल्कुल
1: है ना, बातचीत की जबान, लेकिन उसमें मुझे अपना उच्चारण बिगाड़ना पड़ा, स श ज ज, और मेरे नुक्ते सटीक लगते हैं, मेरी जाती जिंदगी में बिल्कुल सटीक नुक्ते लगते हैं, कहीं गड़बड़ नहीं होती, लेकिन इसमें वो नुक्ते हटाने थे तो वो दुश्वारी आती थी हमेशा शुरू शुरू में। और उसके अलावा मिडिल क्लास की जिंदगी देखी है मैंने अपने इर्द गिर्द, लेकिन उसको महसूस नहीं किया था। एक लिहाज से कहूँ कि काफ़ी समृद्ध परिवार से हूँ और किसी तरीके की कोई पैसे की कमी कभी मेरे माँ बाप ने नहीं रखी
0: जी,
1: लेकिन तरबियत जो थी ना वो ऐसी थी कि पैसे की अहमियत को समझना, वो उसका एहसास कैसे आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आ गया था वो। तो वो एहसास जब आदमी ऊपर होता है ना, जब बहुत कुछ होता है और फिर उसके बाद जब नीचे आता है, तब समझ में आता है कि भाई एक्चुअल जिंदगी क्या है,
0: क्या है, बिल्कुल
1: क्या
0: चुनौतियां हैं,
1: क्या चुनौतियां हैं। तो उतार में वो उसका एहसास हुआ, खास तौर पे जब मैं खुद अपने पैरों पर आया, जब घर से पैसे लेने बंद किए, तब एक एक पाई की अहमियत समझ में आई।
0: बिल्कुल,
1: तो इसलिए जो शुरुआती दौर मेरा बॉम्बे का रहा है, जो मुश्किल दिन रहे हैं, वो एहसास वो इमोशन वहाँ से आता है। और किरदार के अंदर कैसे क्या डाला गया, वो बहुत सारे मुख्तलिफ रिश्तेदार हों या दोस्तों के माँ बाप हों या मेरे अपने माँ बाप हों, वहाँ से उठाई हुई चीज़ें हैं। और एहसास तो जो है वो, जब आप एज एन एक्टर, मुझे लगता है कि अगर आप हसास नहीं है तो अच्छे एक्टर मेरे ख्याल में नहीं हो पाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक बहुत ही जरूरी बेसिक चीज है।
1: जी जी, और आंख कान खुले रखना ताकि जो कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है उसको देखते रहें आप और उसको जज्ब करते रहें, अपने अंदर बिठाते रहें, वो जखीरा बनता है आपका, कब क्या चीज की जरूरत पड़ जाएगी आप वहां से निकाल के अपने किरदार में डालते हैं।
0: और यहाँ पर मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि आपने पिता का किरदार निभाया है, तो आपके पिता के साथ आपका कुछ ऐसे अनुभव या कुछ ऐसा साझा करना, एक अलग तरह का रिश्ता, कुछ ऐसी इमोशनल बातें जो आप शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, उनसे क्या सीख मिली है? क्योंकि ये जो कहानी है, धारावाहिक है गुल्लक, ये भी एक सीख देता है, तो ऐसी कोई सीख जो आप देना चाहते हैं या फिर जो आपको अपने पिता से मिली है?
1: बहुत ही इमोशनल है क्योंकि मेरे फादर से मेरा बहुत गहरा लगाव है। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगा कि इंसान को कभी अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए। बड़ी छोटी सी बात है, मैं घर गया हुआ था, बॉम्बे आने की तैयारी में था, सामान वामान पैक कर रहा था, तो ट्रेन का टाइम हो गया था, तो अब्बू आए कहने लगे कि अरे जल्दी करो जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। और मेरे, क्योंकि मैं हड़बड़ाहट में था, अम्मी भी थी, पैक करवा रही थी, ये वो ये रख लो वो रख लो अम्मी, तो कुछ मुंह से मेरे ऐसे निकल गया कि अब्बू पगलवाई मत, मैं कुछ भूल जाऊंगा। तो पगलवाई मत, वो जो शब्द था ना,
0: बहुत चीजों का ध्यान रखना चाहिए बात करते वक्त, वो कहीं ना कहीं सिखाता है।
1: तो मैं यही कहूंगा कि इज्जत से पेश आना चाहिए माँ बाप से।

0: बिल्कुल
1: और जितनी मोहब्बत आपको आपके माँ बाप दे सकते हैं उससे ज़्यादा मोहब्बत आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। तो यही सीख है, और मैं यही कहूँगा कि माँ बाप आपकी तरबियत, आपकी करियर, आपके किरदार को बनाते हैं, और अच्छे माँ बाप वही हैं जो अपने बच्चों की ज़रूरत, उनकी एम्बिशंस को सपोर्ट करते हैं और उनका साथ देते हैं हर लिहाज से।
0: बिल्कुल। एक और आपने फिल्मों की बातें की, फिल्म एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी आपने किया, बीनीथ अ सी ऑफ लाइट्स,
1: राइट।
0: उसके बारे में कुछ बताइए। वहाँ का माहौल अलग है, किस तरह से अलग था?
1: अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। देखिए वहाँ पर ये बड़ा इंडिपेंडेंट फिल्म थी एक तरीके से, और जो तरीका है उनका शूट करने का वो बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही प्रिसाइस, जिसमें वेस्टेज ज़्यादा नहीं। मेरे ख्याल में बमुश्किल 25-30 लोगों का यूनिट रहा होगा, और बहुत शांति से, बहुत सुकून से काम हुआ। हर आदमी अब काम से काम रखता था, और वक्त पर पहुंचता था, वक्त से काम होता था, और वक्त पे ख़त्म भी हो जाता था।
0: जी।
1: तो वो एक एक जो प्रोफेशनलिज्म है ना, वो वहाँ पर ज़्यादा दिखी मुझे। तो फ़र्क ये इतना सा है। और बेसिकली परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है।
0: जी। और कोई, अभी हमने थिएटर की बात की, हमने एड्स की बात की, फिल्मों की बात की, और कौन सा रास्ता जहां पर अभी आपको जाना है कि ये भी ट्राई करना है, इस तरफ भी जाना है, और आपके भविष्य के प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बताना चाहें?
1: कोई ऐसा, मतलब थिएटर वापस करना चाहूँगा मैं, कोई कमाल की चीज़ आई मेरे सामने। तो उसके अलावा किरदार बहुत सारे हैं हमारे समाज में भी और हमारी कहानियों में भी, जिनको मैं करना चाहूँगा, जो कि अब गुल्लक से बेहतर फादर तो मुझे नहीं लगता, फादर का रोल मुझे शायद मिल पाएगा।
0: जी
1: अगर कोई लिख पाए उससे बेहतर तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन सिर्फ बाप के रोल तो मुझे नहीं करने हैं कि भाई फलां के बाप है, कर लिए ही। मैं सैकड़ों मना कर चुका हूँ, मना करता रहूँगा उसको।
0: जी
1: लेकिन उससे अलग कलर कुछ हो, कुछ अलग जॉनर के किरदार हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मच्योर लव स्टोरी मैं करना जरूर चाहूँगा। तो हाँ, वो एक डेफिनेटली मेरे बकेट लिस्ट में है।
0: बिल्कुल। हम चाहेंगे कि जो चीज़ की ख्वाहिश आप कर रहे हैं वो ज़रूर आपको मिले। अभी क्या आने वाला है, किसका इंतज़ार हम करें?
1: अभी कुछ एक चीज़ें हैं, कुछ एक फिल्में हैं। सूरज बड़जत्या साहब के साथ एक फिल्म है, उसमें एक गेस्ट अपीयरेंस किया है मैंने, और एक अभी फिल्म जो कर रहा हूँ, जुगाड़ू नाम की एक फिल्म है, वो बावेजा फिल्म्स और टिप्स की है। और अभी बाकी जो वेब शोज़ में से तो कुछ एक तैयार हैं, लेकिन वो कब आएंगी मुझे नहीं मालूम। वो डेट्स अनाउंस होंगे तभी पता चलेगा।
0: जी
1: और कुछ एक इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं जो मैंने की हैं, एक अंग्रेज़ी में भी की है, तो वो हैं दो इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं, एक अंग्रेज़ी फिल्म है इंडिपेंडेंट फिल्म, और बाकी कमर्शियल फिल्म्स भी हैं। और वेब शोज़ में से तो गुल्लक का सीज़न 6 आएगा अगले
0: उसका
1: साल।
0: इंतजार रहेगा
1: हाँ,
0: हमें।
1: वो साल के आखिर में वो शूट करेंगे हम लोग, अभी लिखा जा
0: जी
1: रहा है वो।
0: जी
1: तो यही सब हैं, और उम्मीद करता हूँ कि और अच्छे अच्छे किरदार आएँ। आपकी दुआएं रहीं तो इंशाल्लाह
0: हमें भी इंतजार
1: जरूर
0: रहेगा।
1: जरूर।
0: तो आपका कोई पसंदीदा गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं उस बारे में बताइए।
1: मेरे बचपन में एक गाना मैं ऐसे शौकिया तौर पे बहुत गाया करता था, बच्चन साहब मेरे काफ़ी फेवरेट रहे हैं। तो वो फिल्म मैंने न जाने कितनी बार देखी है, अमर अकबर एंथनी।
0: जी
1: तो उसका अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी।
0: बिल्कुल, सुनवाते हैं गीत।

0: बच्चन साहब की बात निकली है तो एक वाकया मुझे याद आता है कि आप एक ही स्कूल से हैं बच्चन साहब, जहां से पढ़े हैं, उस बारे में कुछ बताइए। उसके बाद आपकी मुलाकात भी हुई है आपकी मुंबई में, तो वो एक इंटरेस्टिंग सा एक किस्सा है।
1: जी, बच्चन साहब शेरवुड कॉलेज नैनीताल से वो भी पढ़े हुए हैं और मैं भी
0: जी।
1: उनसे मुलाकात मेरी चीनी कम नाम की एक फिल्म थी जो मैंने की थी उसमें हुई और बड़ी अच्छी मुलाकात रही। और कमाल की बात है कि वो भूलते नहीं
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद एक ऐड भी किया हमने साथ में और उन्होंने पहचान लिया, जबकि अलग गेटअप में था मैं। और फिर उसके बाद हमने एक फिल्म की थी गणपत, अभी जो आई थी कुछ साल पहले
0: जी,
1: उसमें वो भी थे। तो मुझे लगा कि पता नहीं भूल भाल गए होंगे,

0: के इंसान भी हैं, तो उनसे मिलकर हमेशा अच्छा लगता है।
1: उसके अलावा शूटिंग के दौरान बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हुए होंगे, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का भी एक सीन है जहां पर आप जख्मी भी हो गए थे, एक किस्सा ऐसा कुछ था
0: जी,
1: वो बताना चाहेंगे? तो शूटिंग के दौरान ये जो चुनौतियां आती है
0: जी,
1: कभी कभी मजेदार भी होती है,
0: जी जी
1: उस बारे में कुछ बताइए।
0: हाँ, वो चोट मुझे आई थी, दरअसल एक सीन था जिसमें एक ठेला सा खड़ा हुआ है, वो तीन पहिए के रिक्शे वो होते ना सामान रखने वाले, तो वो एक रखा हुआ था, तो कुछ बात हुई कि भाई इन दोनों रिक्शों के बीच में से निकल के जाना है, तो एक टेक हो गया, फिर उसके बाद वो रिक्शा वहां पर पड़ा हुआ, मैंने कहा यार मैं रिक्शे के ऊपर जाके और वहां से छलांग मार के निकलता हूँ। तो अनुराग ने कहा कि सर देख लीजिए मतलब, तो मैंने कहा हाँ यार करते हैं मजा आएगा, तो एक टेक किया मैंने, तो कहता सर बढ़िया लग रहा है एक और करते हैं, वो लालची डायरेक्टर है ना, उसको चीज अच्छी लगती है तो फिर वो आगे बढ़ता है,
1: एक और
0: हाँ तो सर एक और करते हैं
1: जी,
0: मतलब मुझे ऐसा मजा आ रहा है कुछ एक और करते हैं। तो अगले वाले टेक में वो इधर उधर लोग पीछे पड़े हुए मेरा पीछा करने मारने के लिए, अब क्यों मुझे भी हौसला मिल गया तो मैंने छलांग और ऊंची लगा दी, और जब मैं लैंड किया, मैं चप्पल पहने हुए था, जब लैंड किया तो वो पसीने से पांव थोड़ा सा स्लिप हुआ और
1: फिसल गया
0: और मेरे एंकल जो है उसमें मोच आई तगड़ी, लेकिन मैंने वो शॉट कंप्लीट किया, ऐसा नहीं कि वहां मोच आई तो मैं वहीं बैठ गया, वो शॉट कंप्लीट किया और एक चढ़ान था ऊपर, टीला सा था, उस पर चढ़ के दूसरी तरफ कूदना था और वहां शॉट खत्म था, तो उस टीले पर चढ़ के मैं नीचे छलांग भी मार दी, फिर जब मैं वापस आ रहा था वहां से तो उसने तो देख लिया था शॉट मॉनिटर में, आके मैं जब पूछा उसने कि भाई आई ओके, मैंने कहा उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मैं बैठा नीचे, बैठते बैठते मैं बेहोश हो गया
1: बेहोश हो गए
0: कुछ, मेरे ख्याल एक मिनट के लिए बेहोश रहा हूँगा मैं, फिर होश आया तो करें सर उसने मुझे, फिर उसके बाद लिटाया वटाया तो पानी वानी जो कुछ भी है, फिर वो शॉट दिखाया उसने कि सर देखिए ऐसे हुआ था, ये वो जो आपका पाँव है ऐसे स्लिप हुआ चप्पल से। तो उसके बाद के सीन हमारे कुछ एक, क्योंकि चोट लग गई थी लोगों को शायद पता ना चले, लेकिन एक हल्का सा एक लिम्प है
1: अच्छा।
0: हाँ कुछ कुछ एक सीन में,
1: अब हम देखेंगे फिर से गौर से उसे
0: और कुछ एक सीन में फिर नहीं रखा था मुझे क्योंकि भाई चोट लगी हुई थी
1: जी जी जी
0: तो वो मनोज भाई के साथ जो मोटरसाइकिल पे पीछे बम फेंक रहे हैं वो सब मुझे होना था लेकिन चोट की वजह से वो नहीं कर पाया था। और उसके अलावा एक और किस्सा था जिसमें कि जीप में हम लोग पहलवान का पीछा कर रहे हैं मारने के लिए,
1: हाँ।
0: और वो ऐसे क्या कहते हैं सरिये निकले हैं और बांस वास निकला हुआ है दुकानों का घरों का, और जीप जा रही है और मैं बाहर निकल के ऊपर देखा चीख रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ उसको पहलवान को, और मुझे दिख रहा है कि ऐसे बांस और ये सब सलिये वगैरह निकले हुए, अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं ये मुझे लगेगा मेरा सर फटेगा या कुछ होगा, तो सामने दिख रहा है मुझे जैसे जीप जाती गई वो इंस्टेंट जो दिमाग में आता है कि मैं फौरन जीप के अंदर घुसा वापस, और फिर जब वो गुजर गया फिर वापस आया, तो वो
1: वो एक रिफ्लेक्स,
0: हाँ रिफ्लेक्स एक्शन जो है उससे जान बची, लेकिन ये है कि वही है कि यू गॉट टू बी अवेयर एंड अलाइव टू द सिचुएशन, कि आप एकदम टू बी इन द मोमेंट, कि आपको जैसा जो आ रहा है उससे डील करिए रियल टाइम में,
1: बिल्कुल,
0: और एकदम रियल तरीके से, कि अगर एक्चुअली अगर होता तो यही करते ना आप,
1: बिल्कुल,
0: अब उसकी शॉट रोक नहीं दिया कि नहीं अरे ये वहां से रोको यार भाई नहीं आ रहा है तो ठीक है डील करो ना उससे,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो वही है सही तरीके की एक्टिंग मुझे लगता है,
1: बिल्कुल, कोई एक तरह का मेथड आप फॉलो नहीं करते जिस तरह से जो आ रहा है उस
0: हाँ,
1: तरीके से।
0: बेसिकली देखिए मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो शब्द है ना जो स्क्रिप्ट है वो बहुत कुछ बोलती है और डायलॉग्स बहुत कुछ देते हैं मुझे
1: जी।
0: अब एक अच्छा एक्टर जो होता है डायलॉग्स के बीच में जो होता है ना कि बगैर बोले बहुत सारी चीजें कन्वे करता है, तो न बोल के भी कन्वे करना, और एज एन एक्टर मुझे शब्द जो हैं जो अल्फाज हैं वो बहुत कुछ देते हैं अपने किरदार के बारे में और अपने रिस्पॉन्स के बारे में, तो मैं बहुत कुछ उनसे लेता हूँ। और जहाँ तक ताल्लुक है कि अलग अलग तरीके यूज करने का, तो वो जिस सीन में जो सही बैठता है उसको इस्तेमाल करता हूँ, और कोई एक मेथड नहीं है कि ये तरीके से ही मैं चलता हूँ
1: जी।
0: कुछ एक तरीके होते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंटरनल काम करना पड़ता है,
1: बिल्कुल,
0: तो वो मैं दुनिया को नहीं पता है डायरेक्टर को नहीं पता है कि मेरी मेरी तैयारी क्या है, और उसको पता करने की जरूरत भी नहीं है
1: जी।
0: और कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सटर्नली आप काम करते हैं कि आप अपनी जबान पर या आप अपने बॉडी लैंग्वेज में या आप जो पहनावा है आपका

0: उससे आपकी चाल बदल जाती है।
1: आजकल वर्कशॉप्स भी होते हैं फिल्मों से पहले या सीरीज से पहले, तो गुल्लक की तैयारी के लिए भी ऐसा कुछ वर्कशॉप हुआ?
0: जी, हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उस पर डिस्कशंस होते हैं, और पहले सीजन के पहले कुछ एक चीजें, कुछ एक होता ना कि केमिस्ट्री बनाने के लिए
1: जी,
0: कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह भी किए हमने, क्योंकि नए नए थे सारे। और चलिए, गीतांजलि और मैं तो पुराने एक्टर्स हैं, किया हुआ है काम, लेकिन ये जो हमारे बच्चे हैं अमन और अनु, इनके साथ कैसे केमिस्ट्री बिठानी है उस लिहाज से, तो बेसिकली टू अंडरस्टैंड ईच अदर, अपने आप एक दूसरे को समझना
1: जी,
0: क्योंकि एक परिवार है, तो अच्छे से समझना और अच्छे से वो केमिस्ट्री बनाना, वो उस चीज की वर्कशॉप जो पहले सीजन के पहले हुई थी
1: जी,
0: वो वहीं से वो सुर बैठ गया। और फिर शूट करके टाइम तो और ज्यादा बैठ गया, फिर उसके बाद तो फिर दौड़ने लगा।
1: बिल्कुल दौड़ने लगा, और हम देख ही रहे हैं कैसे दौड़ रहा है। यहाँ पर एक गीत आपकी पसंद का।

0: गुल्लक में कितना स्क्रिप्ट का योगदान है, कितना इम्प्रोवाइजेशन है?
1: गुल्लक में स्क्रिप्ट, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा योगदान स्क्रिप्ट का ही है। अगर वो बुनियाद हमें नहीं मिलती तो हम कुछ नहीं कर सकते
0: जी।
1: तो स्क्रिप्ट का तो बहुत ज्यादा योगदान है। और जहां तक पर्सनल टचेस की बात है तो कुछ एक चीजें हम लोग इम्प्रोवाइज करते हैं
0: जी,
1: कुछ एक डायलॉग्स भी इम्प्रोवाइज करते हैं, कुछ एक मोमेंट्स भी हम क्रिएट करते हैं, तो वो एक मिली जुली एफर्ट है। लेकिन हाँ, बुनियादी तौर पे स्क्रिप्ट निहायत ही अच्छी होती है।

0: की, और मुझे लगता है कि इसी वजह से भी, मैं ये तो नहीं कहूँ इसी वजह से ही, लेकिन बहुत ज्यादा परसेंटेज जो है वो स्क्रिप्ट को जाता है गुल्लक के कामयाबी में।
1: और गुल्लक ने घर घर में जो आपको पहचान बनाई है आपकी, उसके बाद ऐसा कुछ फैन मोमेंट जो आपको याद आता है, संतोष मिश्रा के नाम पर आपको पहचाना गया कहीं, इस तरह का कुछ फैन मोमेंट?
0: हाँ देखिए, बहुत सारा काम रहा है मेरा। थिएटर में जो पहली पहचान थिएटर से मिली, लेकिन वो आपको मास पहचान नहीं मिलती है बॉम्बे के बाहर या थिएटर सर्किट के बाहर। कुछ एक फिल्में आई उसके बाद जो बहुत मकबूल हुई, लोग उससे याद करते थे, इज्जत भी करते थे, और काम के लिहाज से कि भाई ये एक मजबूत एक्टर है, वो एक इमेज बन गई थी। लेकिन गुल्लक से मुझे जो फर्क जो महसूस होता है वो है पॉपुलैरिटी के अलावा एक जो मोहब्बत मिलती है ना, और जो इज्जत मिलती है, और जो अपनाइयत मिलती है, और दिल से बनावटी नहीं, वो गुल्लक ने जरूर दिया है मुझे। और इसको लेके जो भी मिलता है बड़ी मोहब्बत से मिलता है, और वो ऐसा मिलता है जैसे संतोष मिश्रा उनके अपने हों।
1: बिल्कुल।
0: चाहे वो भाई के तौर पे मिले, चाहे बेटे के तौर पे मिले, चाहे बाप के तौर पे मिले। बहुत सारे बुजुर्गवार हैं जो देख के मिलते हैं, या कभी ऐसा तो कहते हैं यार किरदार हो तो ऐसा हो।
1: एक एयरपोर्ट का किस्सा आपने साझा किया था, उस बारे में कुछ बताएं।
0: हाँ वो भी देखिए, ये बेइंतहाई मोहब्बत की बात है कि एयरपोर्ट पे मैं था और एक शख्स सामने से आए वो, और मेरे पाँव छूने लगे, तो मैंने उनको उठाया, मैंने कहा नहीं भाई ऐसा मत करिए आप, तो वो गले लग गए, और गले लगे रहे काफ़ी देर तक, और फिर उसके बाद जैसे ही अलग हुए वो हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि थैंक यू सर, और उनकी आंखें नम थी, और बस थैंक यू कह के चले गए।
1: मुझे लगता है ये अवार्ड से भी कहीं गुना ज्यादा ये नवाजा जाता है इस प्यार
0: जी
1: से।
0: जी जी, और कमाल की चीज है वो। वो कभी ऐसा एहसास मुझे नहीं हुआ कि यार ये तो एक एकदम स्ट्रेंजर, एक अजनबी शख्स आपके गले लग जाए और फिर उसके बाद इतना इमोशनल हो जाए और कुछ बोले नहीं, सिर्फ अपनी खामोशी में बहुत कुछ कह के चला गया वो।
1: बिल्कुल। और एक सवाल मैं जानना चाहती हूँ कि संतोष मिश्रा स्क्रीन पर और आप में कितनी कितना मिलता जुलता है, आप घर पे कैसे हैं?
0: देखिए मैं मस्तीखोर तो हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये राइटर्स भी जो हैं मुझे देख के काफी कुछ लिखते हैं कि किरदार को किस तरीके से आगे बढ़ाना है
1: जी।
0: लेकिन संतोष मिश्रा और जमील खान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जो बर्ताव है संतोष मिश्रा का
1: जी।
0: बहुत ही सेंसिटिव आदमी हूं मैं, तो मैं हर इंसान को लेके कोशिश करता हूं कि उसको समझूं, जटिल न रहूं इस बात का कि मैं सोच रहा हूं या समझ रहा हूं वही सही है। दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे का नजरिया, और दूसरे की जगह खड़े होके या दूसरे की जगह अपने आप को डाल के रख के इस बात को समझना कि हाँ कि ये जो सोच रहा है या कह रहा है या कह रही है इसको भी समझना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: और मस्ती खोरी तो भरी है मेरे अंदर, मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हूँ और मैं सीरियस कम रहता हूँ लाइफ में, और जिंदगी को मैं बहुत ज्यादा सीरियसली स्ट्रेस नहीं लेता मैं, और स्ट्रेस देता भी नहीं मैं, बहुत सादगी से और बहुत ईमानदारी से, और इस तरीके से काम भी करता हूँ कि किसी को मेरी वजह से कोई दुश्वारी पेश ना आए।
1: बिल्कुल।
0: कोई प्रॉब्लम न क्रिएट हो, या कोई कोई एज नहीं रहते मेरे कि कोई होता है ना कि भाई एक एरोगेंस हो या कोई ऐसा, भाई कम में भी काम हो जाता है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है
1: जी।
0: स्टारपना नहीं दिखाता मैं कभी भी, सादगी से।
1: चलते चलते हमारे श्रोताओं को प्यार भरा संदेश जो आप देना चाहते हैं।
0: यही कहूंगा कि भाई दुनिया भर में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जितना अमन से, शांति से, प्यार से, मोहब्बत से, एकता के साथ, मोहब्बत के साथ, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो पड़ोस हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो दुनिया हो, इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे का सहारा बन के, कभी छोटा भाई बन के तो कभी बड़ा भाई बन के, एक दूसरे को हौसला देते हुए आगे बढ़ें
1: जी,
0: इसी में हम सबकी भलाई है।
1: बहुत ही सुंदर संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे।

इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिनेता जमील खान से अनुराधा उपाध्याय की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुने थे विविध भारती के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। प्रायोजक है सीएफ वन विभाग सरगुजा।

0: हाथी बने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का विचरण हमारे आसपास के वन क्षेत्रों में लगातार बना हुआ है। नर दंतैल हाथियों से विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अर्चो का बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये खड़गवा, रामेश्वरपुर, झींगापारा, पंडोपारा, मोहनपुर, हरिपुर, सुंदरगंज, बोझा, मायापुर, सोनगरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज, वाड्रफ नगर और धामनी में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये इंदरपुर, फुलवा

0: हर छतवा शिवपुर रामपुर गरमडीहा फोकली महुआ रजखेता आबादी बिशुनपुर उचेरवा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा और उदयपुर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये उदारी असकला दोरना जरहाडी लक्ष्मणगढ़ सुखरी भंडार सायर तेंदू टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी दुला पत्थलगांव कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 44 है। ये लोटापानी मयूर चूंदी ढोंगा आंबा कुंजारा साजापानी गट्टीबुड़ा करडेगा हल्दी मुंडा किलकिला आमाडोल कुदराझरिया साजापानी बहमा सोनारपहरी बड़नी झरिया शाहीडांड जामपानी पंडरीपानी सरप कोम्बो के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल धर्मजयगढ़ लैलुंगा बोरो और कापू में हाथियों की कुल संख्या 129 है। ये आमापाली आमगांव ओंगना रुपुंगा पोटिया धवईडांड कुड़ेकेला बंगरसूता लोटान के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये कांसीपानी जामपानी साजापानी चीता खोल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के पसान जडगा एतमानगर और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 54 है। ये बंजारी मड़ई लोधीबहरा मतीन आमाटिकरा नवापारा सिटी पखना फुलसर कोरबी झुनकीडी जुनवानी खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बंगूरसिया बरकछार चक्रधरपुर धुमाबहाल अमलीडी पूंजीपथरा झिंगोल कशडोल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बल्दा कछार अर्जुनी और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सूरबाय सह्या भाटा गिंडोला फुरफुंदी गुड़ागढ़ खुड़मुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा नारीपानी कोनारी बुड़ार जिडार पायलीखंड बेसराझर कोदोमाली तौरेंगा कुकरार ताराझर खोलापारा छिंदौला लूठापारा फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, हाथियों की सूचनाओं पर रात में खेतों के आसपास या घर के बाहर ना सोएं, हाथियों से सामना हो सकता है। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: अभी आप सुनते प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए आपको बताते हैं आज की शाम प्रसारित एवं मनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर पश्चात यानी शाम 5:10 पर सुनिएगा झलकी। विषय होगा छोटी सी आशा के बड़े ख्वाब। युवा श्रोताओं, कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण सुनिएगा शाम 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा स्मार्ट खाओ सेहत बचाओ राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह 1 से 7 सितंबर। साथ ही सुनिए क्रम रोजगार सूचना और चर्चा, जिसका विषय होगा अंगदान में युवा आगे आए जुग जुग जियो अभियान। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे आज शाम 6 बजे से। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार होंगे आज शाम 6:10 पर। हमारे केंद्र से सुनेगा फिल्म संगीत आज शाम 6:20 पर और शाम 7 बजे से। प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से किया जाएगा आज शाम 6:45 पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी का प्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे आज शाम 7:30 पर। गैर फिल्मी गीत हमारे केंद्र से सुनेगा आज रात्रि 8 बजे से। फिल्म संगीत का प्रसारण

0: जाएगा आज रात्रि 8:30 पर और रात्रि 10:30 पर। समाचार संध्या का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे आज रात्रि 8:45 पर। विविध भारती के कार्यक्रमों का सीधा अनुप्रसारण हम आप तक पहुंचाएंगे आज रात्रि 9 बजे से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध संगीत का आनंद आप सीखते हैं आज रात्रि 10 बजे से। तो ये थी जानकारी आज के सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों की।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च 1 विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 MHz पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 5:10 में आइए सुनते हैं झलकी, छोटी सी आशा के बड़े ख्वाब।

0: Baba! बाबा
1: अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ। क्यों आसमान सर पर उठा रही है? आ, आ, आजा आ, अरे आजा बेटा, दो मिनट इंतजार कर लिया करना।
0: बाबा दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों की?
1: अरे बेटा नहा रहा था इसलिए आने में देर हो गई।
0: ठीक है आपने ब्रेकफास्ट किया?
1: हाँ हाँ कर लिया।
0: अपनी दवाई खाई?
1: हाँ भाई खा ली, सब कर लिया। तू ये बता कि सुबह से मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? हैं? मैं कब से इंतजार कर रहा था। ये तू क्या कर रही है आशा? हैं? अपने मुंह पर रुमाल क्यों बांध रही है?
0: मम्मी को लगता है ना कि मुझे भी सांस की बीमारी लग जाएगी।
1: अच्छा तो ये बात है।
0: हाँ बाबा, मैंने उनको कहा कि मैं मुंह पे रुमाल बांध लूंगी मगर मैं बाबा से मिलने जरूर जाऊंगी। क्या हुआ बाबा, क्या हुआ? आप अचानक चुप क्यों हो गए?

0: बाबा, बाबा आप रो रहे हैं। अरे बाबा बोलो ना।
1: बाबा, बाबा मैं हमेशा आपसे मिलती रहूंगी। देखो देखो अभी आई ना मिलने। अब रोना बंद कीजिए।
2: तुम्हारी माँ ठीक ही बोलती है। मेरी इस बीमारी की वजह से कोई भी मेरे पास नहीं आता आशा बेटा। सारे लोग मुझसे दूर भागते हैं। तुम भी आना बंद कर दोगी तो मेरा क्या होगा? एक तुम ही तो हो जिसके सहारे मैं अपने ये दिन काट रहा हूँ बेटा।
0: आप मेरे अच्छे बाबा हो। बाबा, बाबा मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी।
2: हाँ बेटा, काश काश मेरा बेटा भी तुम्हारे ही जैसा प्यार करने वाला होता।
0: बेटा, आपका बेटा कहाँ है बाबा? आप तो हमेशा अपने बेटे की बातें करते हो, मगर मैंने तो कभी उन्हें देखा ही नहीं।
2: कैसे देखोगी बेटा, वो अमेरिका में है, शादी करके वहीं बस गया है।
0: बाबा, बाबा उन्हें आपकी याद नहीं आती? आप कभी उनसे मिलने नहीं गए या वो कभी आपसे मिलने नहीं आते?
2: जब से शादी करके गया है तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये भी नहीं सोचा कि उसके पापा कैसे हैं, जिंदा है भी कि नहीं।
0: बाबा मैं तो कहती हूँ आपको उनकी शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, रहने देते बिना शादी के।
2: तू नहीं समझेगी बेटा, तू नहीं समझेगी। हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा के अच्छी सी नौकरी लगवा दे, उसकी शादी करवा दे, उसका घर बसा दे और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने।
0: और वही बेटा ये सब हो जाने के बाद बुढ़ापे में आपको अकेला छोड़ दे।
2: किसी के नसीब में बुढ़ापे में औलाद का सुख लिखा होता है तो किसी के नसीब में नहीं होता।
0: बाबा आप मुझे उनका नंबर दीजिए, मैं फोन करके डांटूंगी उन्हें।
2: क्या नंबर दूं बेटा, उसने कभी अपना नंबर दिया ही नहीं। मैं मरने से पहले अपने पोते की शक्ल देखना चाहता हूँ।
0: कहाँ है आपका पोता बाबा?
2: वही अमेरिका में।
0: तो फिर जाती क्यों नहीं उनसे मिलने?
2: मैं कैसे जाऊं बेटा, मैं कैसे चला जाऊं, मेरे पास उतने पैसे ही नहीं।
0: अच्छा बाबा एक बात बताइए, कितना खर्चा आएगा आपको अमेरिका जाने में?
2: अरे तुम क्या करोगी जानकर?
0: आप बताओ तो सही बाबा, मेरी गुल्लक भरी हुई है। और मैं वो गुल्लक आपको दे दूंगी और आप अपने पोते से मिल के आना।
2: बड़ी प्यारी बिटिया है तू। लेकिन बेटा गुल्लक के पैसों से क्या होगा, अमेरिका जाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं।
0: बहुत सारे?
2: हाँ।
0: कितने बाबा?
2: कम से कम 3 लाख रुपए तो लगेंगे, आने जाने का किराया, वहाँ पे रहना, खाना।
0: ठीक है ठीक है बाबा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो।
2: अच्छा
0: मैं कुछ करती हूँ।
2: ओ तू कहाँ से लाएगी इतने पैसे? अरे इतने पैसों का इंतजाम करना बच्चों का खेल नहीं है आशा। हाँ एक बात ध्यान रखना, चोरी के बारे में सोचना भी मत। मालूम है ना, चोरी करना पाप होता है और गुनाह भी।
0: बाबा क्या मैं आपको चोर लग रही हूँ? जाओ बाबा मैं आपसे बात नहीं करती।
2: अरे अरे अरे नहीं बेटा, ऐसे ऐसे ऐसे नाराज नहीं होते, सुन सुन तो। अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था बेटा, तू छोटी सी बच्ची है, अरे इतने पैसे कहाँ से ला सकती है तू?
0: बाबा मेरी मम्मी बोलती है कि जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं ना, भगवान भी हमेशा उनकी मदद करते हैं। और हाँ बाबा मैं तो भगवान में बहुत विश्वास करती हूँ। आज मैं उनसे कहूंगी कि आपके पोते से आपको मिलवा दे, फिर देखना वो मेरी बात जरूर सुनेंगे।
2: ठीक है बेटा।
0: अच्छा बाबा मैं जाती हूँ,

0: स्कूल का काम करना बाकी है ना, कल स्कूल से आने के बाद मिलूंगी।
1: हाँ बेटा ठीक है, जाओ पढ़ाई कर लो।
0: और हाँ बाबा, आप दवाई टाइम पे जरूर ले लेना और खाना भी खा लेना।
1: हाँ हाँ सब कर लूंगा मेरी दादी अम्मा।
0: बाय बाय बाबा, बाय बाय।
1: बाय बेटा, बाय बाय।
2: आशा, तूने होमवर्क कर लिया?
0: हाँ कर लिया। क्यों, तूने नहीं किया क्या?
2: नहीं किया, कल डांस क्लास चली गई थी ना, 15 दिन बाद स्कूल में डांस का कंपटीशन है, मुझे वो जीतना है। मालूम है ना, जीतने वाले को 3 लाख रुपए मिलेंगे।
0: पूरे 3 लाख? अगर मैं ये कंपटीशन जीत जाऊं तो पापा को आसानी से अमेरिका भेज सकती हूँ। मगर मैं ये कंपटीशन कैसे जीतूंगी? मुझे तो डांस नहीं आता, मैं तो ठीक से चल भी नहीं सकती। फिर भी कोशिश करती हूँ, कोशिश करने में क्या हर्ज है।
2: आशा क्या सोच रही है तू?
0: मैं सोच रही थी ज्योति कि अगर मोना मिस होमवर्क चेक करेंगी तो तुझे बहुत मारेंगी।
2: वही तो, मुझे भी डर लग रहा है। मम्मी को बोला था मैंने मेरा होमवर्क कर देना, मगर मम्मी भी भूल गई।
0: अरे अरे ज्योति, तू रोती क्यों है? एक आइडिया है मेरे पास मोना मिस की मार से बचने का।
2: क्या क्या, जल्दी बताना।
0: सुनो ज्योति, मोना मिस के आने से पहले मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगी। मगर बदले में तुम मुझे क्या दोगी?
2: 2 चॉकलेट।
0: चॉकलेट नहीं खाती मैं।
2: तो और क्या चाहिए?
0: उसके बदले तुम मुझे डांस सिखा देना।
2: लेकिन यहाँ सबके सामने?
0: नहीं नहीं, सबके सामने मत सिखाओ, लेकिन अकेले में तो सिखा दोगी ना?
2: हाँ अकेले में, कहाँ?
0: इंटरवल में, वहीं कैंटीन के पीछे।
2: मगर तुम तो सही से चल भी नहीं सकती, डांस कैसे सीखोगी?
0: अरे ज्योति, वो तुम मुझ पे छोड़ दो।
2: ठीक है, तुम रोज मेरा होमवर्क कर दिया करना, मैं तुम्हें डांस सिखा दूंगी। इसी बहाने से मेरी भी प्रैक्टिस हो जाया करेगी।
3: आदरणीय जूरी मेंबर्स, पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, आज बहुत ही खुशी का दिन है। स्कूल प्रशासन ने बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए ये डांस कंपटीशन रखा है और जीतने वाले बच्चे को सम्मानित भी किया जाएगा। आज यहाँ पर कोई भी बच्चा हारेगा नहीं, हर किसी को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, किसी को ट्रॉफी, किसी को इनाम, तो फिर किसी को अनुभव। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस कंपटीशन की शुरुआत करते हैं और इसमें भाग लेने वाले बच्चे को स्टेज पे बुलाते हैं। मेरे हाथ में जो लिस्ट है उसमें पहला नाम है प्रियंका। प्रियंका 4th class की छात्रा है। प्रियंका प्लीज स्टेज पर आइए। सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा डांस किया दोस्तों। अब हमारी जूरी निर्णय देगी कि इनमें से प्रथम पुरस्कार किसको दिया जाएगा और द्वितीय पुरस्कार किसको।
4: प्रथम पुरस्कार ज्योति को जाता है,
5: द्वितीय पुरस्कार निखिल को और तृतीय पुरस्कार प्रियंका को जाता है।
4: आशा स्टेज पे आओ।
6: क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तुमने तो बहुत अच्छा डांस किया, देखा नहीं जैसे ही तुम्हारा डांस खत्म हुआ सबसे ज्यादा तालियां तुम्हारे डांस पे बजी हैं।
7: मुझे तालियों की आवाज नहीं चाहिए, मुझे फर्स्ट प्राइज की ज्यादा जरूरत है।
6: क्यों चाहिए तुम्हें फर्स्ट प्राइज? क्या करोगी उस प्राइज का?
7: फर्स्ट प्राइज से जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से मैं अपने बाबा को अमेरिका भेजूंगी उनके पोते से मिलने।
3: कहाँ है तुम्हारा?

0: बाबा, बुलाओ उन्हें।
1: वो पीछे बैठे हैं, वो मरने से पहले अपने पोते से मिलना चाहते हैं। उनका पोता अमेरिका में है, उनके पास इतने पैसे नहीं है वो अमेरिका जा सके।
0: आइए आइए आइए बाबा, यहां बैठिए।
2: बेटा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना आशा बिटिया, कहीं नहीं जाना। मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे पास। मेरा पोता भी तुम हो, बेटा भी तुम हो, बेटी भी तुम हो। नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा जो अपने बाप की सुध भी ना लेता हो। धिक्कार है ऐसे बेटों पे जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते। हर माँ बाप यही सोच के अपने बच्चों की परवरिश करता है कि बड़े होके वो उसके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, मगर दुख होता है वही बच्चे उन्हें अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल के फेंक देते हैं जैसे कोई दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक देता है। इस छोटी सी बच्ची ने ऐसे बेटों के मुंह पे ऐसा तमाचा मारा है कि उनको अकल आ जानी चाहिए। भगवान, हर जन्म में ऐसी बेटी सबको देना, भगवान सबको देना।
0: चलिए आइए बाबा, आइए इस तरह।

0: सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात। अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्ट कार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे झलकी, छोटी सी आशा के बड़े ख्वाब। लेखक थे ईश्वर सिंह। और आइए अब आपको बता दें आज की शाम प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर पश्चात यानी शाम 5:30 पर सुनिएगा युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी, जिसमें आज की बात का विषय होगा स्मार्ट खाओ सेहत बचाओ, राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह 1-7 सितंबर। साथ ही सुनिएगा क्रम रोजगार सूचना और चर्चा, जिसका विषय होगा अंगदान में युवा आगे आए जुग जुग जियो अभियान। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे आज शाम 6 बजे से। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार होंगे आज शाम 6:10 पर। हमारे केंद्र से सुनेगा फिल्म संगीत आज शाम 6:20 पर और शाम 7 बजे से। प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे आज शाम 6:45 पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे आज शाम 7:30 पर। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आज रात्रि 8 बजे से। हमारे केंद्र से सुनेगा फिल्म संगीत आज रात्रि 8:30 पर और रात्रि 10:30 पर। समाचार संध्या का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे आज रात्रि 8:45 पर। विविध भारती के कार्यक्रमों का सीधा अनुप्रसारण हम आप तक पहुंचाएंगे आज रात्रि 9 बजे से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध संगीत का लीजिएगा आनंद आज रात्रि 10 बजे से। तो ये थी जानकारी आज के शाम प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण में आज बस इतना ही।

0: सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात। अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्टकार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
4: विविध भारती,
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
3: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
3: वीर सैनिकों की जय माला
2: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
3: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
5: सखी सहेली,
3: बॉम्बे टॉकीज और
6: सेल्यूलॉइड के सितारे,
3: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
7: मुझे याद सब है जरा जरा।
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
3: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
2: मन का सुकून, दिल की आरती,
3: सुरीली संदली।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 5:30 होने को है, आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी, जहां बातें होती हैं आपकी सेहत की, आपकी खुशियों की और आपके उज्जवल भविष्य की। और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त ईशा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो खाना खाते हैं उसका असर हमारी सेहत, हमारी ऊर्जा और हमारे भविष्य पर कितना पड़ता है? हमारे शरीर को सिर्फ पेट भरने के लिए भोजन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सही विकास, मजबूत शरीर, तेज़ दिमाग और बीमारियों से बचाव के लिए पौष्टिक और संतुलित आहार की ज़रूरत होती है। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमारी खाने की आदतें तेज़ी से बदल रही हैं। घर के पौष्टिक भोजन की जगह कई

बार पिज्जा, बर्गर, चिप्स, नूडल्स और तरह तरह के पैकेट वाले खाद्य पदार्थ हमारी पसंद बनते जा रहे हैं। यह चीजें स्वादिष्ट जरूर लगती है, लेकिन अगर इन्हें जरूरत से ज्यादा और बार बार खाया जाए तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब सवाल आता है कि आखिर कैसा भोजन करना चाहिए? दोस्तों, हमें ऐसा भोजन चुनना चाहिए जिसमें शरीर को जरूरी पोषक तत्व सही मात्रा और संतुलन में मिल सके। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, फाइबर और पानी जैसे पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारी रोज की थाली में अनाज के साथ दालें, चना, सोयाबीन, दूध, दही, पनीर, अंडे या अन्य प्रोटीन स्रोत शामिल किए जा सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, टमाटर, लौकी, भिंडी और दूसरी मौसमी सब्जियां भी भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी तरह फल भी हमारे आहार में जरूरी होते हैं। केला, सेब, अमरूद, संतरा जैसे फल शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व और फाइबर प्रदान करते हैं। इसलिए याद रखिए, रंग बिरंगी थाली सेहत की रखवाली। दोस्तों, पसंद की चीजें कभी कभार ली जा सकती है, लेकिन इन्हें रोज का भोजन नहीं बनाना चाहिए। स्मार्ट खाने का मतलब संतुलन और सही चुनाव है। बहुत अधिक नमक, चीनी और अस्वास्थ्यकर वसा वाले खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित रखना ही समझदारी है। दोस्तों, सिर्फ पौष्टिक भोजन ही पर्याप्त नहीं होता, हमें अपनी जीवन शैली पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। घंटों बैठे रहने के बजाय हमें रोज कुछ समय शारीरिक गतिविधि के लिए निकालना चाहिए। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण आदत की, समय पर भोजन करना। सुबह का नाश्ता छोड़ना, बहुत देर से खाना या जरूरत से ज़्यादा खाना हमारी दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि नियमित समय पर संतुलित भोजन करें और भोजन को धीरे धीरे अच्छी तरह चबा कर खाएं। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि पौष्टिक भोजन हमेशा महंगा नहीं होता। हमारे घर में मौजूद दाल, चना, मूंगफली, बाजरा, हरी सब्जियां, मौसमी फल और अन्य स्थानीय खाद्य पदार्थ पौष्टिक आधार का हिस्सा बन सकते हैं। यानी स्वस्थ रहने के लिए जरूरी नहीं कि हम महंगे खाद्य पदार्थ ही खरीदें। जरूरत है तो बस सही जानकारी और सही चुनाव की। पोषण आहार सप्ताह हमें यही संदेश देता है कि हमें अपने भोजन को लेकर जागरूक होना चाहिए। बच्चों, युवा, माता पिता, बुजुर्ग, हर उम्र के लिए संतुलित आहार महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात खाने को लेकर किसी एक वायरल डाइट या इंटरनेट की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। हर व्यक्ति की जरूरत अलग हो सकती है। अगर किसी को विशेष स्वास्थ्य समस्या है या अपनी डाइट में बड़ा बदलाव करना है तो डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लेना बेहतर है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके सामने चिप्स और फल में से कोई एक विकल्प हो या कोल्ड ड्रिंक और पानी में से चुनाव करना हो तो एक सेकेंड रुककर ज़रूर खुद से पूछिए, क्या यह सिर्फ मेरी जीभ को खुश करेगा या मेरे शरीर को भी फायदा होगा? यही सवाल आपको स्मार्ट खाने की तरफ ले जाएगा, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए महंगे खाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सही खाने की समझ की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी सेहत हमारे भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आज के बात में बस इतना ही। दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं हमारे आज के क्रम रोजगार सूचना में। हाल ही में भारतीय डाक में ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। यह भर्ती देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में निकाली गई है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट पर जाकर भरे जा सकते हैं।
फॉर्म

करने की लास्ट डेट 19 सितंबर है एवं फीस जमा करने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का केवल मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं पास होना अनिवार्य है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पूर्ण रूप से निःशुल्क फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इंडियन पोस्ट GDSonline.government.in पर विजिट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ में फिल्म मिस्टर इंडिया का ये गीत, जावेद अख्तर का लिखा हुआ, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

दोस्तों, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप में 80 ट्रेड अप्रेंटिस पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। खास बात यह है कि इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को किसी लिखित परीक्षा में शामिल नहीं होना होगा। चयनित युवाओं को BHEL जैसे बड़ी सरकारी कंपनी के औद्योगिक माहौल में काम सीखने और व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का अवसर मिलेगा। इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 12 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.apprenticeshipindia.government.in पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेलवे द्वारा जूनियर इंजीनियर JEE के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों को रेलवे में आवेदन करना है वो 13 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म लावारिस का ये गीत, जावेद अख्तर का लिखा हुआ, संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

0: दोस्तों, आइए अब चर्चा करते हैं एक ऐसे विषय पर जिसका संदेश केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा है। जुग जुग जियो अभियान नहीं, बल्कि यह एक संकल्प है। यह अभियान हमें याद दिलाता है कि जीवन अनमोल है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल सरकार या किसी एक संस्था की नहीं, बल्कि हम सभी की है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। खान पान में लापरवाही, व्यायाम की कमी, तनाव, नशे की आदत, सड़क पर यातायात नियमों की अनदेखी और पर्यावरण के प्रति हमारी उदासीनता, ये सभी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जुग जुग जियो अभियान का मूल संदेश है जीवन को सिर्फ लंबा नहीं, बल्कि स्वस्थ और बेहतर बनाना। हम सभी जानते हैं कि जीवन अनमोल है, लेकिन हमारे देश में ऐसे बहुत से मरीज हैं जो किसी अंग की प्रतीक्षा में अपना जीवन गुजार रहे हैं। किसी को किडनी की ज़रूरत है, किसी को लीवर की, तो किसी को हृदय या फेफड़ों की। ऐसे लोगों के लिए अंगदान केवल एक दान नहीं, बल्कि जीवन का अवसर है। अब सवाल यह है कि अंगदान के लिए युवा आगे क्यों आए? दोस्तों, युवा किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। उनमें नई सोच होती है, बदलाव लाने का साहस होता है और समाज को जागरूक करने की क्षमता होती है। अगर युवा अंगदान के महत्व को समझें और इसके बारे में सही जानकारी अपने परिवार और समाज तक पहुंचाए, तो अंगदान से लेकर फैली भ्रांतियां दूर हो सकती हैं। अक्सर लोग अंगदान को लेकर डरते हैं या इसके बारे में अधूरी जानकारी रखते हैं, लेकिन हमें डर और अफवाहों के बजाय सही और विश्वसनीय जानकारी पर विश्वास करना चाहिए। अंगदान का निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। अपनी इच्छा अपने परिवार के साथ साझा करनी चाहिए। कल्पना कीजिए, हमारे जीवन के बाद हमारे अंग किसी ऐसे व्यक्ति को मिले जिसके लिए वह अंग एक नई जिंदगी की उम्मीद बन जाए, तो इससे बड़ी मानव सेवा शायद ही कोई हो। दोस्तों, इसलिए आज ज़रूरत है कि युवा केवल अपने भविष्य के बारे में ही ना सोचे, बल्कि समाज के भविष्य के बारे भी सोचे। अंगदान केवल अंगों का दान नहीं, किसी के जीवन को नई उम्मीद देने का नाम है। आज की चर्चा में बस इतना ही। आइए दोस्तों, अब आगे आपको सुनवाते हैं उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म पापा कहते हैं का ये गीत, जावेद अख्तर का लिखा हुआ, संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर होगी मुलाकात युवाणी के अगले कार्यक्रम में। तब तक के रखिए अपना ख्याल और सुनते रहें आकाशवाणी रायगढ़। शुभ संध्या।
1: अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोता का कार्यक्रम युवाणी FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
2: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को बंद करने और आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।

0: छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। सीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन में उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री ने उपक्रमों से बदलते परिदृश्यों के बीच रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने को कहा। सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं सरकार ने कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में एमए की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 6:05 में आइए आपको बता दें आज की शाम प्रसारित एवं मनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर पश्चात यानी शाम 6:10 पर सुनिएगा छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से, क्षमा कीजिएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फिल्म संगीत आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं आज शाम 6:20 पर और शाम 7 बजे से। प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे आज शाम 6:45 पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे आज शाम 7:30 पर। हमारे केंद्र से सुनेगा गैर फिल्मी गीत आज रात्रि 8 बजे से। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं आज रात्रि 8:30 पर और रात्रि 10:30 पर। समाचार संध्या का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे आज रात्रि 8:45 पर। विविध भारती के कार्यक्रमों का सीधा अनुप्रसारण हम आप तक पहुंचाएंगे आज रात्रि 9 बजे से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध संगीत का लीजिए गान आज रात्रि 10 बजे से। तो ये थी जानकारी आज की शाम प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों की।
3: साहब आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
4: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
3: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
5: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
7: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
6: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।

0: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
4: देश की सुरीली धड़कन
5: विविध भारती,
3: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
4: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
3: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
4: वीर सैनिकों की जय माला
3: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
4: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
6: सखी सहेली,
4: बॉम्बे टॉकीज और
7: सेल्यूलॉइड के सितारे,
4: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
8: मुझे याद सब है जरा जरा,
3: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
4: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
3: मन का सुकून, दिल की आरती,
4: सुरीली संदली।
9: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
10: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाल केंद्र है। 6:10 होने को हैं, अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
11: ये आकाशवाणी रायपुर है, छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी की जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन काली रायपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के 3rd दीक्षांत समारोह में हो ही शामिल। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के टीम आज छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कथित भर्ती घोटाला मामला में कतको जगह में करी छापामार कार्यवाही। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी है राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मुख्य लिखित परीक्षा के रिजल्ट जारी कर देहे। अब समाचार विस्तार ले। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन काली 2 सितंबर के छत्तीसगढ़ के एक दिन के दौरा में रायपुर आही। उमन रायपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के 3rd दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी पीएचडी और अलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम के स्नातक करिया विद्यार्थी मल्ला उपाधि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वित्त वर्ष 2026-27 के पहली तिमाही में भारत के 7.8% के उत्साहजनक जीडीपी वृद्धि ला बड़े उपलब्धि बताए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री कहने कि तेल के कीमत में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगन मन के सामूहिक शक्ति और दृढ़ता ला दर्शाते। यही बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहने कि दुनिया भर में अनिश्चितता के बावजूद भारत के जीडीपी वृद्धि देश के मजबूत अर्थव्यवस्था ला दर्शाते। उमन कहने कि छत्तीसगढ़ खलो ये राष्ट्रीय विकास की गति के संग मजबूती ले आगू बढ़ाते। विकसित भारत के लक्ष्य ला हासिल करे मा उद्योग, खनिज, बुनियादी ढांचा और समावेशी विकास के माध्यम ले राज्य अपन योगदान देवत रही। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम आज छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के कथित भर्ती घोटाला मामला मा कतकोन जगह मा छापामार कार्यवाही करी। टीम आज बीना भिलाई के विश्व बैंक कॉलोनी स्थित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निजी सचिव रहे के चंद्रवंशी के घर मा छापामारी पर पहुंची। टीम है दस्तावेज और आने सामान मन के जांच करी। उन्हें ईडी है बलरामपुर जिला के अपर कलेक्टर चेतन बोरघरिया ले घलो पूछताछ करी। फिर पूछताछ के बारे में ईडी कोती ले आधिकारिक जानकारी अभी नहीं आए हैं। चेतन बोरघरिया कांग्रेस सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी के रूप में सेवा दे चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली नई दिल्ली के भारत मंडपम में

0: शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन में शामिल हुई। आज संझा दिल्ली रवाना हुए ले पहली ओमन बताइने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूदगी में ये सम्मेलन में केंद्र और राज्य के बड़का प्रतिनिधि मन देश में जल सुरक्षा ला मजबूत बनाए पर गोटबात करी। शक्कर की जमाखोरी रोके पर केंद्र सरकार है शक्कर के भंडारण की सीमा 4,000 क्विंटल ले घटा के 2,000 क्विंटल कर दी है। ये नवा सीमा ये महीना के 15 तारीख ले 30 नवम्बर तक लागू रही। उपभोक्ता मामला खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक संशोधित नियम के तहत कोनो भी व्यापारी स्टॉक मिले के 30 दिन ले ज्यादा समय तक तय सीमा ले ज्यादा शक्कर अपन तीर नहीं रख सकी। सरकार है कहे कि देश में शक्कर के कोनो कमी नहीं होवन दे जाही। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर ओडिशा के हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति कृष्णा राम मोहपात्रा के नाम की सिफारिश करे है। उन्हें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय के अग्रवाल राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए जाए की अनुशंसा करेगी है। 5-6 अगस्त के हो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बैठक में ये फैसला लेगी। ये सिफारिश वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के 4 सितंबर के रिटायर होने के बाद करैया नियुक्ति के संबंध में हवे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल है बछर 2027 के परीक्षा कैलेंडर जारी कर दे है। एमा आने आने विभाग में भर्ती परीक्षा के संगे संग प्रवेश परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेटे और राज्य पात्रता परीक्षा सेट के तारीख घलो घोषित करेंगे है। यूपीएससी के तर्ज में कर्मचारी चयन मंडल है सालाना कैलेंडर जारी करे की व्यवस्था शुरू करे है। इकर संगे संग आने आने समूह उप समूह के परीक्षा घलो होगी। मंडल है परीक्षा कैलेंडर अपन आधिकारिक वेबसाइट में अपलोड कर दे है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़ बांचे समाचार कोती। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC है राज्य सेवा परीक्षा 2025 के मुख्य लिखित परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दे है। मुख्य परीक्षा में पास हुए 660 अभ्यर्थी मन के चुनई अब प्रक्रिया के अवैया चरण के साक्षात्कार पर करेंगे है। ये भर्ती प्रक्रिया राज्य शासन के अन्य अन्य विभाग में 265 पद में नियुक्ति पर चलत है। मुख्य परीक्षा के परिणाम आयोग के आधिकारिक वेबसाइट में जारी करेंगे है। राज्यपाल रमन डेका हा आज प्रदेश के अन्य अन्य सरकारी विश्वविद्यालय के कुल सचिव मन की बैठक लीन। ये दौरान उमन विश्वविद्यालय के शैक्षणिक गुणवत्ता राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और नवाचार के संगे संग स्टार्टअप गतिविधि समेत अन्य अन्य विषय की समीक्षा करीन। राज्यपाल है विश्वविद्यालय मन में सीट के अनुपात में विद्यार्थी मन की संख्या बढ़ाए पर करे जावत कोशिश की जानकारी लीन और ये दिशा में प्राथमिकता ले काम करे के निर्देश दीन। राज्यपाल है विश्वविद्यालय में खाली पद मन ला जल्दी भरे बर कहिन। बैठक में राज्यपाल है विश्वविद्यालय के नैक और NIRF रैंकिंग के स्थिति के घलो समीक्षा करिन। ओमन कहिन कि जम्मू विश्वविद्यालय अपन रैंकिंग में सुधार बर रोड मैप तैयार करे। देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थान नरसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यानी NMIMS के कैंपस ला नवा रायपुर अटल नगर में स्थापित करे जाही। मुख्यमंत्री उसी देसाई की मौजूदगी में आज संस्थान की स्थापना पर लीज अनुबंध और भूमि रजिस्ट्री के काम पूरा करेगी। ये संस्थान के बने ले यहाँ करीबन 10,000 विद्यार्थी मन पढ़ाई कर सकी। पहली शैक्षणिक बैच 2 से 3 बच्चर के भीतर शुरू करे के लक्ष्य रखे हवे। कबीरधाम जिला के चिल्फी पुलिस है बोडला के तीर एक ठीन गाड़ी ले करीबन 4.5 क्विंटल गांजा बरामद करे है। जब्त गांजा के कीमत करीबन 2,23,00,000 रुपया ले ज्यादा के बताया जावत है। मामला में पुलिस है एक झीन आरोपी ला गिरफ्तार करे है। राजनांदगांव रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अजय यादव कार्यवाही करे पुलिस कर्मी मन ला 25,000 रुपया के नगद इनाम दे है। उन्हें जसपुर पुलिस घरों 60 किलो गांजा के संग एक झीन तस्कर ला गिरफ्तार करे है। आरोपी चारपहिया गाड़ी के डिक्की में प्लास्टिक टेप मार लपेटे 60 पैकेट गांजा ला लेके ओडिशा ले उत्तर प्रदेश चावत रही।

0: वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप कहिने कि राज्य सरकार पर्यावरण संस्थान की सुरक्षा पर प्रतिबद्ध हवे। आज नवा रायपुर में पत्रकार मले गुट बात करत श्री कश्यप अपन विभाग के काम के जानकारी दी। एक सवाल के जवाब में वन मंत्री कहिने कि छत्तीसगढ़ में वन्य जीव के तस्करी में आने राज्य और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के जुड़े हुए के संभावना है। एखर सेती राज्य सरकार एक जांच सीबीआई ले कराए के प्रस्ताव केंद्र सरकार ला भेजी। उमन बताइने कि राज्य में इको टूरिज्म ला बढ़ावा दे बर विभाग डहर ले 240 प्राकृतिक पर्यटन केंद्र स्थापित करे गए है। वन मंत्री बताइने कि बछर 2022 में राज्य में बाघ मन की संख्या 18 रही से जौन बाढ़ के 35 हो गए है। मुख्यमंत्री श्री शाह कहने कि किसान माला धान खरीदी में ज्यादा सुविधा दिवाए पर प्रदेश में 354 धान खरीदी केंद्र खोले जाही। मुख्यमंत्री ये बात काली रायपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभा ठाकरे परिसर में राखे गए किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के बैठक के समापन सत्र में कही। श्री शाह कहने कि राज्य सरकार है किसान गरीब युवा और माइलोगिन मन के हित ला प्राथमिकता देवर प्रदेश के समग्र विकास पर सरलक काम करत है। उमन बताइने की करीबन 11,000 करोड़ रूपया के योजना ले जुड़े काम ला अवैया 2 बच्छर में पूरा करे के लक्ष्य रखे गए है। मुख्यमंत्री श्री देसाई काली नवा रायपुर में राखे के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पात्र हितग्राही मल्ला निःशुल्क रेती दिवाए पर ई रेत संगवारी पोर्टल के शुभारंभ करी। ये पहल के उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत आवास के निर्माण में हितग्राही मल्ला रेती दिवाए के संगे संग पक्का घर के सपना ला साकार करे में मदद देवाना है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फेर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन काली रायपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के तीसरिया दीक्षांत समारोह में हो ही शामिल। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के टीम है आज छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कथित भर्ती घोटाला मामला में कतकुन जगह में करी छापामार कार्यवाही और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी है राज्य सेवा परीक्षा 2025 के मुख्य लिखित परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दे है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: अभी आप सुने थे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 6:20 हुए, आइए सुनते हैं फिल्म संगीता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवाते हैं हरिहरन और अलका याग्निक की आवाजों में गाया फिल्म हकीकत का ये गीत। नवाब आरजू के लिखे बोल, संगीत दिलीप सेन समीर सेन का है।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म गुलाम से। समीर के लिखे पुनः संगीत जतिन ललित का है।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म पाप से। सईद कादरी के लिखे बोल, संगीत अनु मलिक का है।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म जिद्दी से आवाजें हरिहरन और चित्रा की।

0: अभी आप सुने थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुनेंगे शाम 7 बजे से FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 6:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई है।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल ज्यादा बचत ज्यादा काम।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
7: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
8: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
7: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
8: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
7: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
8: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
6: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
9: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
8: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
9: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
8: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
9: आकाशवाणी से।
6: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर स्थित एम्स के तीसरे दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री ने भारत की 7.8% जीडीपी वृद्धि को देशवासियों की कड़ी मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में ईडी ने आज प्रदेश के कई स्थानों पर मारा छापा और कवर्धा पुलिस ने एक वाहन से लगभग 2,23,00,000 रुपये का गांजा बरामद किया। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल 2 सितंबर को छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर आएंगे। वे रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी पीएचडी और अलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम में स्नातक करने वाले विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की 7.8% की उत्साहजनक जीडीपी वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद यह उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि दुनिया भर में अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की जीडीपी वृद्धि देश की मजबूत अर्थव्यवस्था को दर्शाती है।
1: भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार आर्थिक रूप से ग्रोथ कर रहा है और 7.8% का जो ग्रोथ रेट हासिल हुआ है अपने देश को, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और अथक परिश्रम का ही परिणाम है।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने आज छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में कई स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। टीम आज सुबह भिलाई के विश्व बैंक कॉलोनी स्थित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निजी सचिव के चंद्रवंशी के आवास पर जांच के लिए पहुंची। टीम ने संबंधित दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों की जांच की। दुर्ग में ही ईडी ने छत्तीसगढ़ पटवारी संघ के पूर्व अध्यक्ष कमलेश सिंह राजपूत के सिकोला स्थित निवास में छापा मारा। वहीं ईडी ने बलरामपुर जिले के अपर कलेक्टर चेतन बोरघरिया से भी पूछताछ की। हालांकि पूछताछ के संबंध में ईडी की ओर से आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। चेतन बोरघरिया पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। आज शाम दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ प्रतिनिधि देश में जल सुरक्षा को मजबूत बनाने पर विचार विमर्श करेंगे।
1: दिल्ली प्रवास पर जा रहे हैं, वहां पर जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा विभागीय समिट का आयोजन किया गया है और इस समिट में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी रहने वाले हैं और पूरे देश में जल के संरक्षण, सिंचाई, पेयजल, इस पर चर्चा होगी और हम भी अपने प्रदेश में जो जल के संरक्षण में जो काम कर रहे हैं वो सबके विषय में अपनी बात समिट में रखेंगे।
0: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए ओडिशा हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति कृष्णा राम मोहपात्रा के नाम की सिफारिश की है। वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय के अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की अनुशंसा की गई है। बीते 6 अगस्त को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह सिफारिश वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के 4 सितंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद की जाने वाली नियुक्ति के संबंध में है। समान नागरिक संहिता यूसीसी पर आज रायपुर में आयोजित परिचर्चा में सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष और प्रतिनिधि, राज्य महिला आयोग और राज्य फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष शामिल हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने समिति के सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस एम के राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार, ज्योति रानी सिंह और श्याम धावड़े के समक्ष विवाह, तलाक, भरण पोषण और उत्तराधिकार जैसे संवेदनशील विषयों पर अपने सुझाव रखे। सदस्यों ने आश्वस्त किया कि राज्य की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने का पूरा ध्यान रखा जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल रमेश डेका ने आज प्रदेश के विभिन्न शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलसचिव

की बैठक ली। उन्होंने विश्वविद्यालयों में सीटों के अनुपात में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली और इस दिशा में प्राथमिकता से कार्य करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को जल्द भरने को कहा। उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया में नियमानुसार स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक में राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों की नैक और एनआईआरएफ रैंकिंग की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालय अपनी रैंकिंग में सुधार के लिए रोडमैप तैयार करें। देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थान नरसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यानी NMIMS का कैंपस नवा रायपुर अटल नगर में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की मौजूदगी में आज संस्थान की स्थापना के लिए लीज अनुबंध और भूमि रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की गई। यह कैंपस नवा रायपुर के सेक्टर 18 में करीब 40 एकड़ भूमि पर विकसित होगा। इसके लिए श्री विले पार्ले केलवणी मंडल को यह भूमि 90 वर्ष की लीज पर दी गई है। संस्थान का पहला शैक्षणिक बैच 2 से 3 वर्षों के भीतर शुरू करने का लक्ष्य है। पूर्ण रूप से विकसित होने पर यहां करीब 10,000 विद्यार्थी अध्ययन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को अपने ही राज्य में गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुखी उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। NMIMS की स्थापना से प्रबंधन, कौशल विकास और आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा में सफल 608 अभ्यर्थियों का चयन अब साक्षात्कार के लिए किया गया है। यह भर्ती प्रक्रिया राज्य शासन के विभिन्न विभागों में 265 पदों पर नियुक्ति के लिए चल रही है। मुख्य परीक्षा का परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल CGSSB ने वर्ष 2027 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें विभिन्न विभागों में भर्ती परीक्षाओं के साथ प्रवेश परीक्षाओं, शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट और राज्य पात्रता परीक्षा सेट की तिथियां भी घोषित की गई हैं। UPSC की तर्ज पर कर्मचारी चयन मंडल ने वार्षिक कैलेंडर जारी करने की व्यवस्था शुरू की है। जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार 2 मई को PPT और प्री BEd, 9 मई को PET और प्री MSc नर्सिंग, 23 मई को PPHT और प्री पोस्ट बेसिक नर्सिंग, 30 मई को प्री DLED, 6 जून को प्री MSc MCA और प्री BSc नर्सिंग, 13 जून को PAT PVPT, 26 सितंबर को TET और 3 अक्टूबर को सेट की परीक्षा होगी। इसके अलावा इस दौरान अन्य समूहों और उप समूहों की परीक्षाएं भी होंगी। कर्मचारी चयन मंडल ने 19 सितंबर, 28 नवंबर और 19 दिसंबर को 2027 की तिथि को आकस्मिक परीक्षाओं के लिए आरक्षित रखा है। मंडल ने परीक्षा कैलेंडर अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। कबीरधाम जिले की चिल्फी पुलिस ने बोड़ला के पास एक वाहन से करीब 4.5 क्विंटल गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 2,23,00,000 रुपए से अधिक बताई गई है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अजय यादव ने कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मियों को 25,000 रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया। वहीं जशपुर पुलिस ने भी 60 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी चारपहिया वाहन की डिक्की में प्लास्टिक टेप से लिपटे हुए 60 पैकेट में गांजा लेकर ओडिशा से उत्तर प्रदेश जा रहा था। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि राज्य सरकार पर्यावरण संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आज नवा रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री कश्यप ने अपने विभाग के कार्यों की जानकारी दी। एक सवाल के जवाब में वन मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में वन्य जीवों की तस्करी में अन्य राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों की संलिप्तता हो सकती है, इसलिए राज्य सरकार इसकी जांच CBI से कराने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी। उन्होंने बताया कि राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा 240 प्राकृतिक पर्यटन केंद्र स्थापित किए गए हैं। वन मंत्री ने बताया कि वर्ष 2022 में राज्य में बाघों की संख्या 18 थी, जो बढ़कर 35 हो चुकी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमेश डेका आज रायपुर स्थित संत गोविंद राम शदाणी शासकीय कला और वाणिज्य कन्या महाविद्यालय में नव प्रवेशित छात्राओं के दीक्षारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने महाविद्यालय की प्रतिभाशाली छात्राओं का सम्मान किया। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दंतेवाड़ा के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष गंजीर को विशेष न्यायालय ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। संतान की लंबी आयु की कामना से जुड़ा हलषष्ठी का पर्व कल प्रदेश भर में परंपरा के अनुसार मनाया जाएगा। और रायपुर बलौदाबाजार मार्ग पर आज सुबह हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल छत्तीसगढ़

0: छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर स्थित एम्स के तीसरे दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री ने भारत के 7.8% जीडीपी वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में ईडी ने आज प्रदेश के कई स्थानों पर मारा छापा और कवर्धा पुलिस ने एक वाहन से लगभग 2,23,00,000 रूपये का गांजा बरामद किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 7 बजने को आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम। कल में आइए सुनते हैं आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजों में गाया फिल्म खिलाड़ी का ये गीत। महेंद्र देवलवी के लिखे बोलों को संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

0: सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात। अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्टकार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagad यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात। अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्टकार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagad यानी shrotarayagad@gmail.com।

अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खां की आवाज में फिल्म ओंकारा का गीत। गुलजार के लिखे बोलते संगीत विशाल भारद्वाज का था।

सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात। अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्ट कार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।

0: जावेद अली की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म नकाब का गीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 7:30 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: रोशनी लाई ना तब जाके हमरो जिंदगी है सार्थक हो। तो लव भैया अब सुनथन किसान वाणी।

0: लो भैया, राम राम।
1: लालजी भाई, राम राम। और कार्यक्रम सुनैया हमर जम्मू संगवारी मल्ला, हम दोनों के राम राम।
2: बेरा है किसानवाणी के प्रायोजक, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: लालजी भाई,
1: हाँ भैया,
0: किसान संगवारी हमर सुनील संगवारी दोनों मन अगोरा करते हमर फोन इन कार्यक्रम के जौन हाँ आज यानी कि मंगलवार के आते वो कार्यक्रम में हेलो किसान वाणी। तो संगवारी हो, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी के आज के विषय है सब्जियों में जैविक एवं अजैविक तनाव प्रबंधन, जेखर विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शशि प्रकाश तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर पादप शरीर क्रिया विज्ञान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। ले कार्यक्रम के संचालन करत हैं लालजी साहू, तकनीकी सहायक अंजू विजयन जी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हमें शशि प्रकाश पांडे जी।

0: किसान संगवारी हो, आज के हेलो किसान वाणी के विषय है सब्जियों में जैविक एवं अजैविक तनाव प्रबंधन। और ये विषय ले जुड़े समस्या और समाधान खातिर हमारे बीच विशेषज्ञ है डॉक्टर शशि प्रकाश तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर पादप शरीर क्रिया विज्ञान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। सबले पहली हमारे विशेषज्ञ के हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। राम राम।
1: राम राम।
0: संगवारी हो, शुरू करथन आज के क्रम हेलो किसान वाणी। हेलो, हेलो किसान वाणी।
2: राम राम भैया।
0: राम राम भैया, कौन बोला थो, कहाँ बोला थो गा?
2: मेरे और राम साहब बोला थे भैया, दयान बांधा बाजार से।
0: आपके स्वागत है भाई हमारे कार्यक्रम में। ओ, बताओ आज के विषय ले जुड़े का जानना चाहते हो आप मन?
2: सर जी,

0: यार मेरी से सब्जी में अगर हम जैविक खेती के करके सब्जी उगाना रही से ताकि हमारा स्वास्थ्य लाभ ये मत हो, इसलिए जैविक खेती ये करेगी विचार ही सर जी, थोड़ा विस्तार से बताते हो।
1: किसान भाई, राम राम।
0: राम राम भैया, राम राम डॉक्टर साहब।
1: आपने जैसा प्रश्न पूछा, जैविक खेती या जैविक तनाव, दोनों दो चीज हैं। तनाव और जैविक खेती में बहुत सारे अंतर हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जैविक खेती के लिए उसका मापदंड है, अगर आपको जैविक खेती करना है तो जैविक खेती के लिए कम से कम जिस खेत में आप सब्जी उगा रहे हैं बिना रासायनिक खादों का उपयोग किए हुए, तो 3 साल तक कंटिन्यू उसमें कोई भी आपको रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करना है। और उसके लिए आपको जो रासायन उनके कीड़े के लिए, बीमारियों के लिए उपयोग करते हैं, वो भी आपको नहीं करना है। तब उसमें आप पूर्ण रूप से आप रासायनिक खाद का जब उपयोग बंद कर देंगे, तब आप जैविक खेती करेंगे। और जैविक खेती के लिए गवर्नमेंट के द्वारा उसकी गाइडलाइन है, अपने वैज्ञानिकों के द्वारा है निर्धारित किया गया है कि कम से कम 3 साल तक आप उसमें रासायनिक खाद का उस जमीन में उपयोग न किए हैं, तभी आप उसमें जैविक खेती करेंगे। और जैविक तनाव जो है वो दूसरा सब चीज है। जैविक तनाव मतलब है जो पौधों में कीड़े और बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उसके कारण पौधों के अंदर जो तनाव उत्पन्न होता है उसका प्रबंध कैसे करते हैं। तो उसके लिए दो तरह से पौधों में, हमारे सब्जियों में तनाव होता है। एक होता है जैविक तनाव और दूसरा होता है अजैविक तनाव। तो जो अजैविक तनाव होता है वो हमारा पर्यावरण के कारण जो तापमान में वृद्धि होती है या कमी होती है, या अधिक बारिश होती है या बारिश की कमी के कारण, सूखा के कारण जो पौधों में तनाव उत्पन्न होता है उसको हम अजैविक तनाव कहते हैं। और जैविक तनाव, जैसे कोई सब्जी है, सब्जी में पत्ती को कोई कीड़ा अगर खा रहा है तो कीड़े जो पत्ती को खाता है उसके कारण जो पौधों में तनाव होता है, या कोई बीमारी उसमें लग गई, बहुत सारे पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, तो मोजाइक है, उसके कारण जो पौधे में तनाव उत्पन्न होता है उसको हम जैविक तनाव कहते हैं। तो ये दोनों के कारण पौधों की वृद्धि और विकास दोनों प्रभावित हो, तो उसके लिए हम बहुत सारे जो पौधे हैं उनके अंदर नेचर के द्वारा उनकी ऐसी व्यवस्था होती है कि अजैविक तनाव से बचने के लिए उनके अंदर बहुत सारे रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो उस तनाव से उनको बचाने की कोशिश करते हैं। या उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं तो अगर पानी की कमी पौधों को होती है तो उसके अंदर, पौधे के अंदर एक हार्मोन बनता है जो कि पानी की कमी से जो नुकसान पौधों के शारीरिक क्रियाओं पे, जैसे प्रकाश संश्लेषण शोषण पे न पड़े, उससे वो बचाता है। और उसी तरह से जो जैविक कारण होते हैं, जो हमारे बीमारियां होती हैं, जो कीड़े उनको नुकसान पहुंचाते हैं या काटने वाले हों या चूसने वाले, उससे भी कुछ पौधे अपने अंदर ऐसे केमिकल को बनाते हैं या सिंथेसाइज करते हैं जिससे कि उनको द्वारा जो तनाव उत्पन्न होता है उसको कम पौधे कर सकें। तो ये कुछ तो पौधों की प्रजाति के ऊपर निर्भर करता है और कुछ जो है उनके इन्वायरमेंट के कारण निर्भर करता है। ये दोनों कारण होता है। ठीक,
0: इस सुग्घर जानकारी के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।
2: आप फोन करे भैया, एक लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, किसान वाणी।
3: हेलो किसान वाणी, मैं लखनपुर का वर्धा से बोला था भैया, दामी राम चंद्रवंशी।
2: आपके हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है भाई। आओ बताओ, आज के विषय ले जुड़े का जानना चाहते हो आप मन?
3: ये सब सब्जी लगाना है भैया, तो ये जैविक खातु लगा, कैसे जैविक खातु लगा देना डालना है? और गोभी भी लगाए तैयारी भाव है, थरहा देवा के हो गए तो लगाए के लिए, तो ओकरे बारे में आप पूछे भर लगा है भैया। हाँ भैया,
1: किसान भाइयों, जैविक जो

0: आपके खाद है, आपने जैसा प्रश्न किया, जैविक खेती पर आपको जो रासायनिक खाद है, रासायनिक जो दवाएं हैं, उसका उपयोग नहीं करना है। और जैसे आपके पास गोबर की खाद है, वो गोबर की खाद आपकी अच्छी से सड़ी होनी चाहिए, और सब्जी लगाने से कम 15 दिन 20 दिन पहले मिट्टी में अच्छी तरह से उसको मिलाना चाहिए। अगर गोबर की खाद, अगर ताज़ा, अगर आपने गोबर भूल के भी अगर डाल दिया आपने जमीन में या खेत में, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ताज़ा गोबर होता है वो दीमक का भोजन होता है। तो दीमक, अगर आप कच्चे गोबर अगर भूल के भी अगर अपने खेत में डाल दिए, तो दीमक बहुत आपके खेत में पहुंच जाएंगे और जमीन के अंदर जाके पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कभी भी अगर आपको जैविक खेती करना है और गोबर की खाद उपयोग करते हैं, तो सड़ी हुई होनी चाहिए। और इसके अलावा आप वर्मी कंपोस्ट की खाद भी उपयोग में ला सकते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
2: हेलो हेलो किसान वाणी।
3: हाँ हेलो किसान वाणी
2: भैया, आपके स्वागत है। कौन बोला तो कहाँ बोला तो गा?
3: हाँ राम राम भैया।
0: राम राम।
3: मैं ग्राम बिजली से धराम सिंह साहू बोला भैया। आज के बीच में जानना चाहता हूँ भैया, अपन सब्जी जिसे लगाए रहे थे, अब बहुत ज्यादा वर्षा हो जाते, बहुत ज्यादा हवा पानी आते, ओखर से सब्जी ला कैसे बचाना है, एक बारे में जानकारी लेना रही भैया।
0: किसान भाइयों, सब्जियों में अगर ज्यादा बारिश और हवा के कारण नुकसान अगर होता है, तो उसके लिए आप जब सब्जी लगाते हैं उस समय आपको एक प्लान बनाना चाहिए कि अगर बारिश हो तो पौधों के जड़ों में पानी न रुके। इसलिए आपको बंड पे या बेड बना के ही सब्जी उगाना चाहिए, जहाँ पे पानी अगर ज्यादा जल जमा होता है। तो अगर पौधों के जड़ों में 24 घंटे तक अगर कंटिन्यू पानी रुका रहा, तो उनकी जड़ें श्वसन क्रिया नहीं कर पाती हैं, सांस नहीं ले पाती, उसको अगर सही शब्दों में बोले तो। जब पौधे सांस नहीं ले पाते हैं, तो उसके कारण उनके अंदर जो पोषक तत्व मिट्टी से उनको अवशोषित करना वो नहीं कर पाते, तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो हमको सबसे पहले जब हम सब्जी लगाने के लिए सोचते हैं या प्लानिंग करते हैं, तो ध्यान देना चाहिए कि हम बेड पे ही बारिश के समय में बेड बना के ही सब्जियों को उगाएं। दूसरा आपने प्रश्न किया कि हवाओं के कारण, तो हवाओं के कारण अगर आप सब्जी लगाने के लिए बेड बना रहे हैं, तो किनारे लंबे पौधे हैं, जैसे आप उसमें मक्के लगाएं, और मक्के की हाइट ज़्यादा होती है, तो उसके कारण हवा का जो रुख होता है सब्जियों से ऊपर ऊपर ही चला जाता है, जिससे कि हमारे मेन जो सब्जी है वो खराब नहीं होती, उनकी पत्तियां जो हैं क्षतिग्रस्त नहीं होती तेज हवाओं से। तो उनको आप किनारे में अगर लगा देंगे बड़े पौधों को, तो हमारी सब्जियां उससे प्रभावित कम होगी तेज हवाओं के।
3: जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, सब्जी में अजैविक प्रबंधन का होते ला बताते हो?
0: अजैविक प्रबंधन जो होता है, ये जो पर्यावरण में अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा बारिश या सूखा, बहुत ज्यादा तापमान का बढ़ना, जैसे 25 डिग्री नॉर्मल पौधों के लिए होता है, तो जब हमारे रायपुर रीजन में 42 से 48 डिग्री तापमान चला जाता है, जो अपने जाड़े के दिनों में टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है, 15 डिग्री से कम आ जाता है, तो उसके कारण पौधों पे तनाव उत्पन्न होता है, उसको सहन करने की जो उनकी क्षमता है उससे असहनीय होता है, उसी को अजैविक तनाव कहते हैं। और इसके कारण पौधों की जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो पूर्ण रूप से प्रभावित होती हैं, जिसके कारण उनका वृद्धि और विकास के साथ साथ उत्पादन भी कम हो जाता है, इसको हम अजैविक तनाव के अंतर्गत रखते हैं।
2: अजैविक तनाव पौधा में उत्पन्न होते तो समस्या ला दूर करे बर का करना चाहिए?
0: समस्या दूर करने के लिए सबसे पहले तो हमको इसकी प्लानिंग करना चाहिए कि कौन से ऐसे सब्जियों की प्रजाति है जिसको हम अधिक टेम्परेचर अगर बढ़ता है उसमें हम उगा सकते हैं। जैसे टमाटर की अगर बात करें, तो

0: तापमान कम होने पर भी परफॉर्म अच्छा करे। इसलिए हमको बीज का चुनाव बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए।
1: हेलो हेलो किसान वाणी।
2: नमस्ते सर जी।
1: नमस्कार भैया, कौन बोला थो, कहाँ बोला थो गा?
2: राजेंद्र कुमार दामले को क्या था सर, सिरमुंडा ले।
1: के स्वागत है भाई हमारे कार्यक्रम में। आओ बताओ आज के विषय ले जुड़े का जानना चाहते हो आप?
2: ठीक है सर, आज के समय के अनुसार अच्छा विषय है तो जलवायु परिवर्तन के समय सब्जी मन में कैसे प्रबंधन करते बारे में बता देते हो।
0: किसान भाइयों, आज के परिवेश में बढ़ता हुआ तापमान के कारण जो हमारे फसल है वो प्रभावित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सारे जो सीजन है वो एक्सटेंड हो रहे हैं, मतलब कुछ आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण पौधों में बहुत तरह के तनाव उत्पन्न होते हैं। तो ये तनाव दो तरह से होते हैं, एक तनाव जो होता है वो जैविक होता है, दूसरा अजैविक होता है। जैविक तनाव के अंतर्गत जो विषाणु जीवाणु कीड़े और मकोड़े के कारण, जो कीट पतंगों के कारण पौधों को क्षति पहुंचाने के परिणाम स्वरूप जो तनाव उत्पन्न होता है उसको हम जैविक तनाव कहते हैं।
2: जी सर।
0: और पानी की कमी के कारण, पानी की अधिकता के कारण, कम तापमान के कारण, अधिक तापमान के कारण और फास्फोरस के कमी के कारण और बाढ़ के कारण, जब अधिक पानी आता है, बाढ़ आते हैं, अभी आप न्यूज में देख रहे होंगे बहुत जगह पे बाढ़ आई है, तो उसके कारण पौधों में जो तनाव होता है उसको अजैविक तनाव कहते हैं। इनका प्रबंधन करने के लिए हमको सबसे पहले सब्जी उगाने की प्लानिंग करते हैं हम, उसी समय प्लानिंग कर लेना चाहिए कि हम ऐसे पौधों या ऐसी प्रजाति को उगाएं जिसमें कम से कम हमको नुकसान हो। तो बहुत सारे सब्जियों में ऐसी वैरायटी आ गई है प्रजातियां कि जो सूखे के प्रति सहनशील हैं और कम पानी में अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो उनका हमको चयन करना चाहिए।
2: जानकारी दे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।
1: आप फोन करे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हेलो हेलो किसान वाणी।
3: हाँ, मैं भगत राम पटेल बोला था भैया, सिंगारबाड़ी गुप्त बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले। जय जोहार। राम राम।
1: जय जोहार भैया, राम राम। आपके स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और बताओ आज के विषय ले जुड़े का जानना चाहते हो आप मन?
3: हाँ, जानना चाहत रहे कि जैविक अजैविक है तो कौन टाइप से प्रभावी होते और कौन टाइप के जेन कुप्रभाव है वो पढ़ते, एक बारे में जानना चाहत रहे
0: किसान भाई। जैविक और अजैविक दोनों जो तनाव है वो किसी भी सब्जी के लिए नुकसानदायक ही है। जैविक तनाव के अंतर्गत जैसे आप देखते हैं कि हमारे जो पशु हैं, गांव में बहुत सारे बकरी हैं, भैंस हैं, गाय हैं, अगर पौधों की पत्ती को खाते हैं तो उसके कारण भी पौधों में तनाव उत्पन्न होता है और उसके साथ साथ जो बीमारियां लगती हैं, जैसे वो देखेंगे कि पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, मोजैक, पत्तियां पीली हो जाती हैं। जब पत्तियां पीली हो जाती हैं तो उसमें जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है पत्तियों में कम हो जाती है, तो उसके कारण भी पौधों में तनाव उत्पन्न होता है। और कुछ ऐसे आपको कीट दिखाई देंगे जो कि पत्ती में छेद करते हैं, उस पत्ती को खाते हैं, उसके कारण भी पौधों में तनाव उत्पन्न होता है। अच्छा, एक दूसरे तरह के कीड़े होते हैं जो कि उनके रस को चूस लेते हैं, तो पत्तियां पीली हो जाती हैं या पौधे सूख जाएगा, तो उसके कारण जो तनाव उत्पन्न होता है उसको हम जैविक तनाव कहते हैं। और दूसरा जो अजैविक तनाव है, अगर पानी की कमी हो गई तो पौधा धीरे धीरे मुरझा जाता है, एक दो दिन तक वो सहन करता है, और अधिक दिन तक अगर पानी की कमी हुई तो पौधा पूरा सूख जाता है, तो उसके कारण पौधों में जो तनाव आता है वो तनाव कहलाता अजैविक। और उसी तरह से तापमान है, अगर तापमान नॉर्मल सब्जी के लिए अगर 25 डिग्री है और वो 45 डिग्री 35 डिग्री तक अगर तापमान बढ़ जाता है तो उसको भी सब्जी सहन नहीं कर पाती है, तो उसको हम अजैविक तनाव कहते हैं। और इसके कारण पौधों की जो ग्रोथ वृद्धि होती है वो प्रभावित होती है। जब वृद्धि प्रभावित होती है तो उसका विकास भी प्रभावित होगा और उत्पादन में बहुत कमी आ जाती है। तो इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए कि सब्जी लगाते समय इनका प्रबंधन हमको सुचारू रूप से करना चाहिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद भैया, एक सुंदर जानकारी देखा। जय जोहार। राम राम।
1: डॉक्टर साहब, ये सब्जी मन में तनाव प्रबंधन पर एकीकृत प्रबंधन कतेक आवश्यक है बताते?
0: सब्जियों में एकीकृत तनाव प्रबंधन बहुत ही

0: आवश्यक है। हम जब भी सब्जी उगाने के लिए अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमको ध्यान देना चाहिए कि हम कौन कौन सी सब्जी किस किस सीजन में हम उगा सकते हैं, जिसमें कम से कम कीड़े, बीमारियां और अजैविक तनाव उत्पन्न हो। उदाहरण के तौर पे अगर हम गर्मी के सीजन में जून या अप्रैल मई में अगर हम सब्जी उगाते हैं तो देखते हैं कि उसमें इंसेक्ट और बीमारियां बहुत लगते हैं। उसका कारण ये होता है कि हमारे चारों तरफ की जो भूमि है या खेत है सब खाली हो जाते हैं, तो कीड़ों का और बीमारियों का इंटेंसिटी जो है बहुत ज्यादा हो जाती है। उस समय ऐसी प्रजाति का हम चुनाव करें जिसमें कि कम से कम बीमारी लगे और उसमें कीड़ों का कम से कम प्रभाव, उसके कारण जैविक तनाव का प्रबंध है वो स्वतः हो जाता है। दूसरा, अजैविक तनाव से संबंधित हम ऐसी सब्जियों का चुनाव करें जिनमें कि थोड़ा पानी की कमी को सहन करने की क्षमता हो और तापमान में अगर वृद्धि होता है तो उसको भी सहन करने की उनके अंदर क्षमता हो। हमेशा यह ध्यान देना चाहिए, पौधों को शिशु जैसे समझते हैं, जैसे बच्चा होता है उसी तरह उसकी सारी क्रियाएं होती हैं। अगर तापमान थोड़ा वृद्धि करता है तो उसके अंदर हमको दिखाई नहीं देता है, प्लांट के अंदर, पौधों के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल और शारीरिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं, जिसके कारण पौधे प्रभावित होती है और वृद्धि के कारण उनके विकास भी प्रभावित होता है। आप देखते होंगे कि जब हम गेहूं उगाते हैं तो गेहूं दिसंबर या जनवरी में उगाते हैं तो उनकी बालियां जनवरी में आ जाती है, तो बाली उनकी बहुत छोटी आती है जब, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पौधा अपनी जो वांस्पिक वृद्धि का पीरियड होता है उसको सरप्रस करके वो आ जाता है रिप्रोडक्टिव फेज में। तो इसलिए हमको ये ध्यान देना चाहिए कि कौन सी प्रजाति, कौन सी सब्जी किस सीजन के लिए सुटेबल है, तभी उनको उस समय उगाना चाहिए, जिससे कि ये जैविक और अजैविक दोनों तनाव का प्रबंधन प्रॉपर रूप से हो सके।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि बात आते सब्जी की खेती हो या कोनो प्रकार की खेती हो, माटी में अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में, तो ये बताते हो कि माटी के अम्लीयता और क्षारीयता के प्रबंधन कैसे करें?
0: आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सब्जी या कोई भी फसल लगाने से पहले हमको भूमि का परीक्षण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे भूमि का 0 से 14 pH तक एक पैरामीटर है। जैसे हम स्केल से किसी चीज को नापते हैं उसी तरह हम पीएच से मृदा की अम्लीयता और क्षारीयता को नापते हैं। तो जब पीएच 7 तक रहता है, 7 पे पीएच है, तो मिट्टी उदासीन है, उसमें न तो ज्यादा अम्लीयता है न तो ज्यादा क्षारीयता है, और उससे कम है 6 और 8 के बीच में, तो सारे सब्जियों के लिए और फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जब मिट्टी में क्षारीयता बढ़ती है तो क्षारीयता के कारण कुछ बहुत सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी उपलब्धता पौधों के लिए कम हो जाती है। ठीक उसी प्रकार अगर ज्यादा अम्लीयता होती है तो दूसरे पोषक तत्व कम मात्रा में पौधों को अवेलेबल होते हैं, इसलिए इनको अगर दूर करना है, अम्लीय मिट्टी को और क्षारीयता को, तो हमको पौधों लगाने से पहले उसका जांच करके हम उसका निराकरण कर सकते हैं। निराकरण करने के लिए अगर अम्लीय मिट्टी है तो उसका निराकरण हमको करना अति आवश्यक है, और अगर क्षारीय मिट्टी है तो उसको भी हम कम कर सकते हैं, लेकिन बुआई से या सब्जी लगाने से पहले। इसलिए ध्यान दें कि कोई भी फसल लगाने से पहले हमको मिट्टी का जांच कराना बहुत ही आवश्यक है।
1: डॉक्टर शशि प्रकाश तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर पादप शरीर क्रिया विज्ञान, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, आप हमर विचार और हमर किसान संगी मन के समस्या और जिज्ञासा के समाधान करे, ये खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: संगवारी हो, हमर ये हेलो किसान वाणी के रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार के बिहनिया बेरा 11:30 से 12 के बीच करे जाते, जेमे हरेक मंगलवार के अलग अलग विषय में हमर विशेषज्ञ मन आप मन के समस्या और समाधान करते। तो आप मन भी फोन लगा के अपन समस्या के समाधान कर सकते हो। अब एक खातिर हमर फोन नंबर है 400-3482,

4003483, 4003484, और रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। तो आज के हेलो किसान वाणी यही मेरे सिरावत है।

संगवारी हो, अभी सुनत रहें फोन इन कार्यक्रम हलो किसान वाणी, जेखर विषय रहिस सब्जियों में जैविक एवं अजैविक तनाव प्रबंधन। विशेषज्ञ रहिन डॉक्टर शशि प्रकाश तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर पादप शरीर क्रिया विज्ञान, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। संचालन लालजी साहू के रहिस, तकनीकी सहायक अंजु विजयन जी, प्रस्तुतकर्ता रहिन श्री शशि प्रकाश पांडे जी।

0: भैया अब बेरा हो गए है कृषक प्रश्न मंच के,
1: हाँ।
0: तो संगवारी मल्ला गोरा हो ही आज के प्रश्न के, तो बतावन आज के प्रश्न संगी हो लिखा आज के प्रश्न। आज के प्रश्न है सब्जी मन में अजैविक प्रबंधन काला कथे। प्रश्न है गांव सुन ले वो, सब्जी में अजैविक प्रबंधन काला कथे। पाछू अब तक के प्रश्न रिसे कि गोभी के अगेती किस्म का होते, जेकर सही जवाब है जब गोभी के नर्सरी जून जुलाई अगस्त में लगा के सितंबर अक्टूबर में उत्पादन करे जाते। सही जवाब भेजिया संगी मन के नाम है लोरमी ग्राम चचेड़ी ले कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी, मदनपुर कमरधा ले श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू, गर्रापार बांधा बाजार राजनांदगांव ले गंगाराम साहू, सुलोचना राकेश और मानवेंद्र साहू, बठेना पाटन जिला दुर्ग ले बलकरण वर्मा, ज्योति अंजनी, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा। सही जवाब भेजे हो एक खातिर आप मल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई।
1: और संगवारी हो आप मन जब सही जवाब भेजता हो तो हमारे कार्यक्रम है सफल होते और मल्ला बड़ खुशी होते।
0: और ये रही किसान वाणी प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: लाल जी भाई भाई गोट बात करत और गीत संगीत में देख समय है कब छीन पर्यावरण के उड़ गया मालूम ही नहीं पड़ी। और होते अब जाए के बेरा तो जाए के पहले ही बता देवन काली के कार्यक्रम। संगवारी हो काली के कार्यक्रम में पशुपालन के कार्य के गोट बात के संग हो ही हमार साप्ताहिक कार्यक्रम चिट्ठी मिलिस। क्रम आज की सलाह के विषय हो ही सीताफल के खेती, विशेषज्ञ हो ही नीलिमा डहरिया शोधकर्ता फल विज्ञान विभाग महात्मा गांधी उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र सांकरा दुर्गले। संगवारी हो कृषक प्रश्न मंच के संगे संग गीत संगीत तो होबे करही, तो हो गए है जाए के बेरा जम्मो सुनिया संगवारी मल्ला
0: लाल जी
1: लव कुमार सिंह के राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवाएंगे पंकज उदास के गाए कुछ गीत और गजल, और उसके बाद सुनिएगा उदित नारायण की आवाज में गाए कुछ गीतों को। करते हैं शुरुआत पंकज उदास की इस गजल के साथ,

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

पंकज दास की आवाज में गाए इस गीत को भी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम आइए अब आपको सुनवाते हैं उदित नारायण की आवाज में फैज अनवर के लिखे इस गीत को। संगीत निखिल विनय का है।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवाते हैं कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म जिंदगी एक जुआ का गीत। प्रकाश मेहरा के लिखे बोल, संगीत बप्पी लहरी का है।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों की

कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: सम्मेलन 13 प्रमुख निर्णयों के साथ संपन्न हुआ। ये निर्णय आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सहयोग से संबंधित हैं। इसके अलावा 4 समझौता ज्ञापनों और 20 से अधिक निर्णयों को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा प्रगति और समृद्धि के लिए मजबूत और भरोसेमंद कनेक्टिविटी की पहल महत्वपूर्ण है। भारत ऐसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ें, व्यापार को बढ़ावा दें और विकास के नए अवसर खोलें। हालांकि ऐसी पहलों में देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।
3: सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes

0: The BRICS countries, as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। श्री चौहान ने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: योजना के 6 लक्ष्यों के आधार पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया, जो 16.31 अंकों के सुधार को दर्शाता है। यह योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर लागू की जा रही है। वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की निगरानी के लिए 36 योजनाओं में कुल 121 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा में निगरानी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपूर्ति और बढ़ने से दाम पूरी तरह स्थिर हो जाएंगे और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकी भी रद्द कर दी और राज्य को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
3: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। CJP के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए रहा। इसमें 1,29,000 करोड़ रुपए का योगदान रक्षा उपक्रमों का था। उन्होंने इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर रक्षा औद्योगिक आधार के निर्माण की दिशा में देश की महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक बताया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT 6 दशकों से अधिक समय से विशेष रूप से अपनी पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में परिषद के 66वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा में सुधारों के लिए एक ढांचा प्रदान किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयासों की जरूरत है। नई दिल्ली में भारत जर्मनी पर्यावरण मंच में उन्होंने कहा कि भारत के विकास

0: विकास के अनुभव ने यह साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं।
1: क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर।
2: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और अपने लिए जलवायु अनुकूल भविष्य बनाने के लिए आपसी सहयोग बेहद जरूरी है। भारत इस दिशा में जर्मनी के साथ अपनी साझेदारी को विशेष महत्व देता है। दोनों देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग कई वर्षों से जारी है और समय के साथ पर्यावरणीय शासन के नए क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ है।
1: एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मध्यम जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। वस्तु और सेवा कर के संग्रह पिछले महीने बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये अगस्त 2025 के 1,74,116 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 15% अधिक है। केंद्र सरकार ने ईंधन निर्यात करों की अपनी ताजा पाक्षिक समीक्षा के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार पेट्रोल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 1.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर बढ़ाकर 25 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क घटाकर 19 रुपए प्रति लीटर किया गया है। अधिसूचित ये संशोधित दरें आज से लागू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के डम्बन्ना में अर्जुन वाहिनी नामक एक विशेष आपदा मोचन दस्ते का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तर्ज पर गठित इस बल का उद्देश्य राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को और अधिक मजबूत बनाना है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल 30 सितंबर कर दी है। अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में एमए की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। संगठन का शिखर सम्मेलन आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। इसके साथ ही समाचार संध्या का

0: समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है आपके लिए।

बेमिसाल फिल्म के इस गीत को गाया किशोर कुमार ने, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत तैयार किया था राहुल देव बर्मन ने।

आशा भोसले के स्वर में अभी आपने सुना नमकीन फिल्म का गीत, जिसे गुलजार ने लिखा और राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। और अब आपको सुनवा रहे हैं पुलिस पब्लिक फिल्म का गीत, असद भोपाली के बोल राम लक्ष्मण का संगीत।

अब आपको सुनवाते हैं यशुदास और सुलक्षणा पंडित का गाया सावन को आने दो फिल्म का गीत। इस गीत के बोल माया गोविंद के हैं और संगीत है राजकमल का।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और उषा तिमोती की आवाज़ में ये गीत बोल कल्याण जी आनंद, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, और बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। इसी के साथ आपके लिए कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

तमरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी माँ।

सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे। नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मिरड़ी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं जिन्हें जगाया है सी अर्जुन ने।

पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे। इसी फिल्म की और भी संगीत रचनाएं बड़ी ही यादगार हैं।

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई। आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

श्री अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है सी अर्जुन।

दोस्तों, कानून और मुजरिम फिल्म का ये गाना शायर अहमद वसी साहब का लिखा हुआ है और इसे गाया है सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर ने। सी अर्जुन एक निहायत ही ऊंचे दर्जे के प्रतिभाशाली संगीतकार थे, पर वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वो खुश नसीब हैं जिनका इक्का दुक्का गाना भी चल जाता है और वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। ऐसी खुशकिस्मती सी अर्जुन साहब को नसीब नहीं हुई और वो 59 साल की छोटी सी उम्र में ही अपना संगीत संसार पीछे छोड़ इस संसार से रुखसत हुए।

0: तो टल जा। तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने संगीतकार सी अर्जुन पर। शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि के 10 बज चुके हैं और आइए सुनते हैं विविध संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आइए हम आपको पहले सुनवाते हैं उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में कुछ गीत और गज़लों को, और उसके बाद सुनेंगे जगजीत सिंह की आवाज़ की गाई कुछ खूबसूरत गज़लें। तो लीजिए पहले करते हैं शुरुआत चिराग जयपुरी की लिखी इस गज़ल के साथ।

0: सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात। अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्टकार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

विवि संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की गाई इस गजल को। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 10:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों कार्यक्रम यादें। इस कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में गाया फिल्म साहेब बहादुर का एक गीत। राजेंद्र किशन के लिखे बोल, संगीत मदन मोहन का है।

मोम की गुड़िया। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत आन बख्शी और लता मंगेशकर की आवाजों में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म मीला से। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बोल हैं, संगीत राहुल देव बर्मन का है।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था।
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे और उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है, और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के

0: खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में ये तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है, जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है, उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था, कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा। एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में, जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारी राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है, उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। पूरे देश में इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

0: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: कार्यक्रम में आखिर में आपको सुनाते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में गाया फिल्म शरीफ बदमाश का।

0: अभी आप सुने थे पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के

0: माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित SCO युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले SCO सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और SCO युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार करना तथा कृषि को कृषि ऋण और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों के सम्मेलन में खाद्यान्न खरीद, वितरण और भंडारण की समीक्षा की। आगामी खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए धान की खरीद का अनुमान 708 लाख मीट्रिक टन से अधिक तय किया गया। करीब 19 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज की खरीद का भी अनुमान है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। सरकार ने शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल की 30 सितंबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार मेधावी छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। तारीख बढ़ाए जाने के बाद अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek today, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, in a media briefing said the Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world.
3: Prime Minister reiterated that India's position, conflicts and wars cannot be solved on the battlefield. Dialogue and diplomacy are the only way forward. Highlighting that terrorism was a grave threat to humanity, he called for committed action to dismantle the terror ecosystem. He specifically stressed that there should be no double standards whatsoever in fight against terrorism.
2: Mr. Modi said India had proposed the Shanghai Cooperation Organization Civilization Dialogue Forum last year. He expressed happiness that its first session will be held in India this year. The leaders of the